FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 39 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क, यह आरोप लगाते

0: वे लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना के आरंभ में आइए नमन करते हैं मुक्ति और मोक्ष के दाता देवाधिदेव महादेव शिव शंभू के चरणों में।

ब्रज भूमि की रज में ऐसा अद्भुत आकर्षण है कि जो एक बार श्री कृष्ण के प्रेम में बंध जाए उसका हृदय सदा सदा के लिए बांके बिहारी का हो जाता है। कान्हा की मोहक मुस्कान, मुरली की मधुर तान और उनकी अलौकिक छवि, गीता का महाज्ञान भक्त के मन पर ऐसा रंग चढ़ाते हैं कि फिर संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। प्रेम की इसी अनन्य अनुभूति से ओतप्रोत होकर सब भक्तों का हृदय प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अनायास ही मोहित हो जाता है।

ब्रिज की गलियों में गूंजता श्री कृष्ण का नाम केवल एक पुकार नहीं बल्कि प्रेम माधुर्य और समर्पण का अनंत संगीत है। जब भक्त का हृदय श्याम सुंदर के प्रेम में डूब जाता है तब हर धड़कन में बांसुरी की तान सुनाई देने लगती है और जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति की रंग में रंग उठता है। जिस पावन भूमि पर उद्धव जैसे विद्वान के तर्क भी नगण्य से हो जाते हैं, केवल दिखता है तो भक्ति का अद्भुत रस।

ये संसार एक कागज की पुड़िया के समान ही है, जिसे काल की हवा ना जाने कब आकर उड़ा देगी। इस संसार में आकर इसे ही वास्तविक समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस मानव जीवन को पाकर हम माया के जाल में ना फंसे, यही हमारी प्रार्थना है अपने आराध्य प्रभु से।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना के गायक कलाकार थे अनूप जलोटा, पिनाज मसानी, राजेंद्र काचरू, प्रदीप और साथी।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है हृदय परिवर्तन। आलेख आचार्य भगवान का है, वाचन श्री कृष्ण शरद का है।
1: बुद्ध घूम रहे थे भारत में, भ्रमण करते हुए मगध में पहुंचे तो एक नगरी के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। लोग उनके दर्शनों को आए। बुद्ध ने पूछा, क्या हाल है? सबने कहा, बहुत दुखी हैं हम। किसी ने कहा, मेरा लड़का मारा गया। किसी ने कहा, पति मारा गया। किसी ने कहा, भाई मारा गया। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, क्या हो गया है तुम सबको? क्या कोई युद्ध यहाँ पर हुआ? क्या राजा ने अत्याचार आरंभ कर दिया? लोगों ने कहा, नहीं महाराज, राजा अच्छे हैं, युद्ध भी नहीं हुआ। परंतु यहाँ एक डाकू रहता है अंगुलीमाल। वो प्रतिदिन एक नए व्यक्ति को मारकर उनकी अंगुली काट लेता है। जिस देवी की वह पूजा करता है वह उसे 1,000 अंगुलियों की माला पहनाना चाहता है। उसे किसी ने कह दिया है ऐसी माला पहनाने से बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। बुद्ध ने पूछा, कहाँ? लोगों ने बताया, नगर के दूसरी ओर विशाल वन में। बुद्ध बोले, मैं उसके पास जाऊंगा। लोगों ने अशांत होकर कहा, उसके पास मत जाइए महाराज। परंतु बुद्ध मानने वाले नहीं थे, उठे चल पड़े। लोगों ने कहा, उसे राजा के सिपाही भी नहीं डरा सके, आप बिना हथियार के क्या करेंगे? बुद्ध बोले, मेरे पास ऐसा हथियार है जिसके सम्मुख और कोई हथियार नहीं चलता। और वे नगर को पार करके जंगल में पहुंचे। सुनसान और वीरान वन था।

0: वो अत्यंत भयानक, कहीं कोई व्यक्ति नहीं, कोई पशु नहीं। बुद्ध चलते गए, चलते गए। पर्याप्त आगे जाकर एक स्त्री मिली। बुद्ध ने पूछा, माँ क्या तुम जानती हो कि अंगुलीमाल डाकू इस वन में कहाँ रहता है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, जानती हूँ पुत्र, परंतु आगे मत जा, वापस चला जा यहाँ से। अंगुलीमाल मनुष्य नहीं, राक्षस है, वो तुम्हारा वध किए बिना मानेगा नहीं। बुद्ध हंसते हुए बोले, ऐसी क्या बात है माँ, वो मेरी हत्या क्यों करेगा? बूढ़ी स्त्री ने कहा, तू जानता नहीं है बेटा, 1,000 अंगुलियों को वह एकत्रित करना चाहता है। आज अंतिम रात्रि है, आज उसे देवी की पूजा करनी है, उसे माला पहनानी है, और माला में 1 अंगुली अभी कम है। आज प्रातःकाल से ही किसी व्यक्ति को वह खोजता फिरता है, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने पूछा, यदि रात्रि तक कोई व्यक्ति न मिला तो क्या करेगा तू? वो बोला कि सायंकाल तक यदि कोई व्यक्ति न मिला तो तुझी को मार डालूंगा, तेरी अंगुली काटकर माला में पिरो दूंगा। मैं ऐसी डरी कि सायंकाल होने से पूर्व ही घर छोड़कर भाग उठी। अपनी माँ को नहीं छोड़ता वो तो तुझे कैसे छोड़ेगा, वापस चला जाए यहां से। वह पहले पागल था, आज पूर्ण पागल हो गया है। बुद्ध बोले, मुझे मरने का डर नहीं है, मैं उससे मिलूंगा अवश्य, तुम बताओ वह रहता कहाँ है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, वृक्षों के काले छुरमुट के उस पार उस मकान में, उसमें मिलेगा वह, परंतु मैं अब भी कहती हूं वहां न जा। बुद्ध हंसते हुए आगे बढ़े, झुरमुट के उस पार चलते चले गए। सामने मकान दृष्टिगोचर हुआ, उसके समीप जाकर बोले, कोई है? अंदर से आवाज आई। थोड़ी देर में अंगुलीमाल बाहर आया, हाथ में तीक्ष्ण तलवार लिए, द्वार के बाहर आकर बोला, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, क्या तुम ही अंगुलीमाल हो? डाकू ने चिल्लाकर कहा, हाँ, तुम्हारी मृत तुम्हें यहां ले आई है, मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। बुद्ध हंसते हुए बोले, मैं गर्दन ही कटवाने आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी पूजा पूरी हो जाए, आगे बढ़ो, काटो ये गर्दन। और उन्होंने गर्दन झुका दी। अंगुलीमाल प्रसन्नता से चिल्लाकर आगे बढ़ा, तलवार उठाकर, परंतु ये क्या? तलवार वाला हाथ जहां का तहां रुक गया। कांपते हुए उसने कहा, ये क्या हो गया मुझको, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं हूं गौतम। डाकू ने तलवार फेंक दी, आश्चर्य से बोला, आप ही क्या गौतम बुद्ध हो? आप ही क्या मरने के लिए यहाँ आए हो? बुद्ध ने कहा, हाँ मैं गौतम हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ। अंगुलीमाल कांपती हुई आंसू भरी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो गौतम, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। गौतम आगे बढ़े, उसके माथे को छू कर बोले, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे पाप नष्ट कर दिए, मैंने तुम्हारे मन को बदल दिया। यही अंगुलीमाल बाद में भिक्षु बना, लंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार उसने किया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था हृदय परिवर्तन, आलेख आचार्य भगवान, कथा वाचन श्री कृष्ण शरद का। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर है शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंद्रेश्री के, संगीत सतीश भाटिया का है।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की

अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर थे शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंद्रेश के, संगीत सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा गाभिन पशुओं का आहार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। 7:00 आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। इसमें विशेष कार्यक्रम ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे में आप सुनेंगे श्री भूतेश्वर मंदिर मथुरा के विषय में जानकारी। आलेख होगा डॉक्टर वी के वर्मा का, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की होगी। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। विषय होगा भारतीय जनमानस की प्रेरणा का स्रोत गीता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर रश्मि वर्मा। 9:25 का समय रहेगा कार्यक्रम आबोहवा का। विषय होगा जल संरक्षण।

0: ये उपाय आलेख एवं वाचन होंगे विष्णु प्रकाश शर्मा की। 9:30 पे आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। वार्ता का विषय होगा डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव। जानकारी देंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, इनसे भेंट कर जानकारी प्राप्त करेंगे ओपी सिंह। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। दिन में 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज लोक गीत का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे रोहतास। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी अंतिम गौतम। चर्चा का विषय होगा सिजेरियन यानी ऑपरेशन के बाद स्तनपान कैसे शुरू करें, साथ ही स्वस्थ परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर जानकारी दी जाएगी। आईना वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगी वाटर प्रूफ मेकअप से बढ़ाएं खूबसूरती। इसमें वार्ताकार होंगी सीता अग्रवाल। घरेलू टिप्स भी बहनें इस कार्यक्रम में सुन सकेंगी। दिन में 2:30 का समय रहेगा NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा फिरोज शाह मेहता जयंती, साथ ही मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण विषय पर जानकारी आप सुन सकेंगे। फिल्मी किस्से भी इस कार्यक्रम में प्रसारित किए जाएंगे। शाम 6:15 का समय होगा कार्यक्रम ब्रज साहित्य का। आज इस कार्यक्रम में ब्रज लोक कथा के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी लकड़ी की चतुराई। कथाकार होंगी अशोक कुमार। शाम 6:30 का समय रहेगा संध्या वंदन का। 6:50 पर आप सुनेंगे हेलो किसान वाड़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। संसद समीक्षा आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8:20 का समय रहेगा विधानमंडल समीक्षा का। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:45 का समय रहेगा मंथन का। ये कार्यक्रम आप दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है गाभिन पशुओं का आहार। वार्ताकार है डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, गाभिन गाय या भैंस के लिए इसके गर्भकाल के प्रथम 4-5 महीने में भ्रूण के विकास की दर काफी धीमी होती है, इसलिए इस समय पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता इनको नहीं होती। इसके पश्चात अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। गाभिन पशु के आहार की जो व्यवस्था है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो गर्भकाल के पूर्व की अवस्था। इस अवस्था में जो पशु है दूध देते रहते हैं, गाय के शरीर में संचित जो पोषक तत्व होते हैं वो खर्च होते रहते हैं, शरीर में इनका संचित भंडार कम हो जाता है और गायों के गर्भ धारण करने से पहले कुछ समय तक अतिरिक्त दाना मिश्रण और हरा चारा दिया जाना चाहिए, ताकि गाय अपने जो आंतरिक भंडारों को पोषक तत्वों से पुनः संचित कर ले, अन्यथा इसका प्रभाव गर्भ और आने वाले दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है गर्भकाल की अवस्था। गर्भवती गाय पूर्ण स्वस्थ रहे, भ्रूण का विकास उत्तम हो और आने वाला दुग्ध काल में अत्यधिक दुग्ध उत्पादन भी मिले, इसलिए इस अवस्था में संतुलित आहार उचित मात्रा में गर्भवती गायों को देना

0: आवश्यक है। इस काल में अगर कुछ भरण पोषण का खर्च अधिक भी आए तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि इस खर्च का लाभ पशु के ब्याने पर अधिक दूध उत्पादन, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बच्चा और उसकी अच्छी वृद्धि और गाय का पुनः सही समय पर गर्मी में आने के रूप में परिणित हो जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत भरण पोषण पर अधिक खर्चा आता है तो उसे नज़रअंदाज करके ही आप चलें। चूंकि गर्भ का विकास गर्भावधि के अंतिम 3-4 महीने में काफ़ी तेज गति से होता है, इसलिए अंतिम 1.5 महीने गाय को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाला जो दाना मिश्रण है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये दाना मिश्रण जो आपको बढ़ाना है धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ब्याने के करीब 1.5 माह पूर्व गाय को 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना मिश्रण देना आरंभ करें, जिसको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ा करके 3 किलोग्राम तक आप ले जाएं। अत्यधिक दूध देने वाली गायें जैसे कि विदेशी नस्ल की गाय हैं, संकर नस्ल की गाय हैं, भैंसें हैं, और इनमें जो दाना मिश्रण है इसको बढ़ा करके आप 5 किलोग्राम तक कर सकते हैं। यह दाना मिश्रण जौ का दलिया, मूँगफली की खल, गेहूँ की चापड़ और दालों की चूरी मिलाकर के बनाया जाता है। इस मिश्रण में 1% लवण, साधारण नमक मिलाना चाहिए। गर्भकाल में अगर अतिरिक्त दाना देने से मादा के थनों में सूजन आ जाए या समय पूर्व दुग्ध उतर आए तो दाने की मात्रा को तुरंत कम कर देना चाहिए। प्रसव के बाद की जो व्यवस्था है उसमें पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद उनको अधिक ऊर्जा वाले आहार की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए उबली हुई बाजरी, गुड़, तेल, जौ का दलिया और चापड़ आदि काम में लाए जा सकते हैं। पशु के ब्याने के तुरंत बाद 2.5 किलोग्राम उबला हुआ बाजरा तथा 1 या 1.5 किलोग्राम गुड़ देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पशु के ब्याने के तुरंत बाद खल, ग्वार, बिनौला कभी न दें, क्योंकि ये पदार्थ दुग्ध लवण को उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इन दानों का उपयोग पशु के ब्याने के 5 से 6 दिनों के बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। दाने की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए तथा दुग्ध के उत्पादन की मात्रा के अनुसार चारा और दाना दिया जाना चाहिए। गायों को प्रति 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण तथा भैंसों को 1 किलोग्राम दाना प्रति 2 किलोग्राम दूध उत्पादन के हिसाब से दिया जाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था ग्याभिन पशुओं का आहार। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: शस्त्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्, तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्, तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 पराजितवान्, असौ 150,164,000 प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीकाभाई रबारी इत्येनं 30,000+ पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000+ पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधि विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000+ राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7 बजे है। लीजिए अब सुनिए पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म है बाबुल। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है नौशाद ने।

शमशाद बेगम को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाबुल में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाया बिरजू बाबरा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतकार है नौशाद।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गाया महजूबा आवरा फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।

0: उनका एहसास।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दुलारी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत है नौशाद का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में दुलारी फिल्म का गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं मधुमती फिल्म का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है सलिल चौधरी का।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म मधुमती में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत, फिल्म यहूदी से। गीत गाया है मुकेश ने, संगीत है सलील का, शैलेंद्र का, और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 7:18 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ और प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया, साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा की जाए।
3: यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े भी मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है।

0: तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार एक से डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
2: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
1: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक कल पारित हो गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
3: यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ में कल से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के NSO प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन JSP 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। इस अवसर पर सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉ. सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ देश प्रगति के पथ पर है।
1: गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता था। नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता था, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था है।
0: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में कल आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। आज इमाम हुसैन का चेहल्लुम मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में निकलने वाले ऐतिहासिक जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चेहल्लुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

ब्रजबादरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्यक्रम में आइए आपको लिए चलते हैं ब्रज के मंदिर ठाकुर।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे क्रम के अंतर्गत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र द्वारा तैयार रूपक सुनिए श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा। आलेख डॉक्टर वी के शर्मा का है, संयोजक है श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता है श्री रामकिशोर त्रिपाठी।

0: मथुरा में प्रवेश करने के बाद भक्ति भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। मथुरा की स्थापना रामायण काल में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने की थी। इसके बाद महाभारत काल में मथुरा नगर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ।
1: अच्छा, इसीलिए तो भागवत पुराण में कहा भी गया है कि भगवान कृष्ण के अवतरित होने के कारण ब्रज भूमि धन्य हो गई।
0: इसीलिए गरुड़ पुराण में भी तो मथुरा को भारत के सात पवित्र नगरों में से एक कहा गया है। वृंदावन की भांति मथुरा में भी मंदिरों की भरमार है।
1: हाँ, और देखो हम लोग भी तो मथुरा के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए आज यहाँ आए हैं।
0: और ये है मथुरा का प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर।

0: भी है।
1: ये अति आवश्यक भी है क्योंकि भारत में शिव भक्ति की परंपरा अति प्राचीन है और ब्रज क्षेत्र कृष्ण भक्ति के साथ साथ शिव भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है।
0: और हम भूतेश्वर महादेव मंदिर की स्थिति के बारे में पहले से भी कुछ पूछताछ कर चुके हैं।
1: हाँ, भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से केवल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है
0: और मथुरा के पुराने बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी लगभग इतनी ही है, 2 या 3 किलोमीटर। और मथुरा का जो नया बस स्टैंड है ना, उससे तो ये मंदिर काफी निकट है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा के एक व्यस्त तिराहे के निकट स्थित है, जिसे इस मंदिर से निकटता के कारण भूतेश्वर तिराहा कहा जाता है।
0: मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर तमाम वाहन खड़े रहते हैं। इनमें से किसी के भी द्वारा 10-15 मिनट के अंदर हम भूतेश्वर तिराहे तक पहुंच सकते हैं।
1: भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल निकट मथुरा का एक और रेलवे स्टेशन है। इस मंदिर से अति निकट होने के कारण इस रेलवे स्टेशन का नाम भी भूतेश्वर रखा गया था।
0: अच्छा, और देखो, नई दिल्ली से मथुरा जंक्शन की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियाँ भूतेश्वर रेलवे स्टेशन से भी गुजरती हैं। और भूतेश्वर पैसेंजर रेलगाड़ियों के रुकने के लिए रेलवे स्थान है, यानी रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से तो कुछ ही मिनटों में पैदल चलकर हम भूतेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच सकते हैं।

0: भूतेश्वर से चलने पर 1993 ईस्वी में बना पत्थरों का एक बड़ा सुंदर सा प्रवेश द्वार है। इस द्वार के ऊपरी भाग पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है और इस प्रवेश द्वार से होकर एक पक्की सड़क द्वारा भूतेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।
1: मंदिर में दो प्रवेश द्वार हैं।
0: और देखो, हम अब उस द्वार से होकर मंदिर में प्रवेश करेंगे जो इसके गर्भगृह की सीध में स्थित है। इस द्वार द्वारा भूतेश्वर रेलवे स्टेशन और इसके निकट स्थित भूतेश्वर रेलवे पुल की तरफ से भी पहुंचा जा सकता है।

0: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, अपना परिचय देंगे?
1: मैं डॉक्टर शर्मा, मैं एक इतिहासकार हूँ
2: जी।
1: मैंने भूतेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के विषय में पढ़ा है, लोगों से इस मंदिर के विषय में काफी कुछ सुना भी है।
2: सर आपसे ये भेंट हमारा सौभाग्य है, हमारा एक उद्देश्य इस प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास को जानना भी है, कृपया इसके इतिहास पर कुछ प्रकाश डालिए।
1: ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक हैं। शिव या महादेव ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम है। शिव को महादेव, शंकर, पशुपति, भोलेनाथ आदि नामों से संबोधित किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: ब्रज क्षेत्र कृष्ण भक्ति ही नहीं शिव भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में अनेक प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। मथुरा का भूतेश्वर महादेव मंदिर इन मंदिरों में से एक है।
0: सर पहले हमें ब्रज क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिरों के नाम और उनके स्थान के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, ब्रज क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिर कामा में स्थित कामेश्वर मंदिर,
0: अच्छा,
1: गोवर्धन में स्थित चक्रेश्वर मंदिर,
0: चक्रेश्वर मंदिर,
1: हाँ चक्रेश्वर, अच्छा, मंदिर, और वृंदावन में स्थित गोपेश्वर मंदिर है।
2: सर क्या मथुरा नगर में भूतेश्वर महादेव मंदिर के अतिरिक्त अन्य शिव मंदिर भी हैं?
1: मथुरा नगर में कुछ अन्य शिव मंदिर भी हैं, जैसे रंगेश्वर महादेव मंदिर, गलतेश्वर महादेव मंदिर और गोकर्ण नाथ महादेव मंदिर।
2: अच्छा
0: अच्छा सर, ये भूतेश्वर महादेव मंदिर कितना प्राचीन है?
1: देखिए, जिस स्थान पर भूतेश्वर महादेव मंदिर बना है यहाँ अति प्राचीन काल से हिंदू मंदिरों का निर्माण होता रहा है। मथुरा में कृष्ण भक्ति की भावना के विकास से पहले के काल में यहाँ शिव भक्ति की भावना भी विद्यमान थी
2: जी।
1: ऐसा प्रतीत होता है कि भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध महादेव इस क्षेत्र के विशिष्ट स्थानीय

0: ये देव थे।
1: अच्छा,
0: बाद में इस नगर में कृष्ण भक्ति बहुत लोकप्रिय हो गई, परंतु साथ ही साथ यहाँ शिव भक्ति की धारा भी बहती रही।
2: सर, अब हमें इस मंदिर के निर्माण के विषय में कुछ बताइए कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ।
0: बिटिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी बातें जानना चाह रही हैं।
2: जी।
0: सुनिए, देखिए, भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध मथुरा के वर्तमान शिव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मराठों द्वारा किया गया था।
1: तो सर, इसका अर्थ तो ये निकलता है कि वर्तमान भूतेश्वर महादेव मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन है।
0: हाँ, लगभग। इस मंदिर के पिछले भाग में एक अन्य स्थल भी है जो किसी प्राचीन मंदिर का स्थल है। कुछ समय पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ है। इसका नाम राज राजेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर महादेव मंदिर के बाएं भाग के मार्ग से होकर इस मंदिर में भी भक्त लोग दर्शन और पूजा पाठ करने जाते हैं।
2: जी सर, अब हमें भूतेश्वर महादेव मंदिर की बनावट के विषय में कुछ बताइए।
0: बिल्कुल। ये एक चतुर्भुजीय मंदिर है और इसके ऊपरी भाग में एक काफी बड़े शिखर का निर्माण किया गया है,
2: जैसे कि हम ये सामने देख रहे हैं।
0: ये देखो सामने, कितना अद्वितीय है, है? पूजा स्थल होने के कारण प्रत्येक मंदिर महत्वपूर्ण होता ही है।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है ये तो।
0: परंतु भवन निर्माण कला की दृष्टि से मथुरा का भूतेश्वर महादेव मंदिर कोई अति विशाल, सुंदर और भव्य मंदिर नहीं है। इस मंदिर के शिखर के सामने वाले भाग में गणेश जी की मूर्ति, पिछले भाग में त्रिशूलधारी शिव मूर्ति, बाएं भाग में चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति और दाहिने भाग में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई है।
2: जी।
0: इस मंदिर को मराठों ने बनवाया था, परंतु बाद में इसमें कुछ और निर्माण कार्य भी हुआ है।
1: सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ऐतिहासिक दृष्टि से मथुरा का भूतेश्वर महादेव मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है।
0: इसके अनेक कारण हैं बेटा।
1: एक
0: कारण ये है कि जिस स्थल पर वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ है वो अति प्राचीन धार्मिक स्थल है।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो इसकी मान्यता है।
0: अति प्राचीन काल से यहाँ हिंदू मंदिर का निर्माण होता रहा है। दूसरे, मथुरा में कृष्ण भक्ति के लोकप्रिय हो जाने के बाद भी इस शिव मंदिर का निर्माण होना इस तथ्य का प्रमाण है कि इस नगर में शिव भक्ति की धारा भी लगातार बहती रही है।
2: अच्छा,
0: है ना?
2: अच्छा।
0: भूतेश्वर महादेव मंदिर के महत्व का एक अन्य विशेष कारण भी है।
2: वो विशेष कारण क्या है?
0: देखो बिटिया, 1757 ईस्वी में, अर्थात अब से लगभग 250 वर्ष पहले, मथुरा नगर को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने बिल्कुल नष्ट कर दिया था।
2: अच्छा।
0: इसके कुछ समय बाद मथुरा पर मराठों का अधिकार हो गया और इस नगर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मराठों ने ही 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मथुरा में भूतेश्वर महादेव और महाविद्या देवी मंदिर का निर्माण कराया। 1757 ईस्वी के बाद मथुरा में बनने वाले मंदिरों में सबसे प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर और महाविद्या देवी मंदिर ही हैं।
2: अच्छा, ये दोनों मंदिर सबसे प्राचीन हैं।
0: बिल्कुल
2: जी।
0: शायद इसीलिए भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में एक श्रद्धालु भक्त के मुख से ये सुनने को मिला।

0: इन लोक से न्यारी।
1: बहुत
0: क्या
1: सही
0: बात
1: है,
0: है।
1: बहुत सही कहा है।
2: अच्छा सर, एक प्रश्न बार बार मेरे मस्तिष्क को कुरेद रहा है।
0: बिल्कुल भाई, ऐसी बात पूछो जो भी बात संशय हो।
2: देखिए, अभी आपने ये बताया था कि भूतेश्वर महादेव मंदिर अति विशाल, भव्य और सुंदर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सुंदर और विशाल क्यों नहीं बना?
0: भाई तुमने भी क्या बात पूछी है, पर देखो इसका कारण मेरे अंदाज से मराठों के पास धन की कमी ही थी।
2: अच्छा,
0: 1757 ईस्वी के विनाश के बाद मथुरा नगर पर काफी समय तक मराठों का अधिकार रहा।

0: मथुरा नगर मराठा शासक बहाजी सिंधिया के प्रिय निवास स्थानों में से एक था।
1: अच्छा।
0: जिस काल में मथुरा में मराठों ने भूतेश्वर महादेव मंदिर और महाविद्या देवी मंदिर का निर्माण कराया, वो युद्ध और अशांति का वर्ष था। मराठा शासक युद्धों में व्यस्त थे और उनके पास अधिक धन भी नहीं था। मराठे इन दोनों मंदिरों को भवन निर्माण कला की दृष्टि से श्रेष्ठ ना बना सके। मैं एक और उल्लेखनीय तथ्य की ओर तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।
1: वो क्या?
0: भूतेश्वर महादेव मंदिर और महाविद्या देवी मंदिर शिखर युक्त मंदिर हैं। क्या?
2: शिखर युक्त हैं।
0: मंदिर के ऊपरी भाग में शिखर का निर्माण करना उत्तरी भारत के मंदिरों की एक मुख्य विशेषता रही है, परंतु इन दोनों मंदिरों के निर्माण के बाद मथुरा नगर में काफी समय तक शिखर विहीन मंदिरों का निर्माण हुआ। बाद में यहां पर फिर शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण का क्रम प्रारंभ हो गया।
1: अच्छा
0: जी।
1: सर, आपने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। धन्यवाद।

0: हम भूतेश्वर महादेव मंदिर की बनावट पर अब डालेंगे नजर और यहाँ की पूजा पद्धति आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के पुजारी से।
1: फिर सुबह क्या है, हम लोग स्नान करके जाड़ावारी करते हैं, जाड़ावारी करके निया महादेव जी की सेवा में इनको स्नान कराते हैं, स्नान करा के निया इनको आरती की तैयारी करते हैं, 5 बजे आरती करते हैं, 5 बजे आरती करके निया महादेव जी का प्रसाद वगैरह के भक्तों को प्रसाद देते हैं।
2: मंदिर का एक प्रवेश द्वार इसके गर्भ गृह की सीध में है। प्रवेश मार्ग एक खुला रास्ता है। इस पर 10-15 कदम चलने के बाद स्तंभों पर टिका एक ढका बरामदा है, ये देखिए सामने। इसके बाहर एक ऊंचे स्तंभ पर एक बड़ा घंटा भी टंगा है। ढके बरामदे और गर्भ गृह के बीच भक्तों के बैठने के लिए एक मंडप या जगमोहन भी है, वो सामने देखिए। गर्भगृह के चारों ओर ये परिक्रमा मार्ग भी है।
0: गर्भगृह की बाहरी दीवार पर दाईं और बाईं ओर ऊपरी भाग में शिव जी की आरती और निचले भाग में रुद्राष्टक अंकित है। गर्भगृह में एक जलेरी में महादेव की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके निचले भाग में गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। शिव मूर्ति के गले में मुंड माला है। इस मूर्ति के बाईं तरफ फन उठाए एक धातु का सर्प है और मूर्ति के दाईं तरफ वीरभद्र की मूर्ति है। गर्भगृह में नंदी बैल की मूर्तियां भी हैं।
2: शिव मूर्ति के पीछे एक बड़े आले में गणेश, पार्वती और नंदी बैल की मूर्तियां हैं। जलेरी में शिवलिंग भी है। गर्भगृह में शिव मूर्ति की ओर मुख किए नंदी बैल की मूर्तियां भी हैं।
0: और मंदिर के प्रवेश मार्ग पर भी नंदी बैल की एक विशाल मूर्ति है जिसका मुख गर्भगृह की शिव मूर्ति की ओर है।
2: ढके बरामदे के दाहिनी ओर मुख्य मंदिर से काफी नीचे पाताल देवी का मंदिर है, जहाँ लगभग 20 सीढ़ियां उतरने के बाद पहुंचा जाता है।
0: मंदिर के ढके बरामदे के दाहिनी ओर कुछ समय पहले बना एक छोटा सा मंदिर और है, जिसकी छत पर एक छोटा सा गुम्बद है। इस मंदिर में एक जलेरी में शिव प्रतिमा है और इस मंदिर में गणेश जी और नंदी बैल की मूर्तियां भी हैं।
2: इसी मंदिर के बगल में एक छोटी सी छतरी भी है, जिसकी छत भी एक छोटे गुम्बद के रूप में है। शिव की पूजा शिवलिंग की पूजा के रूप में भी होती है। इस छतरी में एक जलेरी के मध्य शिवलिंग स्थापित है।
0: और इस मंदिर में शिव मूर्ति तो है ही, शिवलिंग भी है। शिखर पर त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति भी है, सर्प की आकृति भी है और नंदी बैल भी है। शिव परिवार की मूर्तियों के अतिरिक्त विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान, पाताल देवी आदि की मूर्तियां भी हैं।

0: शिखर के निकट स्थित एक पेड़ के पास एक ऊंचे स्थान पर गोवर्धन या गिरिराज जी की आकृति भी स्थापित की गई है।
1: भूतेश्वर महादेव मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार के निकट यात्रियों और भक्तों के बैठने और विश्राम करने के लिए विशाल चबूतरे भी हैं।
0: भूतेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित होने वाला मुख्य पर्व महाशिवरात्रि पर्व है। इस दिन कांवरिया अर्थात शिव भक्त हरिद्वार सोरों आदि स्थानों से लाया गया गंगाजल शिव मूर्ति और अन्य मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर इस मंदिर में शिव विवाह पढ़ा जाता है।
1: शिवरात्रि पर्व पर भक्तगण सारी रात मंदिर में जागरण भी करते हैं।
2: ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, सिर पर जटा जटा पर गंगा, सिर पर जटा

0: महाशिवरात्रि और सावन के चार सोमवारों के अवसर पर भूतेश्वर महादेव मंदिर में फूल, केले, रुई, बर्फ आदि के बंगले भी सजाए जाते हैं। इस मंदिर में सर्पों का बंगला भी बनाया जाता है
1: और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी इस मंदिर में बहुत ही सुंदर बंगला सजाया जाता है।
0: कुछ पूर्णिमाओं के अवसर पर भी यहाँ बंगले सजाए जाते हैं।
1: भूतेश्वर महादेव मंदिर में वर्ष में अनेक बार भंडारों का आयोजन भी होता है। इसमें सबसे बड़ा भंडारा महाशिवरात्रि के पर्व पर ही आयोजित होता है।
0: बंगलों के आयोजन के अवसर पर इस मंदिर में भजन और कीर्तन भी होता है।

0: प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में भागवत सप्ताह का आयोजन भी होता है।
1: भूतेश्वर महादेव मंदिर में समय समय पर शिव पुराण का पाठ भी होता है। यहाँ रामचरितमानस की कथा का आयोजन भी होता है
0: और इस मंदिर में सुबह और शाम के समय आरती भी होती है और उसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया जाता है।
1: ये मंदिर स्थानीय और नगर से बाहर के भक्तों की भक्ति और श्रद्धा का एक मुख्य केंद्र है।
0: प्रतिदिन बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्त इस मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
2: बाबा भोले बाबा जो हैं सबको कल्याण करने वाले हैं और जब से हमने होश संभाला है तब से बाबा का याद वो है हमें, और जब से इधर गौहाट छोड़ करके इधर आए हैं तब से बराबर बाबा का हमको आशीर्वाद मिला है।
0: और महादेव से रक्षा कृपा क्षमा और दया की भिक्षा मांगते हैं। अपनी किसी कामना की पूर्ति हो जाने पर वे महादेव को विशेष रूप से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे क्रम के अंतर्गत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार रूपक श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा। आलेख डॉक्टर वी के शर्मा का था। संयोजक थे श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता श्री राम किशोर त्रिपाठी। निवेदन स्वर थे विनीत अधौलिया और डॉक्टर नीलम अग्रवाल के, और सहयोगी कलाकार थे संदीपन वी कांत नागर।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम ब्रज माधुरी में, ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे में, श्री भूतेश्वर मंदिर मथुरा पर डॉक्टर वी के वर्मा का आलेख, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की थी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: चंदन का एहसास।
1: भैया बहनों, अब कार्यक्रम ब्रज माधुरी से हमें दीजिए अनुमति। सभी को हमारी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरानी बातचीत की खबरों का खंडन किया।
1: खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
2: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग

0: नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
1: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स

0: भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं

0: पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में

0: नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिटिसाइजेज मेटा ओवर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वीडियो फ्रॉम फेसबुक, सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम सीईओ मार्क जुकरबर्ग। NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
2: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. सेक्रेटरी ऑफ

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है कुदरत, गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म कुदरत में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है कन्यादान। गीत लिखा है नीरज ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: मन में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।
1: मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कन्यादान में। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और आदित्य नारायण की आवाजों में गाया ताल फिल्म का ये गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

आशा भोसले और आदित्य नारायण की आवाजों में अभी आपने सुना ताल फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संबंधी इस आवश्यक सूचना के बाद। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाड़ी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज ग्रामीण ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मुस्कान फिल्म से। इस गीत को गाया है अदनान सामी ने, गीत लिखा है समीर ने, संगीत निखिल विनय का है।

अदनान सामी को अभी आपने सुना फिल्म मुस्कान में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का यह अगला एवं अंतिम गीत श्रेया घोषाल की आवाज में जहर फिल्म से। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है रूप कुमार राठौर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होगी। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी वार्ता। विषय है भारतीय जनमानस की प्रेरणा का स्रोत गीता। वार्ताकार हैं डॉक्टर रश्मि वर्मा।
1: जय श्री राधे। श्रोताओं, जब भी हमारे सामने श्रीमद् भगवद् गीता का नाम आता है तो अक्सर हम इसे एक धार्मिक ग्रंथ मानकर केवल पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन वास्तव में गीता जी कोई सन्यासियों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे और आपके जैसे साधारण मनुष्यों के दैनिक व्यावहारिक जीवन और हमारे व्यवहार को सुधारने वाली एक लाइफ मैनुअल जीवन पुस्तिका है। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लिए अवसाद, मानसिक तनाव और असमंजस को दूर करने के लिए भगवान ने यह उपदेश दिया था, वह आज के आधुनिक इंसान के मानसिक संघर्षों में भी उतना ही सटीक बैठता है। शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषद, गीता तथा संतवाणियों में वर्णन किया। श्रीमद् भगवद् गीता संन्यास पथ के पथिक के लिए न होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। जीवन जब बहुत कठिन हो जाता है, जब चारों तरफ निराशा का अंधकार छा जाता है, तब गीता जी हमारी उंगली थामकर हमें रास्ता दिखाती हैं। मानव के व्यवहारिक जीवन में गीता जी का विशेष महत्व है। गंगा, गीता, गायत्री, गाय और गोपाल, सफल मानव के लिए अटूट यही है ढाल। तम अपियस में जूझते जीवन चले बेहाल, टूटे बिखरे मानव को गीता जी लेती संभाल। श्रीमद् भगवद् गीता के सभी 18 अध्याय मानव व्यवहार और हमारी रोजमर्रा की व्यावहारिक जिंदगी को सुधारने की एक क्रमिक यात्रा हैं। पहले अध्याय के मानसिक अवसाद से लेकर 18 अध्याय के अंतिम निर्णय तक हर अध्याय हमारे व्यावहारिक जीवन के किसी न किसी पहलू को सुलझाता है। अध्याय प्रथम अर्जुन के विषाद योग को दर्शाता है। जीवन में जब कोई बड़ा संकट आता है तो मन घबराना, रोना, असहाय महसूस करना स्वाभाविक है। गीता की शुरुआत अर्जुन के आंसुओं से होती है। यह अध्याय सिखाता है कि अपनी कमजोरियां, मानसिक तनाव को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करना और किसी सही मार्गदर्शक के सामने प्रकट करना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। दूसरा अध्याय सांख्य योग कर्तव्य के लिए खड़े होने के व्यवहार को सिखाता है।

है अध्याय 3 कर्मयोग बिना टाल मटोल के कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनों के विश्वासघात के बाद भी दिल की कमजोरी को त्याग दिया था, यह अध्याय हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, रोने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर अपने स्वधर्म के लिए खड़े होना ही व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है। अध्याय 4 में सीखे हुए ज्ञान को अमल में लाने के लिए प्रेरणा दी गई है। ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे आचरण में दिखे। सही ज्ञान हमारे भीतर के संशय को कुल्हाड़ी की तरह काट देता है और हमें सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। गीता जी के 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग अर्थात भीतर से शांत बाहर से सक्रिय रहने की प्रेरणा दी गई है। काम करते समय हम अक्सर उसके तनाव को घर ले आते हैं। अध्याय यह सिखाता है कि कमल के पत्ते की तरह रहें जो पानी में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है। दफ्तर या समाज में पूरी जिम्मेदारी से काम करिए लेकिन अंदर से खुद को शांत रखिए। अध्याय 6 आत्मसंयम योग मन और इच्छाओं पर नियंत्रण को सिखाता है। आज के समय में हमारा मन सोशल मीडिया और भटकावों का गुलाम हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना उद्धार आपको खुद करना है। आत्म अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। 7वां अध्याय मानव जीवन के व्यवहार में ज्ञान विज्ञान योग दिखावे के पीछे का सच देखना सिखाता है। हम अक्सर लोगों के बाहरी व्यवहार या दिखावे को देखकर धोखा खा जाते हैं। यह अध्याय हमें चीजों को उनके गहराई में देखना सिखाता है। जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही इस संसार के हर जीव में एक ही चेतना है। यह दृष्टि हमें लोगों को सही ढंग से समझने में मदद करती है। गीता जी का 8वां अध्याय समय प्रबंधन और अंतिम लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य सोचता है कि उसके पास असीमित समय है और वह जरूरी कामों को टालता रहता है। यह अध्याय हमें जीवन की नश्वरता याद दिलाता है। व्यावहारिक सीख यह है कि यह हर दिन हर क्षण का उपयोग इस तरह करें जैसे अंतिम हो, ताकि अंत समय में रामदुलाव जैसे लोगों की तरह पछताना ना पड़े। अध्याय 9 में राजविद्या राजगेह योग अर्थात कृतज्ञता और भरोसे को सिखाता है। जब हम संकट में होते हैं तो हमारा भरोसा डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अन्य भाव से प्रयास करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं प्रकृति लेती है। व्यावहारिक जीवन में यह अध्याय हमें सकारात्मक रहना और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना सिखाता है। अध्याय 10 में विभूति योग दूसरों की अच्छाइयों का सम्मान करना सिखाता है। मानव स्वभाव की एक कमजोरी है दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जहाँ भी तुम्हें कोई विशेषता तेज या श्रेष्ठता दिखे उसे मेरा ही अंश समझो। व्यावहारिक जीवन में दूसरों की प्रतिभा से जलने के बजाय उसका सम्मान करना और उससे सीखना ही इस अध्याय का सार है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग अर्थात बड़ी तस्वीर को देखना है। हम अपनी छोटी सी दुनिया की समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं। जब भी श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन समझ जाता है कि वह तो केवल एक निमित्त है। यह अध्याय में सिखाता है कि खुद को बहुत बड़ा करता न माने, अहं छोड़कर जीवन की बड़ी तस्वीर को देखें। गीता जी का 12वां अध्याय भक्ति योग मानव जीवन के व्यावहारिक जीवन में मानव को सहनशीलता और संभाव में रहना सिखाता है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने रामदुलाव जैसे कई गद्दारों को उनकी गद्दारी जानने के बाद भी उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, दूसरों के व्यवहार से परेशान होते हैं, उन्हें शत्रु मित्र मान अपमान में संतुलित रहना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। यही मानसिक शांति का मार्ग है। गीता जी का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर और आत्मा का अंतर सिखाता है। हम अक्सर किसी की शारीरिक बनावट उम्र या बीमारी को ही सब कुछ मान लेते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि शरीर क्षेत्र केवल एक साधन है, असली शक्ति उसके भीतर बैठी आत्मा क्षेत्रज्ञ है। अपनी शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानना ही इसका व्यावहारिक रूप है। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग संगति का असर और मानसिक मूड के बारे में बताता है। समाज में हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। यह अध्याय

मानव व्यवहार को समझने का सबसे बड़ा साधन है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अर्थात संसार के ताने बाने को समझाता है। संसार को एक उल्टे पेड़ के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। व्यावहारिक जीवन में समाज और परिवार के रिश्तों के ताने बाने को समझकर बिना आसक्ति के अपनी भूमिका निभाना ही इस अध्याय की सीख है। 16वां अध्याय अच्छे और बुरे व्यवहार की पहचान सिखाता है। यह अध्याय सीधे सीधे इंसानी व्यवहार का वर्गीकरण करता है। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि आसुरी व्यवहार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। अध्याय 17 में हमारे खानपान और सोच का स्तर अच्छा बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। अध्याय गीता जी 18वां

प्रेरणा मिलती है। अध्याय गीता जी 18वां अध्याय अंतिम निर्णय और समर्पण की प्रेरणा देता है। पूरे 18 अध्यायों का निचोड़ और जीवन का अंतिम निष्कर्ष इस अध्याय में भरा हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात मैंने सब कुछ बता दिया, अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। और अर्जुन कहता है कि करिष्ये वचनम, तब मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूँ। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन के सारे भ्रमों को मिटाकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़कर पूरी स्पष्टता के साथ अपना कर्म करना ही जीवन की पूर्णता है। गीता जी के माध्यम से श्री भगवान को समस्त संसार को श्री गीता जी के माध्यम से श्री भगवान ने समस्त संसार को जो दुख तम निराशा में पड़े हैं स्वयं बढ़कर उनकी सहायता करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। दूसरों को सुख देने और दूसरे के दुख का निवारण करने के लिए प्रयत्न योगी को भगवान श्री कृष्ण ने परम योगी कहा है। अतः गीता जी से सर्वे भवन्तु सुखिना की शिक्षा व्यावहारिक जगत में मिलती है। प्रिय श्रोतागण, यह भी समझ आता है कि भगवान साधक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, उनके भाव की तरफ देखते हैं। जब युद्ध भूमि में होकर भी अर्जुन अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूलकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने की बात कहते हैं, तब भगवान इस वचन पर ध्यान नहीं देते, उपदेश आरंभ कर देते हैं, उसे कर्म प्रधान बनाते हैं। जिस प्रकार रोगों का निवारण रसायन होता है, वैसे ही हृदय रोगों का निवारण भक्ति रसायन है। भगवान ने अर्जुन को गीता नहीं दी, अपना हृदय दे दिया है। हृदय भी सुपात्र व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। अर्जुन की पात्रता युद्ध के लिए दुर्योधन व अर्जुन के विचार से समझी जा सकती है। दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए युद्ध मरते हैं तो सबको मर जाने दो, हम राज्य प्राप्त करेंगे। किंतु अर्जुन कहता है कि हमें अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, ना तो राज्य, ना सुख, ना भोग, यह सब जिसके लिए चाहिए वे तो मरने के लिए तैयार हैं। जब वे सब मारे ही जाएंगे तो मैं अकेला राज्य का सुख भोग कर क्या करूँगा। इस प्रकार अर्जुन की प्रवृत्ति लोक हित की दृष्टि से है और दुर्योधन की प्रवृत्ति स्वार्थ की दृष्टि से है। भगवान के हृदय में जब अर्जुन के प्रति प्रेम भाव का उद्योग हुआ, तब उन्होंने गीता का गान किया। रामायण भी एक मधुर गीति काव्य है तो महाभारत एक व्यापक समाज शास्त्र। महाभारत का भीषण युद्ध समाज को जागृत करता है कि जब जब मर्यादा का उल्लंघन निस्वार्थ की अति होती है, तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। कुल के कुल अधर्मियों के कारण नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण महाभारत धृतराष्ट्र के आंखों से ही नहीं बल्कि मन और विवेक से भी अंधे होने का परिणाम है। जिस प्रकार पांडव उन्हें अपने पिता का ज्येष्ठ मानकर पिता तुल्य मानते थे, यदि वह भी इस धर्म का पालन करते तो कहीं ना कहीं द्रौपदी के साथ स्वयं के पुत्रों से भरी सभा में हुआ मर्यादा का उल्लंघन रोक देते। दुर्योधन अपने मामा शकुनी की सलाह में चलकर संस्कारों को न खोते, अपने भाइयों को भी उनका हक सम्मान देते आदि व्यवहार समाज के लिए दर्पण की तरह हैं, जिनसे सीख मनुष्य के संयमित धर्मपरायण कर्तव्यनिष्ठ जीवन को जीने की ओर प्रेरित करती है। गीता किसी एक जाति, धर्म, देश, लिंग आदि भेद में बसी हुई नहीं है, ये सबके लिए उपयोगी है। इसमें चंदन, बंसी माला, वेशभूषा आदि की कोई बाध्यता नहीं है, केवल हृदय की प्राप्ति की आवश्यकता है। गीता हृदय से पढ़कर भाव समर्पण से ही जी जा सकती है। गीता जिस धर्म, उपासना और योग का अपना वर्णन करती है, वह यज्ञशाला में, एकांत में नहीं अपितु लोक व्यवहार में बैठकर ही होता है। दिव्य भगवद गीता के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे तात, भलाई करने वाला बुराई से कभी पराजित नहीं होता। समाज की व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने हेतु इस प्रकार के विचारों का दीपक प्रज्वलित करना अति आवश्यक है, जिसमें गीता माता की भांति सहायक है, जिसके आश्रय में जीवन के सारे कष्ट, थकान, सब कुछ दूर हो जाते हैं। भक्त भी शिशु की भांति भगवान चरणाश्रित होता है। न शुचिता है, न साधना है, केवल मात्र परायणता। इसी भाव की पुष्टि करते हुए स्वराचित भाव, मति रे आचल की छाया में छिप जाना है,
थका रुका यह जीवन मुझको,

0: हैं। बिनुआ जी ने गीता जी को माता कहा है, यथा मेरा शरीर माता के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। जहाँ हृदय का संबंध होता है वहां तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूँ। यथा स्वरचित भाव, यथा अर्जित श्रद्धा को करना है, विश्वास कमाना है, बाकी जख्मों पर तू मरहम लगा दे, थोड़ी और पिला दे साकी। यहाँ साकी से भाव भगवान से है। जय श्री राधे, सादा धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, भारतीय जनमानस की प्रेरणा का स्रोत गीता। वार्ताकार थी डॉक्टर रश्मि वर्मा। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
2: जनपद सुल्तानपुर में जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई और खरीफ की फसलों को राहत मिली, लेकिन पूरे मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से 3 अगस्त के हिसाब से जिले में अब भी वर्षा सामान्य से लगभग 1/4 कम दर्ज की गई है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होती तो धान सहित अन्य खरीफ की फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के निर्णय का जिले के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता खेती किसानी में सहारा देती है और यह फैसला किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिले के लोहरा मऊ भगवानपुर के किसान श्रीनाथ भार्गव ने कहा,
3: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि हम किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं इनसे।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जिले में कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी व उत्पादन वृद्धि के संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने बताया।
4: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसमें जो भी धनराशि दी जाती है उससे वो किसान भाई अपने जो कृषि निवेश है उनको खरीद करके जो प्रति उनके खेत पड़े रह जाते थे उसमें फिर से खेती कर सकेंगे और इस प्रकार जिले के किसान आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका उन्नयन हो सकेगा।
2: श्रावण मास शुरू होते ही कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख राजमार्गों और कावड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सतत निगरानी और पेट्रोलिंग कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया,
5: जितने दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुपात में उपलब्ध जो हमारी फोर्स है उसको लगाया गया है। प्रयास पूरा है कि किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटल घटनाएं ना हो।
2: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी जुलाई 2026 की IGRS मासिक रैंकिंग में सुल्तानपुर पुलिस ने 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण तथा शिकायतकर्ताओं से मिले संतोषजनक फीडबैक के आधार पर यह उपलब्धि हासिल हुई है। शासन ने शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए सुल्तानपुर पुलिस को प्रदेश में सर्वोच्च स्थान दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जुलाई 2026 में जिले में 3 सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1223 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इनमें 20 जुलाई को 477, 21 जुलाई को 539 तथा 31 जुलाई को बल्दी राय ब्लॉक में 207 जोड़ों का विवाह कराया गया। बल्दी राय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 205 हिंदू एवं 2 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। योजना के तहत विवाहित जोड़ों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता एवं गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन ने इसे सामाजिक समरसता और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देने की महत्वपूर्ण पहल बताया। वन विभाग ने सुल्तानपुर जिले की 979 ग्राम पंचायतों को अगले 4 वर्षों में हरित ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत सदर, कादीपुर, जयसिंहपुर और

0: हुआ रेंज में पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, शीशम, सागौन, आम और अमरूद जैसे पर्यावरण संरक्षण वाले पौधे लगाए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि वर्ष 2030 तक जिले के 15% क्षेत्र को हरित आवरण से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में कृषि, पंचायती राज समेत अन्य विभागों का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य हरियाली बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।
1: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
2: मुजफ्फरनगर जिला इस समय हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लाखों कांवड़िए जनपद से प्रतिदिन अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। शिव भक्त कांवड़िया अपने गाँव और कस्बों के शिवालयों में पवित्र सावन माह में जलाभिषेक करते हैं। आगामी 11 अगस्त यानी महाशिवरात्रि तक मुजफ्फरनगर जिला पूरी तरह शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में डूबा रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के सभी मुख्य मार्गों पर कांवड़ियों के लिए कांवड़ सेवा शिविर बने हैं। इन शिविरों में हजारों लोग शिव भक्तों की दिन रात सेवा कर रहे हैं। शिविरों में शिव भक्तों के लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। 4 अगस्त से सभी मुख्य मार्गों पर वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे और यह सभी मार्ग कांवड़ियों के हवाले हो जाएंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के शिव चौक पर ATS तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 89 सेक्टर और 141 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। जिन मुख्य मार्गों से शिव भक्त कांवड़ निकलते हैं उन सभी मार्गों पर 4 अगस्त से आम जनता की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। DGP राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरठ जोन के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु अथवा आम नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या व्यवधान का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों को के अधिकारियों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। दिल्ली पुलिस ने ISI से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ चांदमिया और सलमान मुजफ्फरनगर जनपद के अंति गांव निवासी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सलमान और दानिश उर्फ चांदमिया दोनों दोस्त हैं और इनमें से सलमान जहां दिल्ली में रहकर फर्नीचर का काम करता है तो वहीं दानिश उर्फ चांदमिया सोलर पैनल लगाने का काम करता है। सिविल लाइन थाने में SSI प्रवीण शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सीधे सिविल लाइन थाने के भीतर हुई। रिश्वत लेने के तुरंत बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना सिकेड़ा ले गई, जहां आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। मुजफ्फरनगर जनपद स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक माह में 3 अलग अलग मामलों में 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। लूट के बाद हत्या के एक मामले में 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3rd के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर द्वारा 4 अभियुक्तों अजीत, अनिल, सुनील और सूरज को फांसी की सजा सुनाते हुए सभी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तिताई इलाके के मांडी गांव में 16 वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश में हुए बहुत चर्चित राजवीर सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व प्रधान सहित 2 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मामले को दुर्लभ और दुर्लभतम मानते हुए पूर्व प्रधान प्रमोद और सहदेव उर्फ पप्पू को फांसी की सजा सुनाई। मुजफ्फरनगर के फुगौना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में कच्चा मकान गिरने से एक पिता और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। भारी बारिश के बीच मकान गिरने से 52 वर्षीय पिता इस्लामुद्दीन, बेटा जिशान 8 माह, आहद 2 साल, बेटी अल्फिसा 5 साल और रुखसान तकरीबन 12 साल की JCB की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर जिले में जुलाई माह के प्रारंभ में हुई लगातार बारिश के चलते

0: नर्मदा नदी, काली नदी और हिंडन नदी में कई दिन तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के सभी उपाय किए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबो हवा। विषय है जल संरक्षण के उपाय। आलेख एवं वाचन है विष्णु प्रकाश शर्मा के।
1: निसंदेह जल ही जीवन की महती आवश्यकता है। यदि पृथ्वी पर जीवन का मूल कारण जल की उपलब्धता है तो जीवन के संरक्षण के लिए जल का संरक्षण भी अनिवार्य है। पिछले कुछ दशकों से जल की समस्या विकट होती जा रही है। इसका कारण यह नहीं है कि जल कम अथवा समाप्त हो रहा है, अपितु बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण, वाष्पीकरण और जल प्रदूषण से बड़ी मात्रा में जल संकट के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। जल का दुरुपयोग भी जल की कमी उत्पन्न कर रहा है। ये समस्याएं तो सामने दिखाई दे रही हैं, इनसे भी कई गुना गंभीर समस्याएं अन्य भी हैं। यदि प्रकृति की ओर देखें तो जहां एक ओर प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा का जल घटता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के भीतर जल भंडार का अधिक से अधिक दोहन व शोषण किया जा रहा है। जल के उचित प्रबंधन का अभाव हमारे दैनिक जीवन में जल की कमी का एक प्रमुख कारण है। जल का प्रबंधन, संग्रहण, संरक्षण, बचाव कैसे किया जाए, ये वर्तमान शताब्दी की प्रमुख चुनौती है। जल संसाधनों का नियोजन एवं प्रबंधन एक जटिल कार्य है, क्योंकि जल के प्रयोग एवं उपभोग के स्तर पर अनेक प्रकार के अभिकर्ता अंतर्ग्रस्त होते हैं। इनके लक्ष्य, परिवर्त्य और प्रेरणाएं विविध होती हैं और पर्यावरणीय चिंताओं का स्तर भी भिन्न होता है। कृषि, उद्योग, घरेलू वितरण और उपभोग से लेकर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और मनोरंजन के साधनों के रखरखाव तक जल संसाधनों के प्रयोग में जो क्रियाएं, संस्थाएं एवं अभिकरण प्रत्यक्ष तौर पर परस्पर अंतरक्रिया करती हैं, वे अनेक हैं। अतः जल का समेकित प्रबंधन एवं संग्रहण आवश्यक है, ताकि जल के प्रयोक्ताओं के बीच प्राकृतिक विवादों को कम किया जा सके एवं नए नियमों और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित किया जा सके। प्राचीन काल से ही भारत में जल संचयन की परंपरा रही है। कुएं, बावड़ियां, तालाब, कुंड आदि के माध्यम से जल का संचयन होता आ रहा है। आधुनिक जल संचय प्रणाली के होते हुए भी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली आज के युग में भी पूर्णतया उपादेय है। वर्तमान में भारत के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 180 अरब घन मीटर है, जो देश में उपलब्ध कुल जल की संभाव्यता का मात्र 10% ही है। देश की अर्थव्यवस्था में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल का दोहन सीधे उपभोक्ताओं के नियंत्रण में होने से यह विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिक साधन बन गया है, जिसके की कई स्थानों पर विवेकपूर्ण उपयोग भी नहीं किया गया है, जिससे समुचित मात्रा में जल उपलब्ध कराना कठिन हो रहा है, क्योंकि अनावश्यक दोहन होने से स्थिति विकट हो गई है। भूजल स्तर में गिरावट चिंता का विषय है। भारत में सभी जगह पर यह स्तर निरंतर घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के चलते पृथ्वी के गर्म होने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। इससे पानी की उपलब्धता कम होती जाएगी। वर्षा तो अधिक होगी, लेकिन वह इतनी शीघ्रता से होगी कि बाढ़ें आएंगी, पानी बह जाएगा, जिससे भूमि के नीचे पानी कम पहुंचेगा। क्योंकि जल की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं है, अतः उपलब्ध जल का सही प्रबंधन ही एकमात्र उचित विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण ही एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण जल के अभाव को समाप्त करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है। इसके अंतर्गत वर्षा जल के संचयन की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर वर्षा के जल को छतों पर रोककर जल स्रोतों में भेजा जाता है। अध्ययनों के अनुसार यदि 1 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो 1000 वर्ग फुट की छत से लगभग 1000 लीटर जल बहकर निकल जाता है। यदि सभी लोग ऐसे उपाय कर जल संग्रहण करें तो जल संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता मिल सकती है। वर्षा के जल के संग्रहण से भूजल भंडार

में वृद्धि, भूमिजल गुणवत्ता में सुधार एवं भूजल के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे जल स्तर में गिरावट पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और जल के सतही बहाव से होने वाली समस्याओं जैसे जलाक्रांता, नालों का भरकर रुक जाना इत्यादि को भी कम किया जा सकता है। साथ ही वर्षा जल के संचयन से जल की उपलब्धता बढ़ाने में भी सफलता मिलेगी, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ जल की पर्याप्त आपूर्ति होती है अथवा सतही संसाधनों का अभाव है। बाढ़ की आपदा भी इस प्रक्रिया से कम होगी। स्वतंत्रता के बाद से अनेक बड़े बांधों का निर्माण किया गया है और हो रहा है, जिससे नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक लाभ हुए हैं। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनता के सहयोग से जल के प्राचीन स्रोतों को पुनः विकसित करना आवश्यक है, तभी भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जल आपूर्ति की समस्या का निदान संभव हो पाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था जल संरक्षण के उपाय। आलेख एवं वाचन थे विष्णु प्रकाश शर्मा के। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। विषय है डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। इनसे भेंट कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं OP सिंह।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जो मौसम आने वाला है वो गर्मी के साथ साथ बरसात भी रहेगी, उमस रहेगी। क्योंकि बरसात के मौसम में इधर उधर पानी भर जाता है, चाहे वो गड्ढे हों, चाहे हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पानी जमा हो जाता है, कई बार कूलरों में भी जमा रहता है और कूलर चलते नहीं है। तो इस स्थिति में आपके जो मच्छर हैं वो पनप जाते हैं, और मच्छरों के काटने से जो होने वाली बीमारी है, इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कई बुखार ऐसे होते हैं जो सामान्य तौर पर गर्मी और बरसात के मौसम में सामने आते हैं, और वो लगभग 4-5 महीने का ऐसा मौसम रहता है जहां हम इन सब चीज़ों से जूझते रहते हैं। तो ये मलेरिया और डेंगू बुखार की रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, इलाज क्या है, सावधानियां क्या हैं, ये आज हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी, जो पूर्व CMO हैं और हमारे मथुरा जनपद में कार्यरत रहे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी, धन्यवाद।
1: अब जो बरसात का मौसम आएगा, जो सामान्य तौर पे मलेरिया डेंगू होने की संभावना रहती है, तो थोड़ा सा बताएं कि किन कारणों से ये जो समस्या पैदा होती है, कहाँ से शुरुआत इसकी होती है?
2: देखिए, मलेरिया, डेंगू और ये चिकनगुनिया, ये तीनों ही जो है वेक्टर बॉर्न डिसीज है। वेक्टर बॉर्न डिसीज मीन्स जो वायरस है या विषाणु हैं, जिनको आजकल सबसे ज्यादा समझ में आ सकता है मच्छरों द्वारा फैलता है।
1: जी जी जी जी।
2: तो जो मच्छर हैं हमारे यहाँ, जो मलेरिया फैलता है वो तो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और ये डेंगू जो फैलता है वो एडीज मच्छर होता है, जो बहुत ही साहसी किस्म का होता है। सामान्यतः मच्छर जो मलेरिया के होते हैं वो रात के दौरान काटते हैं, लेकिन ये जो एडीज मच्छर है जो डेंगू का है, ये दिन में भी काटता है।
1: मतलब रात को तो काटेगा, दिन में भी
2: दिन में भी काट सकता है। बहुत साहसी तरह का मच्छर होता है।
1: जी जी।
2: तो ये जो है मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर से जनित बीमारियां हैं, और ये फैलता कैसे है कि जो भी संक्रमित, यानी जिसको मलेरिया हो गया है या डेंगू हो गया है, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको मच्छर ने काटा और वो पहले से ही संक्रमित है, जब और उसके अंदर वायरस मलेरिया के और डेंगू के पैदा है, तो जैसे ही मच्छर ने उसको काटा और जब मच्छर ने उसका खून चूसा और वो स्वस्थ व्यक्ति के पास दोबारा काटने पहुंच गया, तो उसने उसके अंदर जो संक्रमित व्यक्ति था उसके वायरस डेंगू के या मलेरिया के, वो उसके अंदर मच्छर के अंदर प्रवेश कर गए। जब मच्छर के अंदर प्रवेश कर गए तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो उसी में विकसित होंगे, फिर उसने स्वस्थ

0: व्यक्ति को या किसी को भी, महिला को या पुरुष को या बच्चों को काटा तो वो उसके अंदर पहुंचा दिए। जब वो संक्रमित मच्छर ने स्वस्थ मनुष्य को काटा तो वो वायरस जो है उसके शरीर में प्रवेश कर गए, और वो 4-5 दिन तक, डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमित काल है, वो 5 से 7 दिन तक होता है। तो जब काटा, आज काटा संक्रमित मच्छर ने, तो 5 से 7 दिन में आपको, यानी जो भी संक्रमित हो गया उसको 5-6 दिन में बुखार आ जाएगा। और अगर मलेरिया वाला वायरस उसने काटा है तो वो लगभग 14 दिन बाद बुखार आता है, इतना अंतर है
1: यानी आज मच्छर ने काटा उसके 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के
0: तक
1: बीच
0: बीच में।
1: में,
0: हाँ
1: आप अगर दूसरे संक्रमित व्यक्ति से वो मच्छर काट के
0: हाँ
1: संक्रमित होके आया है तो आपको वो चीज जो है प्रभावित कर
0: प्रभावित
1: सकती
0: कर
1: है।
0: देगा।
1: अब इसमें यह है कि जो जैसे मान लो आज काटा और आपको तो पता नहीं है, लेकिन बाद में संक्रमण की वजह से आप में बीमारी के लक्षण आएंगे, तो शुरुआत में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसमें?
0: देखिए, उसमें जो शुरुआत में जो लक्षण पैदा होते हैं, सबसे
1: जी
0: पहले तो बुखार जो है, आपको बुखार ठंड लग के आएगा,
1: जी
0: अचानक तेज बुखार आता है और ठंड लगती है।
1: जी
0: दूसरा जो होता है कि सिर में और मांसपेशियों में, और ये जो डेंगू का जो बुखार है उसमें आँखों के पीछे
1: जी
0: ज्यादातर दर्द यहाँ होता है, और आँख अगर आप दबाएंगे
1: हाँ
0: या हिलाएंगे तो दर्द और ज्यादा महसूस
1: जी
0: होगा।
1: जी
0: ये
1: आंखों के
0: तो
1: और कान के पीछे बीच में
0: हाँ,
1: जो
0: बीच
1: जगह
0: में
1: है।
0: जो जगह है अगर
1: हाँ
0: उसको प्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा,
1: जी
0: और तेज बुखार होगा, ठंड के साथ होगा, और ये आपकी काफी कमजोरी महसूस होगी, आपको घबराहट भी महसूस होगी, और भूख की बेहद कमी हो जाती है इसमें, और स्वाद का भी जो है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, गले में भी हल्का सा दर्द या खराश हो जाती है, और बीमारी बहुत महसूस करता है। मलेरिया में भी बुखार ऐसा ही आएगा, लेकिन वो क्या है कि मलेरिया का बुखार में ठंड अपेक्षाकृत डेंगू से ज्यादा लगती है।
1: ज्यादा लगती है।
0: दूसरा, इतना तेज सर्दी लगती है उसको कि कभी कभी मरीज जो है दांत भी किटकिटाने लगता है, दर्दी लोग जो
1: मलेरिया
0: मलेरिया में।
1: वाले
0: हाँ
1: में
0: जी,
1: हाँ। उस समय
0: और
1: तो ये लगता है कि इस ठंड को छुड़ाने के लिए जितने भी
0: हाँ,
1: एक दो चार
0: ज्यादा से
1: हजार
0: ज्यादा
1: डाल
0: कपड़े
1: दो
0: हो उतने
1: आप।
0: डाल लो।
1: जी
0: मलेरिया में ऐसा होता है,
1: जी
0: लेकिन डेंगू में उसको ज्यादा कपड़े ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
1: ठंड लगेगी लेकिन हल्की
0: हाँ, हल्की
1: लगेगी।
0: लगेगी, और जब आप उसका महसूस करेंगे हाथ से तो उसका शरीर ठंडा महसूस होगा, और पल्स उसकी फीबिल होगी, यानी उसकी पल्स कमजोर होगी, नाड़ी कमजोर होगी, और उसका रक्तचाप भी कम होगा डेंगू वाले का।
1: डेंगू वाले का।
0: मलेरिया वाले का शरीर आपको गर्म लगेगा और पल्स भी उसकी फीबिल नहीं होगी, मतलब
1: तो ये जो है अंतर है
0: अंतर
1: उसमें।
0: है दोनों।
1: अब इसमें जैसे मान लो बुखार आया व्यक्ति को, उसको लक्षणों के आधार पे लग रहा है कि मलेरिया भी हो सकता है या डेंगू भी हो सकता है, कई बार हम उतना जज नहीं कर पाते, तो क्या लगता है कि सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं बुखार होने की संभावना हो गई है या बुखार आ गया है, तो क्या एक रक्त का परीक्षण बनता है कि हम
0: जी,
1: रक्त की जांच करा लें?
0: रक्त के परीक्षण की जांच तो अवश्य बनती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चिकित्सक ये पूछता है आपको कि आपको बुखार रोजाना आ रहा है या तीसरे दिन आ रहा है या चौथे दिन आ रहा है। अगर हमको पीरियोडिकली बुखार आ रहा है तो हम ये पहले जस्ट सोचेंगे कि ये मलेरिया हो सकता है, और अगर डेंगू का बुखार है तो रोज आएगा। ठीक है, तो एक तो ये है कि मलेरिया के बुखार में अंतर ये आएगा कि 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आएगा, डेंगू का बुखार रोज रहेगा, और मलेरिया का बुखार काफी तेज भी होता है, डेंगू का अपेक्षाकृत 102-103 तक रहता है, लेकिन जब मलेरिया दिमाग में चढ़ जाता है, जिसको सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं, वो 105 और 106 तक भी पहुंच सकता है, और उसमें बेहोशी तक भी आ जाती
1: जी
0: है।
1: तो
0: तो
1: शुरुआत
0: डेंगू
1: में
0: के बुखार में भी एक और जो है, परीक्षण से पहले भी कुछ ऐसे लक्षण हो जाते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। जो डेंगू जो है 3 प्रकार का होता है, एक तो डेंगू क्लासिक डेंगू जिसे साधारण डेंगू कहते हैं, उसमें साधारण बुखार आएगा और अपना 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। एक होता हैमरेजिक डेंगू, उसमें क्या है, डेंगू हेमरेजिक में आपके मसूड़ों में खून आएगा, नाक में खून आएगा, या उल्टी में या मल में खून आएगा।
1: जिसको देख के
0: हाँ,
1: सामान्यतः घबराहट होती है।
0: घबराहट होती है कि ये
1: जी
0: डेंगू हो सकता है।
1: जी
0: एक डेंगू की जो अगली स्टेज होती है जिसको कहते हैं शॉक, DSS, जिसको कहते हैं शॉक सिंड्रोम।
1: जी
0: जब इसी कंडीशन से अगर मरीज आगे जाता है तो वो शॉक सिंड्रोम में आता है। शॉक सिंड्रोम मतलब उस मरीज को धीरे धीरे बेहोशी आने लगती है, और बेहोशी आने के बाद फिर वो बेचैन हो जाता है। उसके बाद जो 3-4 सिम्टम होते हैं वो कहेगा आपसे

0: बहुत पेट में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप इसकी स्थिति खतरनाक हो रही है, बहुत ज्यादा तेज पेट में दर्द होगा और आपका ये लगातार उल्टी होंगी, उसको तेज सांस लेगा और मशूड़ों से खून या नाक से खून ये सा आएगा, थकावट होगी, बेचैनी होगी और उसको जो है ये सोच रहा है कि मैं जो है वो कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये सब
1: तो ये थोड़ा सा कहते सीवियरिटी है,
0: सीवियरिटी
1: कि यहाँ आपको थोड़ा ये सावधान हो जाना चाहिए कि अब हमें जो है मतलब कम से कम घरेलू इलाज न करें,
0: अच्छे अच्छे
1: रेगुलर निगरानी रखें,
0: तब हमको जरूरत पड़ती है कि इसका हम रक्त का परीक्षण कर लें। अगर हम उसकी स्लाइड बनाते हैं
1: जी
0: तो मलेरिया की तो स्लाइड बन जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि इसमें जो है वायरल वो प्लास्मोडियम वाइवैक्स है या फाल्सीफेरम है या वेल है जो भी है, और इसमें जो साधारण डेंगू होता है उसमें भी वही लक्षण आते हैं, लेकिन जब आपका हेमरेजिक हो जाता है या शॉक सिंड्रोम वाला हो जाता है तो उसके परीक्षण में प्लेटलेट्स बहुत डाउन होती हैं,
1: जिसको सामान्यतः आजकल जब हम बात करते हैं डेंगू की, तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे जब घबराहट की बात होती है इसमें प्लेटलेट्स जब गिरती है उसमें, तो इसमें जो इसका जो कारण होता है वो क्या स्थिति पैदा होती है, जैसे आपने कहा कि उसमें थोड़ा सा खतरनाक स्थिति हो रही है, उसमें थोड़ा वो हो रहा है, थोड़ा दिन का हो गया, उसमें गिरने का जो कारण है इनका वो क्या है?
0: इसमें ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में गिरती हैं वो एक साधारण बुखार में, सामान्य बुखार में भी हो सकती हैं।
1: जी जी।
0: अगर मान लो आपको कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है या वायरल है, कोई भी फीवर है, हम उसमें भी प्लेटलेट्स आपकी गिर जाएंगी।
1: हाँ।
0: और प्लेट सेल गिरने का एकमात्र कारण होता है रोगी की रोग प्रतिरोध क्षमता का कम होना, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी।
1: जी जी।
0: अगर जैसे हमारा आज बुखार आया, कल बुखार आया, तो उसमें ये आपकी रोग की तो क्षमता बढ़ने से सबसे पहले अटैक प्लेटलेट्स होता है।
1: अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब जो हमारी इम्यून पावर को बनाए रखती है या रोग निरोधक क्षमता को जो बनाए रखती है, वो जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होती है,
0: वो कम,
1: और चूंकि रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर हो जाती है उनके कम होने से, इसीलिए हमारे स्वास्थ्य पर उनका जो प्रभाव है वो पड़ जाता है। ये तो इसमें जो इम्यून पावर अगर किसी व्यक्ति की अच्छी है या रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है या कहें वो तंदुरुस्त है, तो डेंगू होने के बावजूद भी उसको उतना नुकसान नहीं होता, ये आप कहना चाह रहे हैं?
0: हाँ, उतना अपेक्षाकृत नहीं होगा। अगर उसको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4 का डेंगू है, जिसमें इसका एक वो बैक्टीरिया होता है NS1, NS2 और NS3, अगर NS1 पॉजिटिव है तो उसकी प्लेटलेट इम्यूनिटी पावर पे अफेक्ट करेगी, ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी, तो उसकी प्लेटलेट डाउन हो सकती है, चाहे वो कितना ही मतलब
1: उसकी कितनी भी अच्छी इम्यून पावर हो उसमें। तो ये अब इसमें प्रश्न उठता है कि भाई मान लो ये स्थिति अगर पैदा हो गई तो क्या, जैसे घबराने से तो काम नहीं चलेगा, अब हमको या हमारे जो मरीज के जो साथ के व्यक्ति हैं, परिवार वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्या बनता है इसमें?
0: देखिए, बुखार चाहे मलेरिया हो या डेंगू हो, सबसे पहले हमको उपचार को सोचने से पहले उसको एक इलाज होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोथर्मिया। अगर तेज बुखार है तो पानी की भीगे की पट्टी, शीतल जल की पट्टियां माथे पर रखेंगे तो उसका जो बुखार का लेवल है वो 102 से नीचे रहेगा। हम आपको चिंता मतलब हमको या मरीज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर 102 से बुखार कम हो रहा है तो सबसे पहले चिकित्सक को दिखाने से पहले
1: घर से ही
0: शुरुआत करनी है कि मरीज को बुखार को ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर तेज बुखार है, हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो सिर्फ ठंडे पानी की पट्टी रखने से आप उसको उतार के और चिकित्सक के पास तक पहुंच सकते हैं।
1: यानी उसको ठंडे पानी अपने पास ले लिया, दो पट्टी ले ली और उसको बार बार पलट पलट के उसके माथे पे रखते रहे तो कम से कम उसकी जो खतरनाक स्थिति है उसको पहुंचने से हम बचा सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर के पास उसको ले जाए, तो डॉक्टर जैसे क्या, तो शुरू में तो एक जांच पांच होंगी, उससे पहले एक प्रारंभिक इलाज देगा,
0: उसके लिए सबसे पहले ये इलाज करेगा
1: लाइफ सेविंग वाला।
0: लाइफ सेविंग में ये है कि अगर उसको तेज बुखार है तो उसको स्पॉन्जिंग करेगा, ठंडे पानी से उसकी भीगी पट्टी को बरकरार रखेगा, चालू रखेगा, और जो नजदीक से नजदीक जो सबसे पहले दवाई है जिसको गांव में भी मिलता है, हर जगह मिली है, पैरासिटामोल की गोली।
1: जी जी।
0: वो दे सकते हैं,
1: बुखार कोई भी हो वो तो हम दे ही सकते हैं,
0: पैरासिटामोल 500 mg वो आप किसी भी मरीज किसी भी तरह के बुखार में आप दे सकते हैं। और ध्यान रहे, इसमें पैरासिटामोल इसलिए दी जाती है, अगर डेंगू है, डेंगू में हेमरेजिक कंडीशन है, तो हम एक वो आती है जिसको कहते हैं

0: एस्प्रिन है ना, एस्प्रिन वो भूल के भी नहीं देना है।
1: जी जी, कोई घरेलू इलाज हमको नहीं करना चाहिए,
0: नहीं,
1: सिवाय ये पानी की पट्टी,
0: सिवाय पानी की पट्टी,
1: दवाएं कम से कम न दे,
0: दवाएं न दे के उसको स्पॉन्जिंग करना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी भीगी पट्टी रखे हाथ पे, पैर पे, माथे पे, शरीर को ठंडा करके ले जाए,
1: बाकी फिर डॉक्टर की जो सलाह है वो इलाज आपको,
0: वो इलाज।
1: अब इसमें जैसे आपने एक बात कही थी कि जो खून की उल्टी हो जाना या वो हो जाना, ऐसे में लोगों में घबराहट बहुत हो जाती है, कई बार लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपना इलाज शुरू कर देते हैं, या किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को इलाज दिया उसको फॉलो करने लगते हैं, तो ये जो स्थितियां हैं वो कितनी खतरनाक बना देती हैं कि सही व्यक्ति के इलाज के लिए उसमें जो परिस्थिति है उसको।
0: देखिए ये एक लक्षण है, जैसे किसी के मसूड़े में खून आना या नाक से नक्सीद में चलना और किसी के उल्टी में या मलमूत में खून आना, ये एक लक्षण है, बीमारी तो नहीं है ना।
1: जी जी जी।
0: तो इसलिए इसमें घबरा रहना चाहिए, और जो कह रहा है कि मैंने ये इलाज कराया, मैंने इलाज कराया, वो इलाज नहीं कराना चाहिए। ये एक लक्षण मात्र है, ये हमको ये बताता है कि अब आप चिकित्सक की देखरेख में जाएं, अपना इलाज ना करें। अगर ये गंभीर बीमारी है, अगर हेमरेजिक कंडीशन आ रही है, शॉक में जा रहा है, तो निश्चित ही किसी के कहने पर इलाज नहीं करना चाहिए, सीधा चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराना।
1: जी जी, कुल मिलाकर के जो भी अस्पताल आपके पास है, जो भी डॉक्टर है उसके आप जाएं और उसके हिसाब से आप करें। अगर ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशन बनेगी तो डॉक्टर खुद सलाह देगा कि आप इसको यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अच्छा, इसमें एक तीसरा डॉक्टर साहब, जैसे डेंगू की बात आपने की, आपने मलेरिया की बात की, कई कई बार हम ये चिकनगुनिया की बात सुनते हैं उसमें, तो ये इन दोनों से किस तरह अलग है इसमें? चिकनगुनिया जो
0: चिकनगुनिया और डेंगू,
1: जी
0: मलेरिया डेंगू का आपने वो देख लिया।
1: जी जी।
0: अच्छा, डेंगू और चिकनगुनिया में ये है कि डेंगू को भी हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और चिकनगुनिया को भी ये ऐसा लगता है कि जब चिकनगुनिया का बुखार होता है तो ये ज्यादा तेज बुखार नहीं होता।
1: जी जी।
0: चिकनगुनिया का बुखार तेज नहीं होता, और उसकी भी शुरुआत गांठों के दर्द से और जोड़ों के दर्द से होती है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसमें ये लगता है कि हमको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है। किसी को देखा होगा कि सुबह रात को सही सलामत सोया है, उठा है तो उसका शरीर ही अकड़ गया, डंडे के सहारे से उठाना पड़ रहा है उसको, बाथरूम में लैट्रिन गया तो उसको उठाना पड़ रहा है, बुखार जबकि नहीं है।
1: जी जी।
0: लेकिन उसके ज्वाइंट्स जवाब दे गए, तो ये एक चिकनगुनिया का लक्षण है।
1: यानी जहाँ बुखार से ज्यादा जो दर्द है वो जॉइंट्स में, हड्डियों में, और अगर शरीर में ऐसी अकड़ाहट या लंगड़ाहट हो रही है तो ये जो है ये इसको आप मान सकते हैं कि चिकनगुनिया। तो ये इसका भी इलाज उसी तरह डॉक्टर करते हैं?
0: चिकनगुनिया का इलाज, मैं कोई सीरियस बीमारी नहीं है चिकनगुनिया, पहले मैं बता दूं, डेंगू मलेरिया सीरियस हो सकता है यानी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन चिकनगुनिया बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, अपने आप स्वतः ही ठीक होगा और घर के इलाज से सही हो जाएगा, उसको जाने की भी आवश्यकता नहीं है चिकनगुनिया के।
1: जी जी, उसमें बस एक समय अंतराल लगेगा,
0: बस चिकनगुनिया में समय अंतराल लगता है, और इसका ये जो वो है इसमें यही देखना होता है कि बस बुखार अगर आपको ज्यादा है तो पट्टी रख लीजिए, और एक सिंपल गोली जो मैंने बताया पैरासिटामोल की 500 mg की, बड़ा है तो 500, छोटा है तो 250।
1: चलिए, ये तो आपने तीनों बुखारों का हमें थोड़ा सा लक्षण बताए, थोड़ी सी सावधानियां बताई, थोड़ी कंडीशन बताई, अब हम जानना चाहेंगे कि भाई इससे हमें बचाव कैसे करें, क्योंकि बचाव इलाज से ज्यादा बेहतर है, ये आप लोग भी कहते हैं और हम भी जानते हैं, सुनते आए हैं उसमें। तो अब ये मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि सामान्यतः इसका कारण मच्छर है, क्योंकि जो वेक्टर है वो इधर से उधर जो घूम रहा है वो मच्छरों के माध्यम से, तो मच्छर हमारे आसपास पैदा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसमें?
0: इसकी ये जो तीनों बीमारियां हैं, चाहे वो मलेरिया है, चाहे डेंगू है या चिकनगुनिया है, ये चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो इसके दो ही उपाय हैं। पहला तो ये कि हमें मच्छरों का प्रजनन होने नहीं देना चाहिए, यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो रोक दो, ठीक है। दूसरा, मच्छर काटे नहीं, सिर्फ दो उपाय।
1: जी जी।
0: तो पहला तो ये है कि मच्छर का प्रजनन रोका जाए।
1: जी जी।
0: उसका प्रोडक्शन रोका जाए। अब प्रोडक्शन कैसे रोकेंगे आप? मच्छर कहाँ पनपता है?
1: पानी,
0: ये पानी में पनपता है, और ये ज्यादातर कब होता है? ये जुलाई से नवंबर तक होता है। अब ये जो मच्छर, जैसे अब देखा कि मलेरिया का जो मच्छर है वो चलते हुए पानी में ज्यादातर होता है, बहते हुए पानी में भी हो जाएगा, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया का जो है मच्छर वो रुके हुए पानी पे ज्यादा असर करता है।

0: है, जैसे आपके घरों में कूलर है
1: कूलर है
0: और
1: जी।
0: आपका ये मनी प्लांट है और फेंगशुआ के ये पेड़ हैं और आपका ये कभी घरों की छतों पे टायर पड़े हुए हैं या टूटे ग्लास पड़े हुए हैं या कोई और चीज पड़ी हुई है जिस पर पानी भर सकता है,
1: जी जी
0: उनको अलग से ध्यान से हटाना होता है। ये इनके रोग के लक्षण वो होते हैं।
1: जी
0: तो सबसे पहले तो ये है कि पानी को आप जमने ना दें।
1: जी
0: अगर कोई घर पर गड्ढा है तो उसको भरवा दें, जिसमें पानी भरता है उसको मिट्टी से ढकवा दें, गड्ढा पूरा करवा दें, नाली है उसको साफ करवा दें
1: जी जी
0: और बहता हुआ पानी रहे तो ज्यादा अच्छा है। जो भी टूटे फूटे टायर हैं या वो है उनको हटा दें और पानी की जो टंकियां हैं ऊपर उनको
1: जी
0: ढक के
1: ढक के
0: रखें।
1: रखें जी।
0: घरों में जो है जालियां अगर संभव हो जाए तो दरवाजों पर जाली लगवा दें, ठीक है। और जो रूम कूलर हैं, फूलदान हैं, उनके हर 5-6 दिन पर पानी बदलते रहें।
1: जी
0: और ये जो पानी के जो स्रोत हैं जो अपने घरों में भी जहाँ पे होती हैं उनका, जैसे कभी देखा होगा बाहर पानी रह जाता है, आजकल जो है अपने घरों में बाहर पानी रख देते हैं,
1: जी जी चिड़ियाओं के
0: चिड़िया
1: लिए
0: पी
1: हो गया।
0: जाएगी या
1: जी
0: गाय पी जाएगी,
1: जी जी
0: उसके पानी को भी रोज बदलें और उसको साफ करें।
1: जी जी
0: ये नहीं कि आज पानी उसने आधा पी लिया उसी में भर दें।
1: यानी
0: हाँ
1: सेवा भी अगर
0: हाँ
1: कर रहे हैं तो
0: करनी
1: वहां
0: है
1: भी थोड़ा सा
0: तो
1: सावधानी की
0: सावधानी
1: जरूरत।
0: बरतें। अगर
1: जी
0: कोई ऐसा है कि जो पानी रोज नहीं हटा सकते आप,
1: जी
0: और तो उसमें हम करते हैं ऐसा कि 100 लीटर पानी है तो उसमें 30 ml मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दें तो उसके जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। और जैसे ये आपका जो फ्रिज के नीचे जो आजकल बहुत ज्यादा जो घरों में जो मच्छर पैदा होते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: फ्रिज के नीचे एक ट्रे होती है
1: हाँ
0: उस ट्रे को भी साफ करते रहें।
1: जी, उसमें पानी जो ड्रेन होके
0: हाँ
1: आता रहता है
0: बस
1: वो भी एक कारण हो
0: एक
1: सकता
0: कारण
1: है।
0: हो
1: तो
0: सकता है।
1: यानी
0: तो
1: घर के आसपास जो भी पानी की बॉडी है, पानी के रखने के जो तरीके हैं, उनमें हमें सावधानी रखनी है और अपने
0: साफ सफाई
1: आसपास
0: करनी है,
1: साफ सफाई का
0: सफाई।
1: बहुत महत्व है। इस बात पे हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रशासन है, शासन है, वो भी बहुत जोर दे रहा है कि
0: स्वच्छ
1: भैया
0: भारत स्वच्छ
1: जी
0: मिशन
1: जी जी
0: इसी के ऊपर चल रहा
1: तो
0: है।
1: इस उसमें जो ये जो जोड़ा गया है कि स्वच्छता से स्वास्थ्य को जोड़ना है, साफ सफाई से स्वास्थ्य को जोड़ना है,
0: जी
1: क्या डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी तो बहुत बड़ा विस्तृत दायरा रहा है, इससे फर्क पड़ा है कि जहाँ स्वास्थ्य ठीक है वहाँ सफाई है, या जहाँ साफ सफाई रख रहे वहाँ स्वास्थ्य की जो स्थितियाँ उनमें सुधार हुआ है, जो जहाँ जागरूकता आई है वहाँ थोड़ा सा सुधार हुआ है उसमें।
0: जी ये काफी देखने को मिल रहा है और इस स्वच्छता अभियान का काफी असर भी पड़ा है। लोग काफी मतलब शिक्षित होते जा रहे हैं। कूड़ा करकट अब घर के सामने ऐसे ही सड़कों पर नहीं फेंक देते हैं, डस्टबिन रख रखे हैं उन्होंने। और एक स्वच्छता मिशन में अब जो आज यहाँ पे गांव की तो मैं नहीं कह सकता, नगर निगम ने 2 तरह के कूड़ेदान रख रखे
1: जी
0: हैं,
1: जी हाँ
0: एक
1: दिखते भी है
0: नीला
1: वो
0: और एक
1: जी।
0: हरा। नीला और हरा, नीला जो होता है वो उसके लिए है गीले कचरे के
1: जी
0: लिए
1: जी
0: और
1: जी
0: हरा सूखे कचरे के लिए है। तो इनसे और वो भी बंद होते हैं,
1: बंद जी।
0: पुश किया उसमें चला गया और हटा जाता है। तो
1: जी
0: स्वच्छता मिशन से इतना सफाई है, नालियों की भी सफाई हो रही है। नालियों में ऐसा वो चूना डाला जा रहा है, DDT, या घरों में भी DDT और छिड़कते हैं, पैराफिन का घोल देते हैं। ये स्वच्छता मिशन का काफी असर पड़ा है।
1: जी। अपने स्तर पर भी जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि शासन प्रशासन की जो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच रही, तो ये काम तो हम भी समय अंतराल पे कर सकते हैं कि भाई साहब साफ सफाई की कहीं चूना डलवा दिया, कहीं जो है जो आपके जो पीने के पानी के जो हमारे गांव में जो स्रोत होते हैं जैसे कुआं है, कहीं हैंडपंप है, तो वहां भी पानी में जो कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं डॉक्टर
0: जी
1: साहब, तो वहां भी डालने का जो
0: हाँ,
1: क्लोरीन का वो है वो।
0: उसमें उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट आती है
1: जी
0: जिसको हम लाल दवा बोलते हैं, KMnO4,
1: जी जी
0: उसमें आप अपने घर पे या अपने मोहल्ले में या अपने पंचायत में
1: जी
0: किसी में भी कुएं में लाल दवा डलवा सकते हैं। लाल दवा एक्चुअल में क्या है कि जल स्रोत इतना नीचे पहुंच चुका है
1: जी जी
0: कि अब कुएं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर कुआ है
1: जी और
0: तो उसमें
1: इस्तेमाल हो रहा है।
0: इस्तेमाल हो रहा है तो निश्चित ही उसमें लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट हफ्ते में एक बार डाल देना चाहिए, तो उससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाते
1: अच्छा, साफ सफाई की जैसे पानी से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं डॉक्टर साहब, चलते चलते थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि पानी जैसे गांव में आप कहीं से भी ला रहे हैं जैसे कुएं, तो अब आप बता रहे स्रोत नीचे कम चल रहे हैं, हैंडपंप से लेके आ रहे हैं या कहीं ट्यूबवेल का पानी लेके आ रहे हैं, उसमें समरसेबल से निकल रहा है, तो जो स्वच्छ पानी है उसके लिए अपने स्तर पर जो किए जाने वाले प्रयास हैं उसमें क्या कर सकते हैं? एक तो जैसे पानी छान के ले लिया,
0: जी।
1: या उसमें क्या फिटकरी डाल के भी घुमा के भी उसकी
0: ना
1: गंदगी
0: क्लोरीन क्लोरीन डाल के भी ले
1: को
0: सकते
1: आप
0: हैं।

0: कर सकते हैं। तो साफ सफाई पानी के स्तर पर भी रखनी चाहिए।
1: पानी के स्तर पर तो सबसे अच्छी ये है कि जहां भी आप पानी भर रहे हैं, एक तो वो जैसे गांव में घड़े का पानी बहुत विशुद्ध पानी होता है।
0: जी जी,
1: घड़े का पानी एक बार नल से भर लिया और उसको ढक के रखा और ऊपर से गीला कपड़ा करके रखा तो वो पानी शुद्ध है, और इवन देन वो अपने आप में ही एक छनके ऐसा पानी बनता है कि वो फिल्टर्ड पानी माना जाता है और शुद्ध पानी होता है। दूसरा, जो भी पानी आरओ लग गए हैं शहर में, एक आरओ वाटर है और आरओ के वाटर के पानी भी हम यूज कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: और अगर पानी गंदा आ रहा है तो उसको आप अपने आप ही फिल्टर है उनमें डाल दो और पानी पीने
0: योग्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर के श्रोता बंधुओं, ये बात जो डॉक्टर साहब से हम कर रहे थे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के बारे में, कुछ और डॉक्टर साहब कहना चाहेंगे?
1: जी हाँ, दो तरह के उपाय हैं। एक तो मच्छर, ये तो मैंने आपको बताया कि प्रजनन रोकना चाहिए,
0: जी जी,
1: तो प्रजनन रोकने के हो गए। दूसरा ये है कि अगर सबका मंचा में लेकिन फिर भी आप अपना व्यक्तिगत बचाव कर सकते हैं,
0: जी जी जी,
1: कि मच्छर काटे ही ना, उसके लिए अगर आपके यहाँ कोई भी बुखार का मरीज है उसको 7-8 दिन तक कम से कम मच्छरदानी में रखा है, जिससे कि वो संक्रमित हो गया तो कोई मच्छर आए वो काटे नहीं, दूसरे को पैदा ना करे,
0: स्वस्थ लोगों को ना काट सके।
1: पहला तो यह कि मच्छरदानी में रखिए, दूसरा यह खुद के बचाव करने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने, फुल टी शर्ट फुल पैंट, जिससे कि वो मच्छर काटे नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर दिखाई दे रहा है, गांव में तो नहीं है लेकिन शहरों में तो अक्सर जालियां लग जाती हैं,
0: जी जी जी,
1: जाली से भी बचाव हो जाता है। बहुत सारे के गूगल, जो आयुर्वेद में गूगल होते हैं, गूगल का धूप लगा दीजिएगा तो उससे मच्छर नहीं आएंगे। और अपने शरीर पर कोई क्रीम या ये सिंट्रोन का तेल होता है,
0: जी जी,
1: इसको लगा लिए तो मच्छर नहीं।
0: तो कुल मिलाकर के जो वैसे साधन है उनको भी हम उपयोग में ला सकते हैं, और जो चाहे आधुनिक तरीके हो चाहे पुरातन तरीके हो, जो भी तरीका है साफ सफाई का हो या भोजन को पानी को ढक कर के साफ स्वच्छ रखने के, उनको भी हम अपना सकते हैं। जो हमारे आसपास जो हो रही है उसमें एक तरह से दूसरे लोगों को भी हमें जागरूक करना है कि भाई साफ सफाई और सावधानी जो है सबसे अच्छा जो बेहतर इलाज हो सकता है, जिसको बचाव के नाम पर हम कर सकते हैं।
1: उपचार से अच्छा शिक्षण है।
0: जी जी,
1: तो जितना एजुकेट करेंगे, जितना शिक्षित समाज को करेंगे, उतना हम बीमारियों से बच जाएंगे।
0: तो श्रोता बंधु, आज की बातचीत में हम बातचीत कर रहे थे मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। निश्चित तौर पे आपको अच्छी लगी होगी, और डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी, सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में विषय था डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। इनसे भेंटकर जानकारी प्राप्त कर रहे थे ओपी सिंह।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोता, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है जोश।

उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म जोश में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में गाया मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है असद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अभी आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज में गाया साजन फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

हिट स्टोरी टू फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे के की आवाज़ में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत यंगिस्तान फिल्म से। गीत गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

यंगिस्तान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान की आवाजों में गाया धूम 3 फिल्म का ये गीत।

मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे धूम 3 फिल्म का गीत। और लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है ABCD 2। गीत गाया है प्रिया आचार्या ने और दिव्या कुमार ने।

प्रिया और दिव्या कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ABCD2 फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाड़ी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा

दवन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का ये गीत जिसे गाया है अंकित तिवारी और पलक मुच्छल ने। फिल्म है सनम तेरी कसम।

अंकित तिवारी और पलक मुच्छल की आवाजों में गाए ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी सनम तेरी कसम। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। मोहित चौहान की आवाजों में फिल्म है एक पहली लीला।

एक पहली लीला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत नेहा कक्कड़ की आवाज में। फिल्म है वजह तुम हो।

नेहा कक्कड़ को अभी आपने सुना फिल्म वजह तुम हो में, और लीजिए अब सुनिए मिथुन चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाया सनम रे फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं रश्मि शर्मा।

नमस्कार मित्रों, कुछ लोग चाय के बिना नहीं जागते, कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन शुरू ही नहीं होता जब तक उनका पसंदीदा गीत कानों में न घुल जाए। तो लीजिए आपकी यादों की पोटली, आपकी फरमाइश गीतों की ऐसी लिस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है, ऐसे ही प्यारे से गीतों को लेकर मैं आ गई हूँ, आपकी अपनी आरजे रश्मि।

यहाँ फोन आपका, फरमाइश आपकी और गीत भी आपकी पसंद का, तो मुस्कुराइए क्योंकि अब बजने वाला है वो गीत जिसे सुनकर शायद आप भी गुनगुना उठें।

0: क्या इशारा।
1: और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई गीत दस्तक दे रहा है तो हमें फोन कीजिए, क्योंकि यहाँ फरमाइशें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पूरी भी की जाती हैं। तो चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पहली फरमाइश के साथ। हेलो आकाशवाणी,
2: परम आगे रश्मि दीदी, शादा सा प्रेम, प्यार है, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: दीदी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश।
1: जी स्वागत है कार्यक्रम में, और कैसे हैं आप, और आज क्या कहेंगे और क्या फरमाइश रहेगी?
2: जी दीदी हृदय से धन्यवाद, और कहना यही चाहता हूँ कि सावन का महीना लग चुका है, आपको आकाशवाणी परिवार को सावन और सावन सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और दीदी यही कहना चाहता हूँ कि आज 4 अगस्त का दिन महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार किशोर कुमार साहब, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उनका जन्म जयंती है। और जन्मदिन के अवसर पर मैं किशोर कुमार साहब को सत सत नमन वंदन करता हूँ। और दीदी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गीत है, इसमें किशोर कुमार साहब ने गाया भी है, निर्माता भी है, निर्देशक भी है, गीतकार संगीतकार भी है इस फिल्म के, और फिल्म का नाम है दूर गगन की छाँव में। चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं? परिचय दे दीजिए। कैसी
1: मैं बोल रही हूँ यहाँ के राया से, उषा सारस्वत।
0: हैं उषा जी?
1: ठीक हूँ,
0: अच्छा,
1: आप बताओ।
0: हम भी बढ़िया हैं। और कार्यक्रम सुनती हैं हमारा?
1: हाँ सुनती हूँ,
0: अच्छा लगता है।
1: हाँ अच्छा लगता है, बहुत दिन से सुनती हूँ मैं तो।
0: अच्छा अच्छा
1: घर का काम थोड़ा बहुत है, उसे करती आती हूँ, सुनती जाती
0: अच्छा रेडियो सुनते रहते हो और घर का काम करते रहते हो।
1: हाँ।
0: आज क्या सुनोगे?
1: मैं सुनूंगी मदर इंडिया का, दुनिया
0: कौन सा गीत?
1: में हम आए तो जीना ही पड़ेगा।
0: ठीक है।
1: आज कई दिनों में मिला है मैडम।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो काफी दिन बाद में बात हुई है और

0: मुझसे तो पहली बार बात हुई है ना?
1: मैं पहली बार ही मिला है।
0: अच्छा,
1: फोन ही पहली बार मिला है।
0: अच्छा, आज पहली बार मिला है फोन आपका।
1: हाँ,
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी। और घर परिवार में सब बढ़िया हैं?
1: सब बढ़िया है।
0: चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैं राजा राम तरकर बोल रहा हूँ सर, भाई साहब।
0: कैसे हैं राजा राम जी?
1: जी ठीक हूँ
0: तो आप मूल निवासी हैं यहाँ के या कहीं बाहर से आए हैं?
1: जी, मैं मूल निवासी हूँ भाई गांव का ही।
0: अच्छा जी, तो आपके गांव की आबादी लगभग कितनी होगी?
1: करीब 10,000 के लगभग।
0: अच्छा, तो गांव में सब सुविधाएं हैं?
1: हाँ जी, सब सुविधाएं हैं।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: जी। नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: स्वागत है कार्यक्रम में मांगीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस वर्ष से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आशा और आपकी उम्मीद बिल्कुल सही
1: जी
0: है। और
1: जी
0: इसके साथ ही अब देखिए सावन मास लगा है, आज सावन का पहला सोमवार है जब हम कार्यक्रम रिकॉर्ड
1: जी
0: कर रहे हैं। तो आज
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कहेंगे, क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: बहन जी, पसंद तो मेरी आज, आप पहला सोमवार है तो अब मुझे कोई गाना तो भजन याद आ नहीं रहा, लेकिन आप मेरी पसंद पे आप कोई सा भी शंकर भगवान का भजन लगा देना।
0: ठीक है जी, आपने फोन किया, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: जी, ग्राम नंगला कस्यां पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह सात बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप सुनाइए कैसे हैं सभी मतदान में।
0: बिल्कुल, हम भी बढ़िया हैं और सब बढ़िया, और कार्यक्रम में फोन करते ही रहते हैं
1: जी
0: और फरमाइश भी पूरी होती है।
1: जी बिल्कुल होती है
0: जी
1: और सुनवाई भी अच्छी आती है, आवाज भी

0: रिकॉर्डिंग होती है बढ़िया।
1: अच्छा जी, चलिए आपको कार्यक्रम भी पसंद आ रहा है और आपकी फरमाइश भी पूरी हो रही है। तो आज क्या सुनेंगे कार्यक्रम में?
0: फिल्म है माँ।
1: माँ फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे?

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत गाने सुहाने। नमस्कार श्रोताओं, सावन की फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो केवल मौसम ही नहीं मन भी खिल उठता है। बारिश की रिमझिम बूंदें अपने साथ ताजगी, सुकून और अनगिनत यादें लेकर आती हैं। इसी खूबसूरत मौसम को और भी सुहाना बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं बरसात के सदाबहार और मनमोहक गीतों की एक शानदार प्रस्तुति। तो आइए चाय की चुस्कियों और बारिश की फुहारों के साथ संगीत की इस प्यारी सी यात्रा का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, बारिश का मौसम प्रकृति का सबसे मनमोहक उपहार माना जाता है। बरसात की बूंद अपने साथ नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आती है। अगर आप सफर में हैं तो सुनिश्चित रहिए और इस सुहाने मौसम का आनंद भी लें। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पकौड़े और मधुर गीत, इससे बेहतर संगम भला क्या हो सकता है। अपने मनपसंद गीत सुनते रहिए हमारे साथ और मुस्कुराते रहिए।

श्रोताओं, बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही सावधानी बरतने का भी समय होता है। इस मौसम में जलभराव और फिसलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सोच समझ कर चलें।

श्रोताओं, ये बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही घातक भी हो जाता है कभी कभी अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर दें तो। बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मौसम को और भी अधिक खुशनुमा बना लेंगे।

श्रोताओं, बारिश के दौरान बिजली कड़कने पर खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, सुरक्षित स्थान पर ही रहें। गीले कपड़े और नमी के कारण सर्दी जुकाम, वायरल बुखार और त्वचा संबंधी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहनें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस मौसम का आनंद ले सकेंगे।

बारिश प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, बस थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता के साथ हम इस मौसम का भरपूर आनंद ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं।

इसी के साथ कार्यक्रम गीतों का सिलसिला गाने सुहाने का अब यहीं संपन्न होने का समय हो गया है। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

दीपक बनकर रोशनी फैलाइए, दीपक बनकर रोशनी फैलाइए, मुस्कान से हर दिल को जीत जाइए। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही, अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाइए। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में करती हूँ सभी श्रोताओं का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। श्रोताओं, सबसे पहले मेरा स्वीकार कीजिए हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। लगातार आपके संदेश हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं और हम अब पढ़ देते हैं कार्यक्रम का पहला संदेश। शेरवानी स्कूल गंजनडुबारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुवना और आलिया अंसारी। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार ने। अगले संदेश करता है मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान आशीष, नलेश्वर नगर से हमें लिख रहे हैं संदेश पीएस नापकर, निर्मला और विशाल। आप हैं छत्तीसगढ़ पराली से नितेश कुमार, दुर्गा पराग, पूना रामदेवांगन और कृष्णा। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आरती गोरी ओम। आप हैं ग्राम राजपुर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राजगवई, राजवीर गवई। बुलढाणा से हमें संदेश लिखा है किशोर, उषा वन खेड़े, विशाल लखा ने। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र हमें लिख रहे हैं नेपाल नगर से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू संजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी का। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम का संदेश मिला। दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल। पट्टी बलिया से हमें संदेश लिख रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा और अमित कुमार। कार्यक्रम में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति, संध्या, डीकेस साहू छत्तीसगढ़ से। पंचकुला चंडीकुड़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान का संदेश मिला। सहाद्रा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष, चैतन्य और मेघा। दादरी गेट भिवानी से हमें संदेश लिख रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण और कपिल कुणाल मेहरा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गुरु से, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और उदय मौजुमदार की।

इस गीत के फरमाइश करता थे रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दवीरुल हसन, बेगम शबनम, नजमा बेगम और सरिता गौतम। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी फुटानी चौक नारायण स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है बुलडाड़ा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े अनिता रमेश राव ने। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सैन, सुरेखा, शुभम और अक्षय। झज्जर हरियाणा से संदेश हमें लिख भेजा है बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया ने। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयबीर, डॉक्टर अमनदीप कालका, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कालानौर से नरेंद्र शर्मा, आप हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी ने संदेश लिखा। महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा, हर्षदा वैष्णवी, युवराज गोंधली। सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अलतमश, रमेश गौड़, आदाब सादाब। जामा मस्जिद रोड गौगावा से हाजी इस्फाक लोलामनी, मोहम्मद उमर काश्मी, हाजी अयूब शेरी का संदेश मिला। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का संदेश। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ, साइना और निवान का संदेश मिला। के शरद पाचपोर, शोभा, बेबी बैदेही, विहान, रश्मि अक्षय, अभिनव पाचपोर अकोला से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, बसीम, रूबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता, पूनम। कलेर बिहार से मोहम्मद आशिफ और निकहत परवीन का संदेश मिला। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी, मेनका, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, गोदावरी, प्रतीक कुमार।

राज बहादुर और शंभू साह का संदेश प्राप्त हुआ। नरसिंह राजपुत्र शत्रुधन गौरव जानवी दर्श उत्तर प्रदेश से, जकीर मुलाड़ी सुमैया सुवान समीर पंडरपुर से हमें संदेश लिख रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का ये कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार और साथियों के स्वर हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जकीर मुलाड़ी, सुमैया, सुबान, समीर पंडरपुर से हमें संदेश लिख रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का ये कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार और साथियों के स्वर हैं। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत को सुनना चाहा था गणेशपुर गंजडुंडवारा से। एम फारूक शेख शेख शमा परवीन शाइमा सराज फराख गुलफराज और बेबी मुस्कान ने इसी गीत की हमसे फरमाइश लिख भेजी थी। झारखंड से सुकरा नायक मंजू जलेश्वर नायक गौरव और कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है ताजपुर मरेवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण जयश्री। अगले संदेश करता है मामूलबाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे पीएस नाहपकर जिगांव बिधर्व बसंतराज भोजने मोहन करांगले आप हैं। बनस्थीपुरम हैदराबाद से रेणुका बद्री हरिणी लोकेश शाही कृपा कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल गणेश लाल शुभम अर्णव दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति। मंजनू कटिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर सतना एमपी से हमें संदेश लिख रहे हैं उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी सावनकर कोयस्ते वस्ती पुनावले से अजय सोनवने करिश्मा अविका साइसा डी अशोक कुमार अविका सानू कुमार और अर्चना। आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी और तमन्ना। कशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रामभाड़े भारती जानवी वैष्णवी हर्षेल और नागपुर से हमें संदेश लिख रहे हैं टोनी बोरकर ललिता बोरकर। राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी का संदेश मिला। आप हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी बेबी बॉय हिमाक्ष। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण दयानंद ओमकार साई गायकवाड़। अगले संदेश करता है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम आशीष टीकमगढ़ एमपी से लक्ष्मण लोखंडे कल्पना ताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षिता रियांश और पूरा लोखंडे परिवार हमें लिख रहा है गड़गे नगर यमतपाल महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिखा है कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ ने। कार्यक्रम में अगला संदेश मीरा सिंह ज्योति रोहतास सोनम अनामिका सिंह समस्तीपुर बिहार से पंजाब से गुरदर्शन से लाल लचोत्रा सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहत पोत्रा गुरशवद। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म धर्मात्मा से आवाज है किशोर कुमार की शब्द रचना इंदिवर की है और इस गीत को धुन से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शाह नवाज, सरफराज फरीन, अजान सुहान, पूरा अब्बासी परिवार। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ शौर्य हमें लिख रहे हैं बघेरा दुर्ग से। अगले संदेश करता है मधुबनी एक्सटेंशन कुशेश्वर से कांति गुप्ता, रुद्र भाई, फूलन देवी, विजय रागनी देवी, चुलबुल रंगीली। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता, पप्पू महक, सुनीता, आरजू हसमुख, बुलबुल, संजीव बंटी और पूरा खुशदिल परिवार। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू भाविका सिक्का। बंडीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश मिला। आदिनाथ बाग, अमोल गुड़िया, अशोक देशमुख, बोराला खुर्द महाराष्ट्र से। आप हैं डेड बटन गुजरात से धीरज वीरवारी, रमेश चंद चौहान, जय नारायण हागे, तरुण प्रतीक बिलाड़ा राजस्थान से। अगले संदेश करता है तेलंगाना चोटुपल से कस्तूरी रामडू, बूमा देवी, पृथ्वी नारायणा। कार्यक्रम में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं अंसारी कॉलोनी दिल्ली से आसमा खातून और फातमा खातून। गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, दवानिस दानिश, अमन आफरीदी, राधा नामदेव। कोल सिटी बरकाकाना से हमें संदेश मिला है अफजाल ताज, शाहिन, सोनू, निप्पी का। छत्तीसगढ़ से रमेश अंतरा, प्रभा मिश्री का संदेश मिला। तालाब डुमराव से बली उल्ला अंसारी, असमानाज, गुड़िया बानो।

कबीरनगर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी दानिश गुनोरी का संदेश प्राप्त हुआ। सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजाना नियले नवदीप विश्वदीप सुशील शेरी बडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर आदित्य दामोदर प्रकाश जैन नादेड़ से जगदीश धाकड़ नायमा रंजू बाई युवराज सिंह शिवांगी एमपी से। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी किशोर कुमार की आवाज है, धर्मात्मा फिल्म का नाम है, शब्द रचना इंदिवर की है और इस गीत को धुन से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत हम आ रहे हैं, आशा भोसले की आवाज है, शब्द रचना अनजान की है और धुन को संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश का संदेश मिला। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा।

भोड़ा काशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत अगले संदेश करता है। बबीता बोट निखिल, तन्वी बोट अंकित कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 से के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:30 से संध्या 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:15 से संध्या 6:30 तक। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। प्रस्तुत है ब्रज लोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं रोहिताश।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर. आज के कलाकार हैं रोहताश, और अब आपको सुनवा देते हैं रोहतास के ही स्वर में कार्यक्रम का अगला ब्रजलोक गीत.

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज का ब्रजलोक गीत के कलाकार हैं रोहतास, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के स्वर में गाए हुए एक और मल्हार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज की कलाकार हैं रोहतास, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला मल्हार रोहतास के ही स्वर में।

इसी ब्रजलोकगीत के साथ ब्रजलोकगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज की कलाकार थी रौथास। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराहन 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा सिजेरियन यानी ऑपरेशन के बाद स्तनपान कैसे शुरू करें। इसके अलावा चर्चा होगी स्वस्थ परिवार निर्माण के में महिलाओं की भूमिका विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आईना क्रम में वार्ता, वाटरप्रूफ मेकअप से बढ़ाएं खूबसूरती, वार्ताकार होंगी सीता अग्रवाल। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी अंतिम गौतम। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा अपराह्न 1:45 पर और NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा फिरोज शाह मेहता जयंती पर। इसके अलावा आज की बात होगी मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण पर। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा जिसका शीर्षक होगा लड़की की चतुराई। कथाकार होंगे अशोक कुमार। समय रहेगा संध्या 6:15 पर। कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:30 पर। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:50 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुना जा सकेगा संध्या 7:31 पर। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8:00 जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा सुनी जा सकेगी रात्रि 8:20 पर जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम न्यूज एट 9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00 चित्रपट संगीत सुहाने तराने का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम मनी टॉक का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम मंथन सुना जा सकेगा रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10:00। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण सुना जा सकेगा रात्रि 10:30 पर।

0: रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा वादन। राग होगा गावती, पखावज पर संकत रहेगी मोहन श्याम शर्मा की। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और व्यस्त होंगी आपके रोज के जो कार्य होते हैं उनमें। बहनों एक बात हम कहें और ये सच भी है, किसी ने क्या खूब कहा है कि मम्मी पापा हमारे वो मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ हमें हर मर्ज की दवा मुफ्त में मिल जाती है। अर्थात हमारे बिना कुछ कहे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, हर उम्र में हर मोड़ पर हमें अपने माता पिता और उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। यदि माँ हमारी एक दो दिन के लिए भी कहीं चली जाएं, तो बच्चों की पूरी दिनचर्या ही प्रभावित हो जाती है। अर्थात घर में एक महिला के कहीं जाने आने से सब कुछ प्रभावित हो जाता है। महिला जाने अनजाने में अनेकों दायित्वों का वहन खुशी खुशी अपने परिवार के लिए करती है। एक अच्छी भोजन विशेषज्ञ है तो एक सेविका है, कहीं शिक्षिका है तो कहीं चिकित्सक है, तो कहीं समय प्रबंधक बनकर सभी कार्यों को संभालती है, तो कहीं वित्त प्रबंधक बनकर। मनु ये सभी जो गुण होते हैं वह महिला के अंदर जन्मजात होते हैं और ये एक ईश्वर की देन होती है। आज महिलाएं सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं हैं, परिवार के लिए आर्थिक सहयोग की भावना से नौकरी अथवा व्यवसाय के हर क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि घर परिवार में महिलाएं अपनी अत्यंत भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका और बहुआयामी भूमिका निभा रही हैं, जिसमें कि वे देखभाल करने वाली, घरेलू प्रबंधनकर्ता और भावनात्मक संबल के रूप में मुख्य रूप से स्तंभ की तरह कार्य करती है। देखभाल और पालन पोषण की बात करें तो बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के अन्य सदस्यों की सेहत, खान पान और दैनिक जरूरतों का विशेष ख्याल भी रखती है। मैंने घरेलू प्रबंधन की बात करें तो महिला घर की साफ सफाई, बजट प्रबंधन, रोजमर्रा के सारे कार्यों को सुचारू रूप से एक महिला ही देखती है। साथ ही भावनात्मक समर्थन के लिए जब कभी घर में कोई परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो भावनात्मक रूप से वही घर की महिला सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों को संकट के समय सांत्वना, प्यार व नैतिक मार्गदर्शन देती है। स्वास्थ्य और पोषण के मामले में देखें तो बहनों स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित आहार की व्यवस्था करके, परिवार के सदस्यों के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रख के पौष्टिक व स्वच्छ भोजन उनको देकर उनकी देखरेख करती है। घर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखकर बीमारियों से भी बचाव करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ परिवार के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक बात और यदि हम देखें तो सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को अच्छे आचरण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का जो ज्ञान होता है वह एक माँ ही देती है, जो कि वह भी एक महिला ही है। माँ से

दादी से, अपने बहनों से, मौसी से, बुआ से, यह सब जो अनुशासन है, आचरण है, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से ही सब कुछ सीखते हैं, और वह भी महिला रूप में ही होती हैं, क्योंकि पुरुष अधिकतर कमाने के लिए जाते हैं और महिलाएं घर में रहती हैं, तो अक्सर अधिकतर चीज़ें बच्चे महिलाओं से, अपने जितनी भी नज़दीक माँ बहन बुआ, उन सभी से बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। और यही जो अपनों का प्यार होता है, वह आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनने में हमारी मदद करता है।

0: और जब सभी अपने मिल जाते हैं, अक्सर कब मिलते हैं, जब हम कोई हमारे घर में कार्यक्रम होता है, तब हम सभी अपनों को मिलाते हैं और उनके साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। और बहनों, जब कोई कार्यक्रम हो तो निश्चित है कि हम सभी बहनों का सौंदर्य पे ध्यान देना तो जरूरी है, और उस सौंदर्य के लिए हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा हम मेकअप करें, जिससे सबसे ज़्यादा आकर्षक हम ही लगें। तो बहनों, मेकअप के लिए ज़रूरी रहता है कि कुछ जानकारी भी हमें हो कि हमें किस तरीके का मेकअप कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहनों इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में यदि किसी कार्यक्रम में हमें जाना है तो ऐसे में ज़रूरत रहती है कि हम वाटरप्रूफ मेकअप करवाएं। तो ये मेकअप कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसकी अधिक जानकारी के लिए आईना क्रम के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वार्ता। वाटरप्रूफ मेकअप से बढ़ाएं खूबसूरती, वार्ताकार हैं सीता अग्रवाल।
1: वाटरप्रूफ का अर्थ है बहनों अधिक समय तक मेकअप का चेहरे पर टिके रहना तथा ताजगी बनाए रखना। वाटरप्रूफ मेकअप से चेहरा काला नहीं पड़ता है और ना ही गर्मियों में पसीने के द्वारा फैल सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले त्वचा की देखभाल करनी चाहिए। मेकअप से पूर्व की तैयारियां, मेकअप की त्वचा से देखभाल। जिसका मेकअप ज़्यादा समय तक फैलने की शिकायत हो तब उनको मेकअप करने से पहले क्लींजिंग मिल्क या एस्ट्रिजेंट लोशन या आइसिंग आदि ही का प्रयोग करना चाहिए। मेकअप के बाद उसे अच्छी तरह से क्लींजिंग मिल्क द्वारा उतार कर सोएं अथवा मेकअप के कणों से त्वचा के छिंद बंद हो जाएंगे और त्वचा पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। मेकअप करने से लगभग 4-5 दिन पहले मैनिक्योर व पेडिक्योर, तेलीय फेशियल व वैक्स आदि की जितनी भी सुविधा होती हैं उनका पूरा कर लेना चाहिए। जैसे बालों की साज सज्जा संबंधित कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। तो सबसे पहले बालों में कंडीशनर युक्त शैम्पू करना चाहिए और उसी प्रकार से मेकअप करने के लिए मेकअप से पहले 4-5 घंटे शरीर के सभी अंगों को आरामदायक स्थिति में छोड़ देना चाहिए। मेकअप के साथ साथ यदि चेहरे की सुंदरता में प्राकृतिक सौंदर्य से अंश मिला दिए जाएं तो मेकअप में 4 चांद लग जाते हैं। यदि मेकअप से पूर्व त्वचा रूखी हो तो हल्के ठंडे पानी से मुंह को धो लेना चाहिए। सामान्य त्वचा है तो कम ठंडे पानी में मुंह धोना चाहिए और थपथपाकर सुखा लेना चाहिए। यदि गर्मी का मौसम है तो तौलिए त्वचा को बहुत हल्के गुनगुने पानी से धो लेना चाहिए। वर्षा के मौसम में किसी भी प्रकार की त्वचा है तो साधारण पानी से मुंह धोना चाहिए। इसके बाद एस्ट्रिजेंट लोशन से चेहरे को साफ करेंगे, फिर क्लींजिंग मिल्क से साफ करने के बाद फाउंडेशन और आईब्रो पेंसिल, आई शेडो, आई लाइनर, लिपस्टिक, फेस पाउडर और हेयर स्टाइल बनाकर मेकअप करते हैं। क्लींजिंग मिल्क, गर्मियों में क्लींजिंग मिल्क हर्बल का होना चाहिए। यदि ठंडा मौसम है तो क्लींजिंग मिल्क ही लेना चाहिए और क्लींजिंग मिल्क की अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फाउंडेशन 3 शेडों में आता है, पिंक, लाइट रेडिश, नेचुरल। नेचुरल की भी 3 शेड पाई जाती हैं, स्किन कलर पिंक, लेकिन तीनों में से स्किन कलर शेड का ही लेना चाहिए। आईब्रो पेंसिल, यह 2 प्रकार की होती हैं, लाइट ब्लैक और डार्क ब्लैक, लेकिन लाइट ब्लैक का ही प्रयोग करना चाहिए। आई काजल, ज़्यादातर आँखों के लिए अच्छी क्वालिटी का काजल ही लेना चाहिए क्योंकि इससे आँखों का खराब होने का भय रहता है। काजल में गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। आई शेडो, यह भी 2 प्रकार की होती हैं, क्रीम

और पाउडर, लेकिन इसमें क्रीम ब्लू हेवन का होना चाहिए। इसमें कलर मेहरून, स्काई ब्लू और सिल्वर कलर होते हैं। मस्कारा यह दो प्रकार का होता है, लिक्विड शेल और पाउडर केक। आन से ब्लू हेवन का है तो बहुत ही अच्छा है और साथ में सुविधाजनक भी होता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी से त्वचा खराब नहीं होती। आईलाइनर यह ब्लू हेवन की या लिक्विड काम में मिल ली जा सकती है, और इसमें जितनी आप खराब क्वालिटी रहेंगी इसमें आँखों का जाना बेहतर हो जाता है। इसलिए बहनों आप जितना अच्छी हो सके घर में ही का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पेंसिल के द्वारा भी लगाया जा सकता है। रूज यह तीन रंगों के होते हैं, पिंक रेड मेहरून। यह भी दो तरह का होता है, क्रीम और पाउडर। रूज क्रीम वाला ही लेना चाहिए, यह ज़्यादा देर तक रहता है, और इसके ऊपर पाउडर भी आप लगा सकते हैं। लिपस्टिक जो भी लेनी हो वह स्ट्रिक टाइट या फैलने वाली ना हो। लिपस्टिक शाइनिंग वाली हो और फैलने से चेहरा खराब और लाल हो जाता है, लेकिन एक नेचुरल और एक मेहरून शेड की आप हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। लेकम्पेट पाउडर यह फेस पाउडर की तरह होता है, यह केक वाला ही लें। यह फाउंडेशन शेड जैसा होता है, लेकिन जो भी पाउडर लेते हैं उसे फाउंडेशन शेड में ही लेना चाहिए। ये कई कंपनियों का ही आता है, लेकिन इसकी कंपनी ज़्यादा बेहतर जो कम से कम 30 साल पुरानी होनी चाहिए। नेल पॉलिश दुल्हन के लिए नेल पॉलिश मेहरून शेड का ही लेना चाहिए। ये तीन स्टेप में एक नेल पर लगाई जाती है। मेकअप का प्रकार स्टेज मेकअप, लाइट मेकअप, टीवी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, पांच मिनट का मेकअप और पिकनिक मेकअप। मेकअप की सामग्री एस्ट्रीजेंट लोशन, बर्फ रूज, टिप पेपर, नेल पॉलिश, नेल रिमूवर, क्लिजनिक मिल्क, रुई, तौलिया, हेयर बैंड, लिपस्टिक, फाउंडेशन, ग्लिटर या पेन स्टिक, लिक्विड, बिंदियाँ, कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक, लिप लाइनर, मैनिक्योर स्टिक, मॉइस्चराइजर। ये अनेक प्रकार की इसमें सामग्रियाँ आती हैं। विधि यदि गर्मी है तो तैलीय त्वचा के लिए एस्ट्रीजेंट लोशन का प्रयोग करना चाहिए। यदि सूखी है तो बर्फ की मसाज करनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें मेकअप को फैलने से रोकती हैं। क्लीजनिंग मिल के बाद मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए, इससे चेहरे की धूल हटती है और चेहरे पर नई चमक आती है। इसके बाद स्किन टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, इससे त्वचा के रोम छिंद बंद हो जाते हैं जो कि मेकअप को अंदर जाने से रोकते हैं और साइड इफेक्ट्स या रिएक्शन का डर नहीं रहता है। स्किन कलर को देखते हुए फाउंडेशन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फाउंडेशन लगाने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आँखों के नीचे काले धब्बे तो नहीं हैं या चेहरे पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है। यदि है तो आपको आईक्योर स्टिक का प्रयोग करना चाहिए। यदि थोड़ी फैली हुई हो तो हम फाउंडेशन की एक सीधी लकीर खींच देनी चाहिए और अंदर की ओर फैला देना चाहिए। लाइट मेकअप फाउंडेशन एक बार लिपस्टिक, रूज, स्काई ब्लू, इन सब को फेस पर एक कोड में लगाना चाहिए। फिर फेस पैक पर एक एक डार्ट रूज के ब्रश लगाने चाहिए, लिपस्टिक लगानी चाहिए। फाउंडेशन और लिपस्टिक नेचुरल कलर की होनी चाहिए और रूज रेड कलर का प्रयोग करना चाहिए। टीवी मेकअप यह मेकअप लाइट मेकअप की तरह से होता है।

0: है, लेकिन इसमें हर चीज़ का कम से कम दो तीन परत में लगाते हैं। इसमें आई शेडो, डबल कोड में डार्क लिपस्टिक और कंपैक्ट पाउडर अच्छी तरह लगाना चाहिए। इसमें गहरा मेकअप करते हैं।
1: आईना क्रम के अंतर्गत अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता। वाटर प्रूफ मेकअप से बढ़ाएं खूबसूरती, वार्ताकार थी सीता अग्रवाल। तो बहनों, देखा आपने और सुना कि किस तरीके से हम वाटर प्रूफ मेकअप करके किसी भी समारोह, किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। और फिर यदि हमारे मिलने जुलने वाले, हमारी सखी सहेली कुछ ऐसा ही कहेंगी,

जी हाँ बहनों, अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाएं हम पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, और निसंदेह महिलाएं पूरे परिवार की धुरी हैं। सभी का ख्याल बखूबी रखती हैं, लेकिन सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। खास करके वो महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं, अर्थात गर्भवती हैं, इन सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और खान पान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। और जब वे अपने खान पान का ख्याल नहीं रखती हैं, अपनी देखभाल नहीं करती हैं, तो कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि डॉक्टर डिलीवरी के लिए कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, अर्थात डिलीवरी जो होगी वो सिजेरियन होगी। और जब डिलीवरी हो जाती है तो उस समय खास बात याद रखने की ये है कि डिलीवरी सिजेरियन है तो बच्चे को माँ का दूध कैसे और कब दिया जाए। तो बहनों, कई बार ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए एकदम से, क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जैसे ही सिजेरियन के बाद माँ को होश आता है, होश आने के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को पास में लाएं और उसको माँ का दूध अवश्य पिलाएं और जरूर पिलाएं। मैनू इसके बाद शुरुआती दिनों में टांके के दर्द होने की वजह से थोड़ी परेशानी तो हो सकती है, लेकिन सही तरीके से इसे आसान भी बनाया जा सकता है। घर वालों की मदद से बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाने की कोशिश करें। इससे शरीर में दूध बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वे तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। मैंने कई बार सिजेरियन के बाद जब दूध आने में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लग जाता है, या ये कहें कि हम 48 से 72 घंटे तक का समय लग सकता है, तो बहनों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देर लगेगी लेकिन दूध जरूर आ जाता है। और बार बार स्तनपान कराने से या हाथ से दूध निकालने से दूध उतरने लगता है। तो बहनों हम यही कहेंगे कि बच्चे को नियमित तौर पर स्तनपान अवश्य कराएं, क्योंकि ये जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और लाभदायक होता है। तो वनु इन सभी जानकारियों के साथ ही घड़ी की सुई भी हमें संकेत कर रही है कि हम आपसी अनुमति लें। तो बनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की अंतिम गौतम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी अंतिम गौतम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और इस गीत को धुन से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

चंद्रबख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अजनबी से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है।

0: दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता

0: उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी

0: तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज डलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज डलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल।

0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now. Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
3: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो एआई या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी इतने ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
2: जी
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
2: जी

0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
0: जी।
1: हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
0: जी।
1: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति
1: जी।
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
0: जी।
1: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
0: जी।
1: एआई हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
1: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
1: जी।
0: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक

0: एक रोचक लेख है, पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
2: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे। आजा आजा आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
3: सर मैं इशिता।
4: मैं हूँ चेताली।
5: मैं शुभेंदु।
6: और मेरा नाम है इंदु।
7: और मैं सोमेश।
2: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
3: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
2: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
5: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
7: सर फिर क्या होता है?
2: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदे पड़ती है और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
7: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
2: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
0: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
3: वाह, कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
8: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
8: उल्टा?
2: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
7: फिर क्या हुआ?
2: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूम कर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
7: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
3: अच्छा अब समझ आया।
2: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
8: जी सर।
4: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं।
3: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है, यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
7: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
5: देखो इतना बड़ा पेड़।
7: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
8: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
4: और ये मशीन क्या है?
3: चलो चलो सर से पूछते हैं।
2: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
7: माइक्रोस्कोप।
2: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
3: जी सर।
2: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि

0: इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
1: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
2: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ आओ,
2: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया,
2: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
4: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
4: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्रु तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
4: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
3: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
1: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ
1: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा मनुष्य ही नहीं पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
2: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत?
4: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना,
4: क्या?

0: हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
1: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
2: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
2: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
2: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
2: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
3: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
4: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिरोजशाह मेहता की जन्मतिथि है। फिरोजशाह नाम से कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जिनमें से मुख्य हैं सर फिरोजशाह मेहता। इनका जन्म 4 अगस्त को हुआ था। इनका जन्म 4 अगस्त को मुंबई, जो कि पहले बम्बई हुआ करता था, वहाँ हुआ था। इन्हें बॉम्बे का शेर, लॉयन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और महान प्रख्यात वकील थे।

0: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे ड्रीम्स टेक ऑफ
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: और साथियों, कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के फनकार के सफर के विषय में। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू के गाए कुछ फिल्मी गीत। कुमार सानू, जिनका मूल नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है, भारत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय पार्श्व गायक हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 1990 के दशक का मेलोडी किंग के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी जादुई आवाज से हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान बनाई है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक अच्छे संगीतकार और गायक थे, जिन्होंने सानू को संगीत की शुरुआती शिक्षा दी। वे गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने 1990 में आई फिल्म आशिकी के गानों के साथ रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उन्होंने लगातार 5 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता 1990 से 1994 तक। उनके नाम एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। भारत सरकार ने उन्हें देश के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है।

और श्रोताओं, उसी गीत के साथ ही आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी

और एलएनजी की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:15 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा लड़की की चतुराई। कथाकार होंगे अशोक कुमार। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:15 पर।

एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी कालिया। रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा वादन। आज आप सुनेंगे इनका बजाया राग गावती। पखावज पर संगत करेंगे इनके साथ मोहन श्याम शर्मा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग दरबारी में ख्याल गायन। कलाकार होंगे गोस्वामी गोकुलोत्सव। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनभा में ब्रज लोक कथा लड़की की चतुराई, कथाकार हैं अशोक कुमार।
1: एक गरीब आदमी है तो एक दिन वो राजा के पास गयो और बोलो, महाराज मैं आपसे कर्ज मांगने के ताई आया हूँ। कृपा करके आप मुझे 5,000 रुपया कर्ज में दे दो। मैं 5 वर्ष के भीतर आपके पैसन को वापस कर दूंगा। राजा ने बाकी बात को विश्वास करके वह 5,000 रुपया दे दिए। 5 वर्ष बीतने के बाद जब वो व्यक्ति राजा के पास वाके पैसन को लौटाए के ताई ना आयो, तब राजा को मजबूर है के बाकी घर जानो पड़ो। लेकिन वो व्यक्ति माँ ना मिलो, वह राजा भी माँ जातो तो वो बाकी घर के बहानों बनाए के नहीं राजा को वापस भेज दियो करते। एक दिन फिर राजा वह व्यक्ति के घर गयो और वहाँ और कोई तो ना देखो, एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखी। राजा ने भाई से पूछो कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा। लड़की बोली, पिताजी तो स्वर्ग को पानी रोक भी गए हैं। राजा ने फिर पूछो कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ो कर भी गए हैं। राजा के समझ में एक बात बाकी ना आ रही थी, जा लिए वो फिरते बोलो कि तुम्हारी मैया कहाँ है, तो लड़की बोली, मैया एक ते दो कर भी गई है। राजा बाकी उलझल उल जवाब बनते गुस्सा है गयो। वो गुस्सा में पूछते हो कि तू यहाँ बैठी भई कहाँ कर रही है। लड़की ने हंस के कही कि मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गयो कि लड़की बाकी बातन को सीधो सीधो जवाब ना देगी। जा लिए बाने इन सब बातन को मतलब जानने के ताई लड़की ते प्यार ते बोलो कि बेटा जो जवाब दिए तुमने मुए, इन जवाबन को मेरी समझ में कछु ना आयो, तो आप मुए इनको सही सही मतलब मुए बता दो। तो लड़की बोली कि मैं आपको इन सब को मतलब समझा दूंगी तो आप मुए का दोगी। राजा के मन में सारी बातन की जानबे की तीव्र उत्कंठा हती। मैं बोलो कि जो मांगोगी वो ही दूंगो। तब लड़की बोली कि आप मेरे पिताजी को सवरो कर्ज माफ कर दोगे, मैं आपको सारी बातन को अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को सारो कर्ज माफ कर दूंगो, अब तो सारी बातन को अर्थ बता दो। लड़की बोली, महाराज आज मैं आपकी सारी बातन को अर्थ ना समझा सकूं हूं, कृपया करके आप कल आओ, कल मैं आपको जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर वह व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे, वो आदमी, बाकी पत्नी, बेटा और वो बेटी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछी कि महाराज आपको अपना वचन याद है ना। राजा बोलो, हाँ मुझे याद है, तुम अगर सारी बातन को अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे

0: अरे पिताजी को पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा हो तो कि पिताजी स्वर्ग को पानी रोक गए हैं। जाको मतलब यह है तो कि वर्षा है रही हती और हमारे पिताजी घर की छत को पानी टपक रहे हो तो भाई रोक वे के ताई छत पे छान बनाए रहे होते, यानी कि वर्षा को पानी आसमान से गिरे है और हम लोग तो भाई है स्वर्ग माने हैं। बस पहली बात को अर्थ यही हो। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा कर भी गए हो, जाको मतलब कि रेंगनी के कांटे इनको काट भी गए हो। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे इनको काटेगो तो शरीर में जहाँ तहाँ कांटो गढ़ जावेगो और यानी कि झगड़ा ना करवे के बाद भी झगड़ो होएगो और शरीर पर खरोंच आए जाएंगी। राजा बाकी बातन ते सहमत है गयो। वह मन ही मन बाकी चतुराई की प्रशंसा करवे लगो। माने उत्सुकता के साथ पूछो कि तीसरी चौथी बातन को मतलब और बताओ बेटी। लड़की बोली कि महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक ते दो कर भी गई है, जाको मतलब कि मैया अरहर की दाल को पीस भी गई और वो एक के दो कर भी गई। अगर साबुत दाल को पीस हो जाए तो दानो दो भागन में विभाजित है जाबे है, यानी जई हतो के एक को दो करवो। रही चौथी बात तो बा समय पे मैं भात बना रही थी और वहाँ में मैं एक चावल निकाल के देख रही थी कि भात पूरी तरह पको है कि ना है। जाको मतलब कि मैं एक चावल देख के ही जान जाती कि पूरा चावल पके हैं कि ना है, अर्थात चावल के संसार में घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप रह गई। राजा सारी बातन को अर्थ जान चुको हो तो माने लड़की की बुद्धिमानी भरी बातन ते आश्चर्य में डाल दियो। फिर राजा ने कहो कि बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, एक बात समझ में ना आई कि यह सारी बातें तुम मुझे कल क्यों ना बताई, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंस के बोली, मैं तो बता चुकी हती कि कल जब आप आए हते तो मैं भात बनाए रहती। अगर मैं आपको अपनी बातन को मतलब समझाती तो भात गीलो है जातो, चावल या तो जल जातो या ज़्यादा पक जातो, तो माँ मुँह जरूर पीटती। फिर कल कोई बात अगर अपने घर बारे को बताती कि राजा ने कर्ज माफ कर दियो है तो वे मेरी बात को विश्वास ना करते। आज स्वयं आपके मुँह से सुन के जहाँ इन्हें जाको विश्वास है जागो वहीं वो खुशी होगी। राजा लड़की की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न भयो। माने अपने गले से मोतीन की माला निकाल के बैदैते भाई कही कहो कि बेटी यह तो अपनी चतुराई को पुरस्कार, तुम्हारे पिताजी को कर्ज तो मैं पहले ही माफ कर चुका हूँ। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वाले को मोते कोई बहानों बनाने की जरूरत ना है। अब तुम लोग निश्चित है के रहो, अगर फिर भी कभी काउ चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक है के मोते कहियो। इतनों कह के राजा लड़की को आशीर्वाद दे के लड़की के परिवार वाले इनको घर वाले इनको खुशी से गले लगा के चलो गयो।
1: अब भाई आपने जब ब्रजलोक कथा सुनी लड़की की चतुराई, कथाकार है अशोक कुमार।
2: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: और श्रोताओ, ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अब आपको सुनभा में एक लोकगीत स्वर कीर्ति शर्मा और बिनकी सखियन को है।

कीर्ति शर्मा और बिनकी सेखन के गाए यह लोकगीत के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।

हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह कार्यक्रम

अब हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समय का ध्यान रखिएगा। संध्या 6:50।

FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये थे जसपाल सिंह, हेमलता और साथी। फिल्म थी अखियों के झरोकों से। और आइए अब सुनते हैं अनुप जलोटा, हेमलता, शब्बीर कुमार और साथियों को। फिल्म है चिंतामणि सूरदास।

चिंतामणि सूरदास फिल्म की इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: ओम भैया।
0: हाँ
1: देखो सावन के महीना चल रहा है, हैं? और चारों वारी बरखा हो रही है, और ये बरखा के मौसम में आपन फसल जब हम देखा था ना, हरियर भरियर, तो एकदम मन झूम उठा था।
0: बिल्कुल काहे ने झूमे सरला बहनी, देखो इतनी मेहनत की जात है, और जब अपन मेहनत रंग लावत है तो वो बड़ा निक लागत है।
1: बहुत निक लागत भैया। और बरखा का मौसम चल रहा है, वह के साथ हम सबका यू बात का ध्यान रखना चाहिए, अपन खेती के साथ ही अपन हरहा गोरू।
0: हाँ अपने हरहा गोरुन का जरूर ध्यान रखे है। कहे तरह जब देखो बरखा का मौसम होते है तो बहुत तरह की जो संक्रामक बीमारी है वे अपने हरहा गोरुन का घेर लेते हैं।
1: और अपन हरहा गोरू भैया, जो संक्रामक बीमारी चपेट में आ जाते हैं ना, यही के लिए हम सबका समय पे टीकाकरण करवा ले।
0: काहे तरह जब पहले तरह हम पंचे टीकाकरण कराए लेबे तो जो इस समय बहुत तरह की बीमारी आती, खुरपका मुंहपका और यहाँ तक कहते हैं कि जो बांझपन है वह नहीं होते।
1: ओम भैया, कहा मतलब कि टीकाकरण से पशु के शरीर में जो रोग से लड़े क्षमता होता ना, वो विकसित हो जाए।
0: तो अपन जो नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय है हुमा जाए के अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए सकत हो।
1: और ओम भैया, टीकाकरण के बात करो ना, तो टीकाकरण जो है सरकार द्वारा एकदम निशुल्क लगावा जाए।
0: हाँ तो ये चीजन का बड़ी आसानी थे अपनाए कहिया भैया अपने हरहा गोरुन के यहाँ, अपनी खेती कहिया और अपने आप यहाँ जो उन जेब पर खर्चा पड़े वाला है वही तो सुरक्षित भैया कर सकत हो।
1: तो इन चीज का हम सबका ध्यान रखे चाहिए कि अपन पशु का टीकाकरण जरूर करवा ले, गंभीर रोग से बचावे का है। और अगर गंभीर रोग से बची है भैया अपन हरा गुरु अपने साथ रही है, तो अपन खेती बहुत बेहतर तरीके से हो सके।
0: हाँ और सरला बहनी देखो जब हम पंचन का आज की खबर पता चल जाते तो कितना नीक हो जाते।
1: कायन भैया, अगर पहले से खबर पता चल जाता ना, तो वही के अनुसार हम सब चला था।
0: तो सरला बहनी आज की खबर जाना जाए।
1: बिल्कुल जाना जाए भैया।
2: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रीकरण को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 3,300 से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन मांगे गए थे। जिन जिलों में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं वहां किसानों का चयन ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा और अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक मशीनों का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को कृषि ड्रोन, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल और अन्य आधुनिक उपकरण

0: उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मशीनों के उपयोग से खेती में समय की बचत होती है, श्रम लागत कम होती है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।
1: सरला बहनी,
2: हाँ भैया,
1: देखो ये ब्यारा तना तना की हरी हरी सब्जी जैसे देखो बाजार में यहाँ भैया दिखा रहे हैं, अपने ख्यातों बाद में बहुत हैं।
2: कायन भैया, देखो हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के फल जब अपने खेत में दिखात है। और तमाम तरह की सब्जी है, इस समय लौकी है, कद्दू है, तुरई है, और जब हरी सब्जी अपने थाली में आवत है ना, तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन सरला बहनी है का देखो ये ब्यारा जोन अपन ख्यात में सब्जी है वह देखें तो बड़ी नीक लागत है, खाए बड़ी नीक लागत है, लेकिन जोन हम पंचे वही का तैयार करी थन तो वही में बहुत तना के जो है कीट पतंगा रोग दोग बहुत लागत है।
2: ओम भैया, ये के लिए हम सबका पहले से सचेत रह जरूरत है, अपने खेत की निगरानी करने की जरूरत है, ताकि अपने जो फसल है और सब्जी है उनका हम कीट से बचा सके।
1: हाँ, तो आज अपने साथ देखो रिंकी कुमारी चौहान बहनी जुड़ चुकी हैं और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, तो आओ जाना जाए
2: भैया, और अपन पंच भैया भी जाने।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहाँ ढेर सारे हानिकारक कीट बीमारियां लगती हैं, उनका प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से वैज्ञानिक पौध रक्षा डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय खरीफ की ढेर सारी सब्जियां जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, लोबिया है, कंद वर्गीय सब्जियां हैं और टमाटर, मिर्च और बैगन भी है, तो इनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो कैसे?
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, अभी देखिए खरीफ का मौसम है, बहुत सारी सब्जियां हैं और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कीट रोग है उसका भी प्रमाण बहुत है। रस चूसक कीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, जैसे एफिड हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, इन सभी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ रासायनिक दवाइयों से हमें इसका प्रबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से कीट में जो है प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसी वजह से जब हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो एक दो साल के बाद वो रसायन जो है उस कीट के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें सेम केमिकल इस्तेमाल होने से प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित हो जाती है हानिकारक कीटों में। इसीलिए और इसके साथ साथ जो हमारे मित्र कीट है, जैसे कि हम देखेंगे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया, तो इस तरह के जो मित्र कीट है उसका भी नुकसान होता है, वो भी हमारे खेत में से खत्म होते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें व्यवहारिक नियंत्रण हो गया, यांत्रिक नियंत्रण हो गया, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है या जो आर्थिक हानि स्तर से अगर कीट का जो स्तर है वो अगर ऊपर है, नहीं प्रबंधन हो रहा है, तभी हमें रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए।
3: और वो भी सुरक्षित
4: जितना हम जानते हैं कि CIBRC है या फिर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है कि इतनी ये दवा इतनी मात्रा में ही और इतने पानी में इतना जो रसायन है वो मिलाकर जो घोल बनाकर वो स्प्रे करना चाहिए उतनी ही मात्रा में, कभी भी रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, इस समय ढेर सारी सब्जियों की नर्सरी है, जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, खरीफ प्याज है, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, तो नर्सरी में कीट रोग का प्रबंधन कैसे हो?
4: देखिए नर्सरी की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि अगर नर्सरी की ही अवस्था से हम लोग रोग या कीट का प्रबंधन कर लेंगे तो आगे जाके हमारी जो मुख्य फसल है उसमें कीट और रोग हैं वो कम लगेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नर्सरी जो है जिसमें आद्र गलन रोग लगता है तो उससे, और जो हमारी क्यारी है उसमें अच्छे से पानी का जो निकाल है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना चाहिए हमेशा नर्सरी के लिए। उसके बाद जो सौरीकरण, वो भी भूमि का बहुत ज्यादा जरूरी है, यह हमें सौरीकरण जो मई जून के महीने में जब तेज धूप होती है तब करना चाहिए। उस समय हमें जो पॉलीथीन सीट होती है 45 गेज की, उसे मिट्टी के ऊपर करके फिर सौरीकरण किया जाता है, जिससे कि ज्यादा गर्मी की वजह से जो भूमि के नीचे कीट हैं या रोगवाहक जो स्पोर हैं, अंडे हैं, वो सब मर जाते हैं इस वजह से। उसके बाद हमें भूमि शोधन भी करना चाहिए। भूमि शोधन हो गया कि जो 3 किलोग्राम जो घूरे की खाद होती है हम जानते हैं, उसके अंदर 250 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा जो हमारी जैविक मित्र फफूंद है उसे मिलाकर थोड़े दिन तक रख देना चाहिए छाए में, और उसके अंदर पानी छिड़क कर अगर हम नमी

0: बनाए रखते हैं, फिर 21 दिनों के पश्चात हमें अपनी क्यारी में 3 वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देना चाहिए।
1: ये कितने क्षेत्रफल के लिए?
0: ये सिर्फ 3 वर्ग मीटर के लिए, 3 वर्ग मीटर की जो क्यारी होती है सिर्फ इसकी मात्रा है।
1: उसमें 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 3 किलो गोबर
0: घूमे
1: की
0: की
1: सड़ी खाद या कंपोस्ट में।
0: हाँ उसमें मिलाकर रख देना चाहिए। उसके बाद जो नमी बनाए रखना, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे कि नमी रहे। उसके बाद ये जो मित्र फफूंद है वो इसमें बढ़ जाती है, फिर उसे हम जो हमारी क्यारी है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीज शोधन, अगर बीज शोधन ही हम कर दे तो वो जो आगे हमारी मुख्य फसल है उसमें रोग बहुत ही स्तर से कम हो जाता है। तो जो ट्राइकोडर्मा है उसका भी 4 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज शोधन हमें जरूर करना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे हम प्रतिरोधी क्षमता, किसी भी अगर बैंगन की प्रतिरोधी क्षमता की प्रजाति है या फिर टमाटर की जो प्रजाति है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता है कीट और रोग के लिए, तो वैसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे फसलों में रस चूसक कीट है उनके लिए भी बीज शोधन होता है, तो उसके लिए भी हमें इमिडाक्लोप्रिड 70 WS का 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करना चाहिए।
1: यानी नर्सरी में ये काम पहले ही हो जाए।
0: हाँ पहले ही
1: बीज
0: हो जाना शोधन
1: में। डॉक्टर साहब, जहाँ रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन नर्सरी की, तो पौध जड़ उपचार भी तो जरूरी है।
0: हाँ पौध जड़ उपचार भी हमें सीडोमोनास फ्लोरेसेंस से कर देना चाहिए 5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से। उसके बाद देखिए हमें जब हम मुख्य फसल लगा दे रहे हैं तो साथ ही साथ जो परभक्षी पंछी है उसे भी एक बर्ड स्टेचिस हमें लगाना चाहिए जिससे कि जो पंछी है हमारी फसलों में जो भी इल्लियां हैं उसे चुन चुन कर फिर वो खाती रहती हैं।
1: यानी बर्ड पर्चर
0: हाँ,
1: लगाएं,
0: बर्ड
1: टी
0: पर्चर
1: आकार
0: हमेशा टी आकार का लगाने चाहिए जिसके ऊपर बैठकर पंछी आराम से फिर वो कीट जो है ढूंढ के खा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी मुख्य फसल है उसमें रस चूसक कीट का प्रकोप खूब ज्यादा मिलता है, तो
1: अक्सर बरसात
0: में तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा भी होता है। तो रस चूसक कीट जैसे एफिड जैसिड हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो नीला या पीला चिपचिपा फंदा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए,
1: यानी फेरोमोन ट्रैप।
0: ये जो रस चूसक कीट है उनके लिए नीले चिपचिपे या पीले चिपचिपे फंदे का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि यह रस चूसक कीट आकर्षित होकर उसमें चिटक जाते हैं और फिर वो उड़ नहीं पाते हैं, इस तरह से इसका प्रबंधन होता है। इसके सिवाय जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है, नीम से बनता है,
1: यानी नीम कौड़ी का सस्त,
0: हाँ तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो जैसा कि हम जानते हैं नीम हमेशा कड़वा होता है, तो ये भी है जो रस चूसक कीट है उनके बढ़ावा को कम करता है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सफेद मक्खी हो गई या रस चूसक कीट का जो आर्थिक हानि स्तर ऊपर जा रहा है, तब हमें जो फेनप्रोपैथ्रिन 30 EC नामक दवा है उसका 5 से 7 मिली प्रति 15 लीटर वाली टंकी के दर से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए।
1: या कोई दूसरी दवा?
0: दूसरी दवा भी है जैसे कि स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC है, इसका भी 12 मिली प्रति टंकी यानी कि 15 लीटर पानी की दर से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं सुबह या फिर शाम को जब समय हो। निगरानी बहुत ही जरूरी है तभी हमें कीट का पता चल जाता है, और सबसे अच्छा जब हम निगरानी करते हैं तो गंध पास हमें खेत में जरूर लगाना चाहिए। तो जो ल्यूसिनोट्स ऑर्बनलिस का ये गंध पास होता है बैंगन के लिए, तो वो हमें 3 से 4 प्रति एकड़ शुरुआती अवस्था में सिर्फ निगरानी के लिए लगाना चाहिए। अगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नुकसान या जो पतंगे हैं इसके अंदर आकर्षित होके आ रही है, तो उसके बाद हमें जो प्रबंधन करने के लिए 30 से 40 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9924876728 99247767 28 99247767 28।
1: डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान, आज आप कार्यक्रम में आई और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सला भाई ने देखो, जब इतनी नीक बत कही सुनवाए दिन हो है, तो हम देख रहे हैं कि आप मुस्काया रहे हो बहुत ज्यादा है।
3: कायन भैया, देखो सावन का महीना है और झूला पड़े हैं, सब बहने अपने मायके में आके झूला झूल रही हैं, तो हमारा मन कहा था भैया कि कजरी उजरी सुन लेन जाए।
2: बिल्कुल, अपने पंचो बहन देखो कजरी सुनवाओ बहनी।
3: मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में कजरी तो सुना जाए और पंचो भैया भी सुने आनंद लिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सरला बहनी,
7: हाँ भैया,
6: अपने बीच का किसान भाई देखो कितनी मेहनत करते हैं और तना तना के नवाचार अपनी खेती में अपनावत हैं।
7: ओम भैया, जो किसान होते ना, हम सब अपन खेती करत हैं, मुला के कुछ ऐसे किसान होते जो नई तकनीकी अपनाए रहे हैं तो वे सबसे अलग हो जाते हैं और ऐसे सफल किसान भी रहते हैं।
6: तो देखो आज के किसान जो है अचल कुमार मिश्र भैया अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो आओ सुना जाए।
8: आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के बिजुआ ब्लॉक के मेड़ईपुरवा गांव से गन्ना उत्पादन से जुड़े अचल कुमार मिश्र भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप कृषि में विविधीकरण और खास करके मिठास फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय रकबा कितना है?

0: है आपका गन्ने का?
1: नमस्कार। इसमें लगभग हमारे पास तो 20 एकड़ जमीन का रकबा मैंने गन्ना बो रखा है,
0: हाँ,
1: और संयुक्त रूप से हम ज्वाइंट फैमिली में खेती करते हैं।
0: तो जो 20 एकड़ है, कुछ शरतकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा?
1: जी, कुछ शरतकालीन है और बसंतकालीन है, लेकिन ज्यादा रकबा जो हमारे पास है वो शरदकालीन गन्ने का है।
0: लगभग कितना?
1: लगभग 5 हेक्टेयर, 12.5 एकड़।
0: 12.5 एकड़ शरदकालीन गन्ना है
1: जी
0: और लगभग 7.5 एकड़ आपका बसंतकालीन गन्ना है।
1: जी
0: कौन कौन सी वैरायटी आपके खेत में है इस समय?
1: इसमें जो नवीन प्रजातियों में है वो COLK 16202, COS 18231 और 14234 सामान्य प्रजाति का गन्ना है। साथ ही जो अर्ली में बहुत प्रमुख वैरायटी रही जिसकी गुड़ बहुत अच्छी बनती है, COJ 85 जो बहुत पुराना गन्ना है वो भी हमारे पास है।
0: तो इस समय फसल कैसी चल रही है?
1: फसल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पिछले वर्षों हमारे यहाँ लगातार तराई में ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए गन्ने के लिए हमारा जिला पहचाना जाता है। इस वर्ष बारिश थोड़ी कम है
0: तो उसका असर क्या गन्ने की फसल पर है?
1: जी, उसका असर लगातार अभी तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लगता है आने वाले दिनों में अगर बरसात कम होती है तो हम लोगों का उत्पादन घट सकता है।
0: लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है।
1: जी, अभी बारिश शुरू हुई है, लेकिन पिछले वर्षों में लगभग 15 जून तक हमारे यहाँ मानसून आ जाता था। अब की मानसून की बरसात बारिश जो है लगभग 20 दिन लेट हुई है, इससे जो है काफी अधिक फसलें प्रभावित हुई हैं।
0: तो आप जीवन रक्षक सिंचाई करते रहे होंगे गन्ना में?
1: जी, लगभग हमारे पास विद्युत संचालित नलकूप हैं, उससे हम लगातार जो है सिंचाई करते रहे हैं।
0: इस समय हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है, तो उसके प्रबंधन के लिए क्या कर रहे हैं?
1: देखिए, पहली बरसात में सबसे ज्यादा समस्या जो है किसानों के सामने वो पोका बोइंग रोग की आती है।
0: आपके यहाँ हैं लक्षण?
1: जी, पोका बोइंग के लक्षण जब आते हैं तो गन्ने की ऊपर की जो पत्ती है वो लगभग एक मड़ोड़ सी जाती है, ऊपर से उसमें ऐठन आ जाती है,
0: जी,
1: उसको पोका बोइंग रोग कहते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सो क्लोराइड का छिड़काव कर दें तो वो बीमारी दूर हो जाती है और गन्ना बहुत ही अच्छी तरह से उत्पादन दे सकता है।
0: तो आपने ऐसा किया अपने गन्ना के खेत में?
1: जी, बिल्कुल किया है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं किसानों को सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, पोका बोइंग रोग है या पायरीला है, इसके लिए लगातार हम उनको कौन सी इंसेक्टिसाइड उनको डालनी है, कौन सी फंजीसाइड उनको डालनी है, इसके लिए लगातार उनको हम अपनी जो है सुविधा अनुसार उनको जानकारी दे रहे हैं।
0: यानी अपने अनुभव से उनको सलाह दे रहे हैं
1: जी
0: कि जैसा आपने किया है वैसा वो भी करें ताकि उनको भी लाभ मिले।
1: जी जी
0: अचल भैया, चूंकि गन्ना उत्पादन से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो गन्ने की बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारे लिए होता है बीज, क्योंकि देखिए बीज बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा बीज है, रोग मुक्त बीज है, तो उसकी बुआई आप करेंगे तो आपको एक तो रोग नहीं प्रभावित करेगा, साथ ही साथ सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करनी है, खेत का समतलीकरण करना है, उसके बाद अच्छे से उसको पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद उसकी आखिरी जुताई जब हम बुआई से पहले करेंगे रूटावेटर से, तो उसमें 10 किलो एकड़ के हिसाब से लगभग जिंक सल्फेट देनी है हमको आखिरी जुताई में। साथ ही साथ प्रयास ये करें, अगर हम ग्रीन मेन्योर करते हैं,
0: यानी हरी खाद।
1: हरी खाद करते हैं, जैसे कि ढेंचा है, मूंग है, सनई है, तो हमारी उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाएगी और हमारी फसल अच्छी होगी।
0: खेत का हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा।
1: जी, जो हमारा सबसे मेन चीज होती है जमीन के अंदर वो कार्बन होता है, वो कार्बन जो है 0.8 से ऊपर रहना चाहिए। प्रत्येक किसान को इस चीज का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमको लगभग फसल के कटाई के बाद 1 महीना खेत भी छोड़ना है खाली, ताकि खेत खाली रहेगा तो उसकी कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ समय समय पर सड़ी लगभग 3 वर्ष की गोबर खाद का भी प्रयोग करना है, जिससे कि उसका कार्बनिक मैटर बढ़ जाए। अब बुआई में बीज के ऊपर जो है, बीज में आपको हमें सबसे पहले 10 माह का ही बीज लेना है,
0: जी,
1: क्योंकि उसमें जो है शकरा की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारा बीज जमाव बहुत अच्छा लेगा। अब बीज को शोधन की बात आती है, शोधन के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक ले सकते हैं, कोई भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड ले सकते हैं, कई सारे कार्बिंडाजिम है, अमीडा क्लोरोपिड है, फिप्रोनिल है, ऐसी कई सारी थाइमेक्सोन
0: था।

0: थक जाऊं।
1: जी, ये भी आता है, CS30%। कई सारी ऐसे इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक आ गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जा रहे हैं, या आप जैविक रूप में शोधन करना चाहते हैं तो भी आप शोधन कर सकते हैं।
0: ट्राइकोडर्मा,
1: ट्राइकोडर्मा से भूमि का शोधन कर सकते हैं, विभिन्न बैक्टीरिया से जो है आप जैव शोधन कर सकते हैं।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल

0: का उपयोग करें और जो मट्टी जांच अवश्य कराएं ताकि संतुलित उर्वरक दें, जिस चीज की जरूरत हो वही उर्वरक उसको दिया जाना चाहिए। इससे आपकी लागत घटेगी और लागत घटाने पर ज्यादा जोर दें, मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ें। खेती में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी है। विज्ञान के बिना अच्छी खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकगण अच्छी प्रजातियां देते हैं, अच्छी हमको कीटनाशक देते हैं, अच्छी फफूंदीनाशक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमको कम लागत में ही अच्छा उत्पादन मिल सके। लगातार वो प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास को जमीन के ऊपर उतारने का काम हमारा है। इस पर किसान भाइयों को ज्यादा जोर देना।
1: अचल कुमार मिश्र भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आपने पढ़ाई लिखाई के बाद सीधे कृषि से जुड़ गए, खास करके मिठास की फसल का उत्पादन आप लगातार कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और साथ में कृषि में विविधीकरण भी कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरला बहनी, अपन खेती पाती देखो मौसम पर आधारित रहते हैं, और अगर हम पंचन का मौसम के हाल पहले से पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपन खेती का काम पहले से निपटा सके थे।
3: बिल्कुल भैया, तो काहे ना मौसम का हाल जान लें जाए।
2: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम का हाल यह प्रकार से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज यानी 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और कहूँ कहूँ तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के भी संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और यही के साथ कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
5: परंतु सभी डाले
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: ओम भैया, अपन बैठ की कैसन लाग यह के खातिर अपने पंच के प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और प्रतिक्रिया दे खातिर चिट्ठी पाती जरूर लिखें।
2: तो कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है 226001।
3: और अपने कार्यक्रम में मेल करे खातिर पता है फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
2: तो सरला बहनी, अब देखो चलक हो रही बेरिया, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर

0: करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: कहाँ है? जॉब पर हूँ।
3: बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ।
4: ऑफिस में?
2: मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है।
4: अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो।
5: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी।
4: भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा।
2: मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ।
6: योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। श्री खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
8: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
0: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने विगत 3 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवंटित बजट पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

0: कमलनाथ ने आज विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है।
1: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
0: ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक आज लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुई। ये बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश सरकार ने आज राज्य के 13 IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इनमें 4 मंडलायुक्त भी शामिल हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रबंध निदेशक PCDF वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त, शंभु कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हटाकर बरेली का मंडलायुक्त और डॉ लोकेश एम को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि सारनाथ के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर उसके प्रचार प्रसार को नई गति देगी तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी।
2: ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इनक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। सारनाथ से निकल करके जो संदेश भारत के संदेश के रूप में, भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में, धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ में जो संदेश यहाँ से निकला, इस संदेश ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का, बहुत बड़ी आबादी के जीवन को अवलंबन दिया है।
0: केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसके पूर्व वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने मेरठ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, शामली सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। एक रिपोर्ट।
3: बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जनपद हापुड़ में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना, धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर

0: आते कांवड़िये बारिश में भीगते हुए काफी आनंदित दिखाई दिए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं, जिला रंगारेंडी तेलंगाना से कानू गोलगोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। गिरहीट झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। ये संदेश हमें भेजा है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रेंझेम गुप्ता ने। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। आपने दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से। आदर्श नगर मुलुड पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्त

ईश्वर सागर और संजय चौहान, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, रविराज सिंह। आप हैं रसीरा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये संदेश हमें भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। कबीरनगर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और दानिश गुनोरी। आप हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आइए सुनते हैं आप सबके लिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म है जानी दुश्मन। गीत वर्मा मलिक का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथी। फिल्म थी जानी दुश्मन। अब आप सुनेंगे फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर। गीत और संगीत विशाल शेखर का है। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर झोंधले, आरती झोंधले और उनके परिवारीजन। ये संदेश हमें भेजा है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत ने। नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायडे और आशीष मोहरेकर। गांव गोपी की निगरिया से मिट्ठालाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकेता और इनके माता पिता। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, संजना और इनके माता पिता। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके माता पिता। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन और उनके परिवारजन। पैठण से शेख चांद, शेख दनान, शेख नुमान, शेख जाकिया। रहट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य। कष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारजन। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाहुल हक डाबर। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्री राम गोंधली, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम और युविराज गोंधली। जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, माधुरी करण और देवश्री। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी, रजमत वर्मा, मुरली, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए ये गीत।

ये थे अभिषेक बच्चन और सुनिधि चौहान। फिल्म थी ब्लफ मास्टर। और अब आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास को। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशक आनंद मिलिंद। पसंद भेजने वाले श्रोता लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से मन भावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा और पुनिधि भाई बागरी। ये संदेश हमें भेजा है ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबरी काजल, पूर्वी हेजल, रेशमा साहू और राजेश साहू ने। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया

आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और उनके परिवारजनों ने दरभंगा से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, कांति मिश्रा, रानी संगीता पासवान, मेनका मुखिया और भूलिया देवी गुप्ता, वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, आप जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े।

ये थे मोहम्मद रफी, फिल्म थी हवस। गी सावन कुमार का संगीत निर्देशक थी उषा खन्ना। पसंद हमें मिली शहदुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, अदीम अकरम और उनके मित्रगण परवारी जन। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा। दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरेशे।

बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी तानिया नारंग और उनके परिवारी जन। इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप

लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से यह अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।

विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का अब बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के

मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 45 मिनट तक स्थगित रही। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सपा के सदस्य वेल में धरना देते हुए नारेबाजी करते रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच 39,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों के अनुरूप प्रस्तावित अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 6.47% है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय पर विशेष बल देने का उद्देश्य प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार करना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिले। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना, नई जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे सरकार नई विकास परियोजनाओं के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा सकेगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी है। इसके लिए ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं और गांवों में विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अनुपूरक बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए करीब 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं महिला कल्याण विभाग के लिए लगभग 1,094 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। शोर शराबे के बीच नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के पटल पर रखा। सपा सदस्यों को आगाह करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो खींचने की कोशिश की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मना करने के बावजूद निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। साथ ही बाकी सदस्यों को भी चेतावनी दी कि जो भी सदस्य इस तरह का आचरण करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नेता सदन ने अपना पूरा वक्तव्य दिया। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। इस बीच सदन के सुरक्षा

अभी आपने सुना देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। पीठ के द्वारा नियम के अंतर्गत जिन भी मुद्दों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लगातार सदन का माहौल खराब किया जा रहा है। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों से अधिक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कार्य कर रही है, जिसका समय समय पर अनेक माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जिससे जनता लाभ उठा सके। सदन में आज प्रश्न पहर शांतिपूर्वक चला। सपा के आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए के MOU के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री से प्रश्न किया। औद्योगिक विकास मंत्री के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करा लें कि ये MOU कराने लायक है या नहीं। शून्य प्रहर में नियम 39 में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग में विनियमितीकरण से वंचित तदर्थ नियुक्त प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण करने के संबंध में सूचना दी, जिस पर उमेश द्विवेदी समेत अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर शासकीय आदेश जारी किया जा चुका है। सभापति ने सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा संबंधी मामलों के लिए सदन की जो समिति बनी हुई है, ये मामला उसमें उठाएं और बैठक कर सम्मानजनक रास्ता नियम के दायरे में निकालने का प्रयास करें। सभापति ने ये भी निर्देश दिया कि नेता सदन अगस्त के माह में ही ये बैठक कर ले। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। शून्य प्रहर में ही समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के SCERT व डायट में कार्यरत प्रवक्ताओं के ग्रेड पे 6,000 रुपए का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस मामले को भी शिक्षा के मामले सुलझाने के लिए नेता सदन की अध्यक्षता में बनी समिति में उठाने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम विधानमंडल समीक्षा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी कालिया। इस फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत निर्देशक थे आरडी बर्मन। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के

0: दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड

0: कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
1: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236,60,00,000 रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते है, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। हुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम

0: और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
2: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirma Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. We have a report.
3: The Supreme Court

ये थे उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म थी हंगामा। गीतकार थे समीर, संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण। और आइए सुनते हैं आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को। फिल्म है गुनाह।

0: 만탄.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और मंथन कार्यक्रम का ताजा अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हम देश में ईवी क्रांति पर चर्चा

0: करेंगे और विशेष रूप से ईवी क्रांति के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या सब चुनौतियां हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के ऑटो सेक्टर के जाने माने विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह। रोनेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मनोज जी।
0: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी क्रांति के लिए वर्तमान में उपलब्ध बाजार का आकार क्या है और इस बाजार में मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है।
1: इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो भारत में करीबन 2007-08 से शुरू हुई थी। उस वक्त ज्यादा सपोर्टिव पॉलिसी नहीं थे, तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर वो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डंप पड़ गई। बट उसके बाद अभी 2014-15 के बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम ले आए, जैसे शुरू में फेम स्कीम ले आए, जिसमें हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स का ज्यादा कुछ नहीं था बट पैसेंजर व्हीकल्स और आपके टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बहुत ज्यादा महत्व था उसमें। तो उसके अंदर भी काफी गाड़ियां बिकी जिसमें हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स थे वो भी इंक्लूडेड थे जिस स्कीम के अंदर, और उसमें काफी फायदा भी हुआ कंपनीज को एज वेल एज यू नो कस्टमर्स को। बट उसके बाद फेम के बाद जो पीएम ई ड्राइव जो पुश हुआ 2014 से, जैसे फेम खत्म हो रहा था तो इसको हम फेम टू के बाद फेम थ्री भी कह सकते थे, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके पीएम ई ड्राइव रख दिया, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके ना ई ड्राइव करके रख दिया। उसके अंडर अभी जो है काफी बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो हम लोग 5% और पहले साल में 2.5% जो थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को दे रहे थे उसकी वजह से काफी सेल्स पिकअप हुई है पिछले 2 सालों में। अगर थोड़ा आंकड़े रखे तो जैसे अभी जो है हर महीने करीबन 2 लाख टू व्हीलर्स बिक रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है मुताबिक यू नो कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसके पहले जो लास्ट ईयर करीबन 1 लाख भी टच नहीं हो पाए थे और लास्ट ईयर करीबन 1 लाख टच हुआ था पर महीना। तो अभी क्या हो रहा है पर महीना जो है रूटीन 2 लाख के करीब बिक रहा है। हम लोग जो जून मंथ जो था वो जून 2026 जो था वो बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मंथ था, जिसमें काफी गाड़ियां बिकी है, इलेक्ट्रिक कार्स कह लो या थ्री व्हीलर्स कह लो टू व्हीलर्स सारे पिकअप हुए और बसेस भी काफी पिकअप हुई। हालांकि नंबर आंकड़े बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स के, बट काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में क्योंकि अलग अलग स्टेट्स भी अब अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अपने, जैसे जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ता गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो। ऊपर से जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके साथ वो मर्ज करके उनको फायदा दे रहे हैं कस्टमर्स एज वेल एज यूजर्स को, तो इसके वजह से जो है काफी अभी बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट।
0: यहाँ पर रोनेन्द्र थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे, विशेष रूप से जो नए श्रोता हैं और ईवी गाड़ियों को लेकर थोड़े से आशंकित रहते हैं, सरकार की नीतियां विशेष रूप से उपभोक्ताओं को किस रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या योजना है, यह यदि आप बता सकें तो मुझे लगता है कि श्रोता अधिक लाभान्वित होंगे और जो नई अपनी गाड़ी को लेकर विचार कर रहे हैं उन्हें अपना फैसला करने में सुविधा होगी।
1: सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को जो फायदा हो रहा है वो अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम एज वेल एज अभी जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें काफी फायदा हो रहे हैं। जैसे अगर आप 50% डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगर मटेरियल डालते तो आपको काफी बढ़िया उसमें से गवर्नमेंट उसको आपको टैक्स रिबेट देती है ऊपर से सबसे पहले, फिर उसके बाद फिर अब जीएसटी जो 5% हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी वजह से भी काफी फायदा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को
0: जी।
1: उसी कारण जो है अभी जो इतना जो जंप हुआ है पिछले 5-6 महीने में जो सेप्टेम्बर से मतलब जो 5% जीएसटी लागू किए थे उसके बाद से ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी अब कट करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का अपना अनुमान लगा देते कि भाई इसमें अगर हमको इतना परसेंट देना है कस्टमर्स को हम भी अपना प्राइस को इतना कर सकते हैं, तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है काफी पहले के मुताबिक काफी अब अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या कर रही है कुछ कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि आप जो है ना आपको लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी दे रही है, जिस कारण कस्टमर्स को भी अब ये लग रहा है कि भैया देखो अगर मैं गाड़ी 15 साल के लिए यूज करूंगा चाहे 8 साल के लिए भी अगर मेरे को गाड़ी के लिए बैटरी के लिए अभी लाइफ टाइम दे रहे हैं तो मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने भी खुद भी आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है 7-8 साल से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखती हैं।
0: जी जी।
1: ऊपर से ये भी कर दिया है कि अभी कुछ कुछ गाड़ियों में ये कर दिया कि OEMs ने क्या कर दिया कि अभी पूरे उम्र भर के लिए मतलब फॉर द लाइफ गाड़ी का बैटरी जो है वो उसको बोला कि वारंटी दे दिया उसका कि कुछ भी वेयर एंड टियर होगा तो हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लस उसमें से और क्या हुआ है कि अगर ये भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3-4 साल बाद भी अगर आपको नहीं लगती है, अच्छा मेरे को, मैं ईवी, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा, मुझे अच्छी नहीं लगी, क्या नहीं, तो आपको अशोर्ड बाई बैक ऑफर भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी आपने मान लो 15 लाख की खरीद ली, तो आपको अशोर्ड बाई बैक 3 साल के अंदर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि बोलेंगे भैया ठीक है, आपने 3 साल चला ली, जो गाड़ी की वैल्यू होगी मार्केट की वो हम आपको देंगे, गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये कंपनीज की तरफ से अगर ऐसा

0: ऑफर आ रहा है तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब दे डोंट सी, उनको नहीं लगता कि इससे कुछ उनको नुकसान होगा, तो इस कारण जो है वो नंबर जो है काफी जंप हो रहे हैं 20 साल के शुरुआत से।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री के, वह किस सेगमेंट में सबसे अधिक दिख रहा है, पैसेंजर कार में या टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर में? आपने पहले ही बताया कि जो कमर्शियल यानी व्हीकल हैं उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आंकड़ा है, लेकिन बाकी में क्या स्थिति है, कौन बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है?
0: सबसे तेज गति से जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर है कि वो टू व्हीलर ही है,
1: जी
0: जो शुरू से ही मतलब टू व्हीलर जो है वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जब सेटअप ही नहीं थी तब से टू व्हीलर का ही पहले सबसे ज्यादा चलन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अभी भी टू व्हीलर ही है जो करीबन 2 लाख के करीब बिक रहे हैं महीने का। उसके बाद आता है थ्री व्हीलर, क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है कि टू और थ्री व्हीलर में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब्सिडीज है वो कंटिन्यू चल रही है फेम टाइम से। तो चाहे फेम वन हो फेम टू हो और अभी इवन पीएम भी ड्राइव हो, उस कारण क्या हो रहा है कि टू व्हीलर जो मार्केट है और थ्री व्हीलर मार्केट है वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि इन गाड़ियों का, टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन महानगरों में है, छोटे शहरों में है, राज्यों की राजधानियों में है, या जो छोटे कस्बा हैं, छोटे कह लें कि शहर हैं, वहां भी हम थ्री व्हीलर का, टू व्हीलर का विकास देख रहे हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो है थ्री व्हीलर जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो आपके छोटे छोटे शहरों में भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है अभी। और टू व्हीलर जो भी है वो महानगर के अलावा जो टीयर 2 हमारे टीयर 3 टाउन्स हैं वहां भी उनका ज्यादा चलन चल रहा है। और थ्री व्हीलर में भी इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो कमर्शियल थ्री व्हीलर है जो 1 टन के नीचे आते जो छोटा ट्रक जिसको बोलते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: छोटा टेम्पो टाइप जो होता है वो भी बहुत सारे बिक रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी अब एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत अपना वो दिखा रहे हैं कि वी ऑल्सो केयर फॉर एनवायरमेंट, उस वजह से वो लोग भी ये थ्री व्हीलर या छोटा 4 व्हीलर टेम्पो जो है छोटे ट्रक से उसको अपना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सेल्स भी बढ़ोतरी हो रही है जो हम L1 कैटेगरी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर के सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। उसके बाद आता है 4 व्हीलर जो अपने पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो करीबन 30,000-32,000 के करीब बिक रहे हैं हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम महीने में करीबन 4 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं साल महीने का।
1: जी
0: तो उसमें से अगर 30,000-40,000 भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
0: और अभी ट्रक्स और बसेस का है कि ट्रक्स का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रक्स का अभी भी कुछ कुछ टेस्टिंग फेज चल रहा है और पीएम ड्राइव में भी ट्रक्स के उसमें ज्यादा अभी लोगों को होमोलोगेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रक्स का अभी कमी है। लेकिन बसेस का ये है कि कमर्शियल बसेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसमें ये हो रहा है कि बसेस की भी अभी तादाद अभी बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमारे आसाम हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो,
1: जी
0: आपका गुजरात हो गया हो, तमिलनाडु हो गया हो, अपने दिल्ली में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च बेवी करके
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: बसेस जो छोटे हैं जो 32 सीटर होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक के रूप में निकल रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम जो बड़े बसेस हो गए JBM या टाटा अशोक
1: जी
0: लेलैंड के।
1: जी जी
0: तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो चारों तरफ से होने जा रही है अभी, छोटे शहरों से बड़े शहरों से सब मिलके और मेट्रो सिटीज बोल लीजिए वहां से सब बढ़ के ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स।
1: यानी वास्तविक अर्थों में हम कहें तो वास्तव में हम क्रांति की दिशा में ईवी वाहन सेगमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हमने शिफ्ट किया था सीएनजी की तरफ, उसके बाद हम ईवी में जा रहे हैं, अभी चार्जिंग सिचुएशन क्या महानगरों और छोटे शहरों में है, और इसको लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं?
0: सरकार ने ऑलरेडी पीएम ई ड्राइव के अंदर भी जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन था कि चार्जिंग स्टेशंस का भी हम लॉन्च करेंगे और स्पेशली ऑन द हाईवेज जहां पे लोगों को चाहे मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम आधा घंटा लगता है फास्ट चार्जिंग करने में।
1: जी
0: उसमें क्या होता है कि आपके 80% जो गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है, सो आप अपने नेक्स्ट जर्नी में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो ऑयल कंपनी से हमारे जैसे इंडियन ऑयल हो गए, भारत पेट्रोलियम हो गए, इन सब के साथ भी गवर्नमेंट टाई अप करके वहां पे भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उसमें उसमें क्या होगा कि अभी जो थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि मैं दिल्ली से अगर मैं लखनऊ जाता हूं तो मैं कितनी बार रुकूंगा
1: जी
0: हाईवे
1: जी
0: पे, तो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए अभी क्या हो गया कि अभी जो आप गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपके साथ एप्स भी लॉन्च हो गए हैं। उस एप्स में आप ये पता भी कर सकते हैं कि जो मैं जा रहा हूं तो मेरे को कितनी बार रुकना पड़ेगा, आप किलोमीटर काउंट कर लेते हो और आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा। और ये भी दिखा देता है कि वहां पे जो चार्जर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो अभी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। और ये भी कर दिया अपार्ट फ्रॉम जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उसके अलावा ये भी कर दिया कंपनी जो कुछ कुछ कंपनीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादातर सारी कंपनीज है इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल कंपनी जैसे मर्सिडीज हो गए BMW हो गए, इनके ऐप में ये होता है कि उनका जो नियरेस्ट आपको जो डीलरशिप

0: पे, चाहे आपको जैसे हाईवे में सपोज आपको नहीं मिला तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप हमारे डीलर में जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी रूरल की बात करें तो मैं कहता हूँ कि रूरल में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के, वहां पे आपको कोई यहाँ किसी से आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ कुछ इलाकों में दिल्ली जैसे शहरों में, जैसे NCR नोएडा हो गया, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो RWs हैं, वो लोग मना कर देते हैं कभी भी केसेस आए कि उन्होंने बोला कि हम इसकी आप चार्जिंग पॉइंट लगाओगे तो इसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती है। हालांकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा चेक करके लगा के वो तभी इंस्टॉल करता है कि देख के कि भैया वायर में कोई कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, या कभी वो सब सेफ्टी मेजर्स लगा के करते हैं। बट फिर भी लोगों के माइंड में ही रहता है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से भी वो लोग काफी अभी उसमें भी क्वेश्चंस करते हैं। बट रूरल एरिया में ये होता है कि ज्यादातर सबके पास अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्पेस होता है घर के आंगन में, घर के साइड में, तो
1: जी
0: वहां उनको सबसे ज्यादा इसनेस आ रहा है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे कोई हमें किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना घर है, उनका मकान है, उसके साथ साथ में अपना अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के इजिली आप अवेल कर सकते हैं।
1: जी
0: स्पेशली टू व्हीलर्स में भी ऐसे हो रहा है, टू व्हीलर्स में एक तो स्वैपिंग ऑफ बैटरी ऑलरेडी है ही, और ये कि घर के साथ में आंगन में आप अपने चार्जिंग लगा सकते हैं स्कूटर को या टू व्हीलर को।
1: जी, बहरहाल हमारे सामने क्या
0: जरूर
1: चुनौतियां हैं रोनेंद्र, ईवी पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ने में, और कब तक हम उम्मीद करें कि ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के पैरेलल भले ना आए, लेकिन उन्हें चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं?
0: देखिए, चुनौती तो ऑलरेडी अभी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कुछ कुछ कंपनीज की गाड़ियां ले लो तो आजकल जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो आपके पेट्रोल व्हीकल के करीबन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। जैसे किसी में 10-20 हजार रुपए का बस फर्क होगा, जो कि हमारे CNG और पेट्रोल व्हीकल में जैसे होता है या डीजल व्हीकल में होता था।
1: जी
0: तो अभी वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है। और उसके बाद ये हो रहा है कि कॉस्ट जो है, जो आपका जो यूजर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कितना AC चला रहे हो, कितने स्पीड में चला रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है कि आप सिटी में जितना चला रहोगे उसमें आपको ज्यादा कहीं रेंज मिल जाए, क्योंकि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ये होता है कि आप जितनी बार ब्रेक मारोगे बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है। तो अगर वो 200 का क्लेम करती है तो 200, 190 तक, 195 तक वो सिटी में दे ही देती है। हाईवे में फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है कि आप जैसे हाई स्पीड में चला रहे होंगे, AC ऑन होगा आपका, तो ये होता था कि उसमें थोड़ा बहुत कम रेंज मिल सके। इसलिए सबसे ज्यादा अभी हाईवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे आप कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं आधा घंटे के लिए, आजकल 40 मिनट तो आप रुक ही लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप चाय कॉफी पी रहे हो तब तक आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाए 80%। तो ऐसा कर करके आप जो है हाईवे का जर्नी आराम से आप कवर कर सकते हो। और हाईवेज में ये हो गया कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी इतने बढ़िया बढ़िया हाईवेज बना दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको आराम से रेंज मिल जाता है और आपको ब्रेक लेके आराम से आप तब तक अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो गाड़ियां जो करीबन 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो तो आराम से, मतलब एक तरफ की जर्नी तो मतलब जो 300 किलोमीटर होंगे, 350, एक तरफ की जर्नी तो एक चार्ज में ही कवर कर लेता है। और आप जहां भी रुके होंगे तो वहां पे भी आप अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो वहीं पे आप चार्ज करके, आपको हाईवे में रुकने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको 350 किलोमीटर कवर करना है तो आप उसी को चार्ज करके दोबारा उस सिटी से वापस आके अपने पॉइंट में भी पहुंच सकते हैं।
1: श्रोताओं, ईवी क्रांति हो चुकी है, आप इसके सहयात्री कब बनेंगे ये फैसला आपको करना है। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें ईवी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन। आकाशवाणी के रामपुर केंद्र की है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत।
5: खेल दर्पण। खेल दर्पण। खेल दर्पण।
3: खेल प्रेमियों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। मैं हूं अवधेश। अब बात होगी उन शूर वीरों की जिन्होंने 7 समंदर पार स्कॉटलैंड की धरती पर तिरंगे की शान बढ़ाई है। आज हम बात करेंगे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की, यानी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2000

0: 2026 की। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चले इन खेलों में दुनिया भर के 74 देशों ने हिस्सा लिया। इस बार खेलों का आयोजन पहले से थोड़े अलग और सीमित रूप में किया गया, जिसमें सिर्फ 10 खेलों को शामिल किया गया था। 10 खेलों के इस छोटे लेकिन बेहद कड़े महाकुंभ में भारतीय दल ने जो कमाल किया है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एक ऐसा संस्करण जहां भारत के कई पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेल कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं थे। शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, स्क्वैश और क्रिकेट की गैर मौजूदगी के बावजूद भारतीय दल ने शानदार जज्बा दिखाया और 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर अभियान समाप्त किया। 122 खिलाड़ियों के दल में से 38 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे, जबकि गुलवीर सिंह 2 पदक जीतने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी बने। जरा एक नज़र भारत के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कुल प्रदर्शन पर। भारत के 122 खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सीमित खेलों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। अगर स्पोर्ट्स वाइज प्रदर्शन की बात करें तो मुक्केबाजी और एथलेटिक्स भारत के सबसे सफल खेल रहे, जहां दोनों में 10-10 पदक हासिल हुए। बॉक्सिंग में भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत जीतकर इतिहास रचा। वेटलिफ्टिंग से 8 पदक, जबकि पैरा एथलेटिक्स ने 6 पदकों के साथ दमदार योगदान दिया। जूडो में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया, जबकि पैरा पावरलिफ्टिंग से भी एक कांस्य पदक आया। कुल मिलाकर भारत ने 39 पदकों के साथ ग्लासगो अभियान का शानदार समापन किया। अगर इस अभियान का सबसे बड़ा सितारा कोई खेल रहा तो वो था बॉक्सिंग। भारतीय मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड 10 पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 7 स्वर्ण और 3 रजत पदकों के साथ भारतीय बॉक्सरों ने साबित कर दिया कि अब कॉमनवेल्थ मंच पर मुक्केबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जैस्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। एथलेटिक्स में भी भारत ने कई यादगार पल दिए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में 2 पदक जीतकर लंबी दूरी की दौड़ में भारत की नई पहचान बनाई। वहीं तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डिकैथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जूडो और पैरा स्पोर्ट्स भी भारत की सफलता की बड़ी कहानी बनकर उभरे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मीराबाई चानू ने एक बार फिर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा, शर्मिला ढांकर और दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत को कुल 7 पदक दिलाए और ये साबित किया कि भारतीय पैरा खेल लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर पदकों की तुलना की जाए तो ग्लासगो में भारत ने बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 22 पदक कम जीते, लेकिन ये भी सच है कि इस बार प्रतियोगिता में केवल 10 खेल शामिल थे और भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले कई खेल कार्यक्रम से बाहर थे। बर्मिंघम में जिन 6 खेलों से भारत को 30 पदक मिले थे वो इस बार आयोजित ही नहीं हुए। ऐसे में 39 पदकों का ये प्रदर्शन केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि नए खेलों में उभरती भारतीय ताकत की कहानी भी कहता है। ग्लासगो ने भारतीय खेलों को नए सितारे दिए, मुक्केबाजी ने नया इतिहास लिखा, जूडो ने नई शुरुआत की, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स ने नई उम्मीदें जगाई और अब इन खिलाड़ियों की नजरें अगले बड़े लक्ष्य एशियन गेम्स पर हैं। यही है नए भारत के खेलों की पहचान, लगातार आगे बढ़ना और हर मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाना।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक ओर भारतीय खिलाड़ियों ने 39 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को ही सौंप दिया गया। अब 2030 में खेलों के 100वें यानी कि शताब्दी संस्करण की मेजबानी करेगा अहमदाबाद। 2010 दिल्ली के बाद ये दूसरा मौका होगा जब भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: ग्लासगो में 11 दिनों तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य समापन हुआ, लेकिन समापन समारोह का सबसे यादगार पल वो था जब कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक रूप से भारत को सौंपा गया। दो बार के

0: ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारत की ओर से इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
1: ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है, भारत का झंडा शान से लहराया है। हालांकि ये वक्त हमारी जो गेम्स में हमें अधिकतम मेडल्स मिलते थे वो गेम्स को कट डाउन की गई है, फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने नई गेम्स में अपनी जगह बना ली और जगह बना के भारत का तिरंगा और शान से लहराया है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और साथ ही अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। कॉमनवेल्थ सेंटेनरी इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट है और अहमदाबाद उसे पूरी तरह से तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण का आयोजन करेगा और इसकी मेजबानी करेगा भारत का अहमदाबाद। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की 2 बार मेजबानी करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का सफल आयोजन किया था। अब 2 दशक बाद दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत पर होंगी। अहमदाबाद केवल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा बल्कि भारत की खेल क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आयोजन कौशल का भी वैश्विक प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और गुजरात सरकार इसे भविष्य के खेल भारत की नींव मान रही है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के ओलंपिक सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई खेल सुविधाएं, विश्व स्तरीय स्टेडियम, कोचिंग इकोसिस्टम और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के विकास की योजनाएं आने वाले वर्षों में भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। ग्लासगो में भारत ने 39 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और अब उसी ग्लासगो से भारत को मिली है एक नई जिम्मेदारी, कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी। 2010 में दिल्ली ने दुनिया को भारत की आयोजन क्षमता दिखाई थी। अब 2030 में अहमदाबाद उस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। अगला पड़ाव अहमदाबाद 2030।
2: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज जहां कप्तान श्रेयस अय्यर की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे को 3-0 से सीरीज अपने नाम की। हरारे में जो हुआ वो एक परफेक्ट कमबैक की कहानी है। आज हम बात करेंगे सीरीज के उस तीसरे और आखिरी मुकाबले की जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैच की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने से, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। इस मैच का असली हीरो रहा वो खिलाड़ी जिसकी उम्र जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, 15 साल का चमत्कार वैभव सूर्यवंशी। हरारे की उस धीमी पिच पर जहां रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता, वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 49 गेंदों में 81 रन की वो आतिशी पारी, 8 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। उन्होंने अपना अर्धशतक तो शानदार अंदाज में पूरा किया ही बल्कि ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की एक बेहतरीन और ठोस साझेदारी भी की। ईशान किशन ने भी 29 रनों का अहम योगदान दिया, हालांकि वो एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए। इसके बाद हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों की एक तेज पारी खेली और अंत में हमारे अपने फिनिशर रिंकू सिंह ने 25 रन जोड़कर स्कोर बोर्ड को रॉकेट की तरह रफ्तार दे दी। नतीजा, भारत ने 20 ओवर में 192 रनों का एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। अब जिम्बाब्वे के सामने था 193 रनों का लक्ष्य। T20 क्रिकेट में 193 रन चेज करना कभी आसान नहीं होता और जब सामने मयंक यादव जैसी एक्सप्रेस पेस हो तो बल्लेबाजों के पसीने छूटना तय है। जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत ही लड़खड़ाती हुई। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही अपना शिकंजा कस लिया। स्पिनर रवि बिश्नोई ने बेन करन को 20 रन पर मयंक यादव के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, असली कहर तो बरपाया मयंक यादव ने। अपनी आग उगलती गेंदों से मयंक ने जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अपने 4 ओवर के कोटे में महज 29 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। यश ठाकुर ने भी मयंक का बखूबी साथ निभाया और 45 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। अंततः 20 ओवर की समाप्ति पर जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर महज 157 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 35 रनों से अपने नाम कर लिया। इस 35 रन की शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। भारतीय बैडमिंटन को एक नया सितारा मिल गया है। महज

0: 17 साल की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी वर्ग की सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: महज 17 साल और 222 दिन की उम्र और एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 के महिला एकल फाइनल में वियतनाम की विश्व नंबर 21 नगुएन थुई लिन को सीधे गेमों में 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता। इस जीत के साथ तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बन गई और भारत का 17 वर्षों का इंतजार भी खत्म कर दिया। साल 2008 में साइना नेहवाल के बाद अब तन्वी शर्मा इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक गेम गवाया और अपने शानदार स्मैश, सटीक नेट प्ले और बेहतरीन रणनीति से सभी को प्रभावित किया। वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 रह चुकी तन्वी शर्मा का ये खिताब भारतीय बैडमिंटन के उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत माना जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का उनका सफर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका है। भारतीय बैडमिंटन को एक और बड़ा सितारा मिल गया है और दुनिया ने एक नया नाम याद कर लिया है, तन्वी शर्मा।
0: अब बात एक ऐसे चमकते सितारे की जिसने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व कप की ट्रॉफी तक का शानदार सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर नल्लापुर रेड्डी श्री चरणी की। आज 4 अगस्त है और आज ही के दिन साल 2004 में इस टैलेंटेड खिलाड़ी का जन्म हुआ था, यानी आज हमारी चैंपियन श्री चरणी का 22वां जन्मदिन है। उनके इस खास दिन पर नजर डालते हैं उनकी अब तक की शानदार यात्रा पर। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एरामला पल्ली गांव में जन्मी चरणी YSR कड़पा जिले से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला प्यार क्रिकेट नहीं था। 6ठी क्लास में उनके पिता चंद्रशेखर रेड्डी, जो रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन्होंने चरणी को बैडमिंटन की तरफ प्रेरित किया था। चरणी ने खो खो में भी हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत को तो उन्हें क्रिकेट के मैदान पर ही चमकते देखना था। उनके चाचा किशोर कुमार रेड्डी ने उन्हें खेल की ट्रेनिंग में पूरा सपोर्ट किया। दिग्गज क्रिकेटर स्मृति मंधाना और युवराज सिंह को अपना आइडियल मानने वाली चरणी ने जल्द ही अपनी स्पिन से जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिसंबर 2024 में विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने इस युवा प्रतिभा पर दाव लगाया और उन्हें 55 लाख रूपये में टीम का हिस्सा बना लिया। मार्च 2025 में सीनियर विमेंस मल्टी डे चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया बी के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। साल 2025 उनके लिए सचमुच एक सुनहरे सपने जैसा रहा। अप्रैल 2025 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इसके बाद जून 2025 में जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपनी T20 डेब्यू करने का मौका मिला तो चन्नी ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट चटका दिए। श्रावंती नायडू के बाद T20 डेब्यू में 4 विकेट लेने वाली वो सिर्फ दूसरी भारतीय महिला बनी। और उनके करियर का सबसे गौरवशाली पल तब आया जब उन्होंने 2025 के ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। अपनी बेहतरीन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों को खामोश कर दिया और विश्व कप ट्रॉफी उठाने वाले स्क्वाड का एक चमकता हुआ हिस्सा बनी। आज अपने 22वें जन्मदिन पर श्री चरणी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो और मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी गांव या शहर आपकी उड़ान को नहीं रोक सकता। श्री चरणी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जनपद रामपुर में आयोजित होने वाली विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं और जनपद में उपलब्ध खेल अवसंरचनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं उप जिला क्रीड़ा अधिकारी संतोष कुमार।
2: मैं संतोष कुमार, उप क्रीड़ा अधिकारी जनपद रामपुर। आज वार्ता करते हैं खेलों में राज्य स्तर पर चमकते रामपुर के सितारे। जनपद रामपुर खेलों में पूर्व से ही काफी अग्रणी रहा है, जहां कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम विश्व स्तर तक रोशन किया है। चूंकि जनपद रामपुर एक नवाबों के शहर से भी जाना जाता है, जहां खेल बहुत ही अपने चरम पे रहा है, वो चाहे उसमें हॉकी रहा हो, फुटबॉल रहा हो, वॉलीबॉल रहा हो, कबड्डी रहा हो, एथलेटिक्स

ऐसे बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो कि अपने चरम पे रहे हैं, और आज हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं जो हमारे चमकते सितारे खिलाड़ी के रूप में आज निकल कर जा रहे हैं, उभर कर निकल रहे हैं, जिसमें जनपद से मैं समझता हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अवसर मिला है जो आज खेल के माध्यम से बहुत सारे विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी जो अपनी आज तैयारी कर रहे हैं वो चाहे किसी भी खेल के रूप में हो। जनपद रामपुर चूंकि राज्य स्तरीय की जब हम बात करते हैं तो देखिए मैं विगत वर्षों से देख रहा हूं कि जनपद रामपुर में कई खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और विभिन्न आयु वर्ग में आयोजन हुए हैं जिससे कि सभी खिलाड़ियों को अवसर मिला। और निश्चित जब हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन होती है किसी भी खेल की, उससे जो जनपद के खिलाड़ी और आसपास के खिलाड़ी मोटिवेट

कि उससे जो जनपद के खिलाड़ी और आसपास के खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उनका देख कर स्किल सीखते हैं और उनका भी मन होता है कि मैं भी खेलूं और एक बड़ा खिलाड़ी बनूं। क्योंकि जिस समय वो मंच पर सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उस समय जो भी दर्शक के रूप में आते हैं तो वो भी उनके पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन कोई भी हो, वो भी चाहता है और बच्चा स्वयं भी देखकर उससे मोटिवेट होता है और उसके अंदर एक भावना, खेल भावना जुड़ती है कि मैं भी खेल खेलूंगा। तो जनपद रामपुर, चूंकि मैं जैसा कि बता चुका हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं राज्य स्तर पर चमकते सितारों की, जनपद रामपुर में एक उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के निर्देशन में हॉकी स्टेडियम नवाब जुल्फिकार अली स्टेडियम बना हुआ है जिसमें बालक हॉकी छात्रावास स्थापित है। विगत कई वर्षों से ये संचालित है जहां पर हॉकी एस्ट्रो टर्फ लगा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश से चयनित होकर हमारे खिलाड़ी चयन होकर आते हैं उनकी सरकार के द्वारा समस्त सुविधाएं, चाहे वो खेल हो, चाहे आवास हो, ग्राउंड हो, उनकी शिक्षा हो, उन सभी पर पूरी तरह से सरकार उनका जो खर्च होता है उसका वहन करती है। उनका स्वास्थ्य हो, मतलब तमाम जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, खेलों की सामग्री हो चाहे जो भी हो, ऐसे कई छात्रावास उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, कई खेलों के हैं, जिसमें जनपद रामपुर हमारा हॉकी छात्रावास संचालित है। जहां पर मैं चमकते सितारों की बात करूं तो राज्य स्तर पे तो लगभग हमारे यहां से प्रतिवर्ष करीब करीब जनपद की अगर हम बात करें तो विभिन्न खेलों में सैकड़ों खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रतिभा कर रहा है और कई खेलों में मेडल भी लाते हैं बच्चे खिलाड़ी, जो कि जिसे हमारा जनपद रामपुर गौरवान्वित होता है, जिनका उत्कर्ष प्रदर्शन से हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हॉकी की अगर बात करें यहाँ पर तो पूर्व में हमारे जनपद रामपुर से छात्रावास के कई खिलाड़ी राज्य स्तर से खेलते हुए चयनित होकर वो राष्ट्र स्तर तक भर उन्होंने प्रतिभा किया और राष्ट्र स्तर पर स्कूल नेशनल खेलों में भी उन्होंने मेडल प्राप्त किया। पिछले वर्ष हमारे यहाँ कई खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो खेल आयोजन होते हैं उन आयोजनों में जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता रहे उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया, नगद धनराशि से सम्मानित किया, जिसमें हमारे यहाँ अर्पित कुमार, कमर फैयाज और मानवेंद्र, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगद धनराशि देकर उनको सम्मानित किया, चूंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से खिलाड़ी स्टेट और स्टेट से नेशनल स्तर तक जाते हैं, खेल कर आते हैं। इस वर्ष भी कई हमारे खिलाड़ी, आयुष भट्ट हैं, पूजन तिवारी हैं, आर्यन रावत हैं, ये विभिन्न आयु वर्गों में ऐसे खिलाड़ी चयन होकर जाते हैं और खेलकर हमारे जनपद रामपुर का नाम रोशन करते हैं। राज्य स्तर पर हॉकी के अलावा भी कई खेलों का आयोजन होता है। विगत वर्ष में जनपद रामपुर में ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिसका आयोजन किया गया, जनपद रामपुर उसका आयोजक रहा। खेल विभाग ने उसका बढ़ चढ़ कर और प्रशासन के सहयोग से बहुत ही अच्छा आयोजन कराया गया, जिसमें जो बाहर से टीमें आने वाली टीमों ने भी इसकी भूरभोर प्रशंसा की। वॉलीबॉल के साथ साथ फुटबॉल का भी आयोजन होते रहते हैं। इसी तरह से पिछले लगभग 2 से 3 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था, चूंकि बास्केटबॉल एक खेल बहुत ही अच्छा खेल है जिसकी सुविधाएं अपने जनपद में भी हैं, जिसका आयोजन डीएमए स्कूल में किया गया और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। जो सुविधाएं हमारे जनपद रामपुर में जो मेहमानों की मेहमानदारी होती है, जिससे खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित होकर जाता है और वो हमेशा रामपुर में आयोजनों में शामिल होने के लिए आतुर रहता है। इसी तरह से कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल विभिन्न ऐसे खेल हैं जिनके हमारे जनपद रामपुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन हुआ और उन खेलों के आयोजन से ही हमारे जो चमकते हुए सितारे उसमें से चयन होकर आगे राज्य स्तर पर भी खेलने पहुंचे हैं। और अब बात आती है जो विद्यालय हमारे एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा हमारा सीबीएसई बोर्ड है। इस जनपद रामपुर में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपस में ये कंपटीशन हो रही है, खेलों की कंपटीशन है कि मैं अधिक आयोजन कराऊं या आप अधिक आयोजन कराएं। दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके पीछे कारण मैं समझता हूं कि यहां की सुख सुविधाएं, यहां के जिला प्रशासन का सहयोग, यहां के जो माननीय हैं हमारे उनका सभी का सहयोग, उन्हीं सभी का योगदान, जिसके वजह से हम बाहर की जो टीमें आती हैं उनको एक अच्छा वातावरण दे पाते हैं, बहुत अच्छा खेलने का अवसर दे पाते हैं उनको, खेल मैदानों की अच्छी एक सुविधाएं दे पाते हैं, आवासीय व्यवस्था दे पाते हैं, उनको सुरक्षा दे पाते हैं। मैं समझता हूं कि जनपद रामपुर में जो भी खिलाड़ी आएगा वो मायूस होकर नहीं जाएगा, वो निश्चित ये सोच कर जाता है कि मुझे पुनः एक अवसर मिले, मैं रामपुर में जरूर प्रतिभा करूंगा। जिसमें पूर्व में भी सीबीएसई जोनल जिसमें हॉकी प्रतियोगिता

का आयोजन जनपद रामपुर में पहले पूर्व में डीएमए ने कराया था। विगत वर्ष पिछले साल जो जोनल सीबीएसई जोनल का जो आयोजन कराया गया स्मार्ट इंडियन पब्लिक स्कूल के माध्यम से, जिनका आयोजन कराया गया, जिसका खेल मैदान हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया पर स्थित खेल मैदान पर आयोजन किया गया और बहुत ही शानदार जिसका आयोजन किया गया। विगत वर्ष के सफल आयोजन को देखते हुए पुनः इस वर्ष भी स्मार्ट इंडिया स्कूल को ये कार्यक्रम कराने का अवसर मिला, जिससे जनपद भी गौरवान्वित होता है और उनके सफल आयोजन से भी खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं और खिलाड़ियों को एक और अच्छा अवसर मिल पाता है। जो कुछ खिलाड़ी बाहर नहीं जा पाते हैं वो मैं समझता हूं यहां पर खेलकर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी वार्ता स्कूल विद्यालयों से होती रहती है बीच बीच में, जिन्होंने बताया है कि जनपद की इस सीबीएसई प्रतियोगिता के आयोजन में लगभग 10 से 12 या 15 टीमें करीब प्रतिभा करती हैं। निश्चित एक हॉकी खेल में किसी जनपद की विद्यालयों की टीमें 10 से 12 टीमें अगर प्रतिभा करती हैं, निश्चित वो खेल अपने अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, जनपद बढ़ रहा है उस खेलों में। और चूंकि मैं जैसा बता रहा हूं विगत 3 वर्षों से डीएमए दयावती मोदी स्कूल, उसके बाद सिम्स स्कूल लगातार दूसरी वर्ष इसका आयोजन कर रहा है सीबीएसई जोनल, क्योंकि सीबीएसई जोनल में लगभग हमारा उत्तराखंड पूरा और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसमें शामिल होते हैं, इस तरह का आयोजन जो यहां पर होता है, और जिससे कई बच्चे, कई विद्यालयों के बच्चे जो हैं बाहर जाकर इससे सीबीएसई नेशनल और सीबीएसई नेशनल के बाद वो अन्य खेलों में भी हिस्सा लेते हैं, अपने प्रतिभा को निखारते हैं। खेलों को देखते हुए खेल अवस्थापनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जनपद रामपुर में वर्तमान में खेल अवस्थापनाएं बहुत बढ़ गई हैं जो खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। मैं समझता हूं कि आपके जनपद रामपुर में एक ऐसा जनपद जहां पर 3-3 स्टेडियम इस समय संचालित हो रहे हैं, नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया जहां पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ ब्लू कलर का लगा हुआ है, बहुत ही प्रभावित करता है सभी खिलाड़ियों को, नवाब जुल्फिकार के बाद हमारा शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी जहां पर विभिन्न खेलों की अवस्थापनाएं इस समय निर्मित हैं, जैसे आपका स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, जिम हो, आपका वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, पिकल वॉल है, बास्केटबॉल का, ये अभी सिंथेटिक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और उससे कहीं बड़ी हमारे जनपद रामपुर में जो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा हमको एक सौगात के रूप में मिला है जो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, जो इसी वर्ष अभी जिसका कार्य प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष में एक वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण होकर खिलाड़ियों को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगन खेड़ा जहां पर हॉकी का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तैयार बना हुआ है, जहां पर भी हमारा हॉकी प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। मैं पूरे जनपद के स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों से, साथ ही साथ उनके जो बच्चे हमारे हैं उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक इन अवस्थापनाओं का, खेलों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक जनपद से निकलकर हमारे राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और जनपद हमारा गौरवान्वित हो। बात करेंगे हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में। जैसा कि मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं कि जनपद रामपुर हमारे खेल स्टेडियम में अग्रणी है। जनपद रामपुर में चारों साइड पर विभिन्न खेल मैदान है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो एक सीजन है, खेलों का सीजन है, पूरी साल का ये निचोड़ खेलों का होता है, क्योंकि ये 2 से 3 माह हमारा अक्टूबर तक पूरा चलता है जिसमें विभिन्न खेलों के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आयोजनों का आयोजन होता रहता है, जिसमें जनपद रामपुर में पूर्व में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिछले वर्ष, और इस वर्ष उसके सफल आयोजन को देखते हुए और जिला प्रशासन के सहयोग को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि होगी। इस जनपद रामपुर में माध्यमिक खेलों के आयोजन शुरू हो गए हैं, ये 4 अगस्त से, बल्कि अभी स्टार्ट ही हो चुके हैं 4 अगस्त से लेकर और भी अन्य खेल, जिसमें पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 खेलों के जो आयोजन होने हैं पूरे प्रदेश में, जो राज्य स्तरीय तक आयोजन होंगे, जिसमें जनपद की टीम और मंडल की टीमों का चयन होना है, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ सभी खिलाड़ी ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए चयन होने के लिए अपना अभ्यास करते हैं और वहां पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जनपद रामपुर खेलों में बहुत ही अग्रणी है और इस वर्ष इस जनपद रामपुर में आपको सीबीएसई जोनल का आयोजन मिला है, जो 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जिसका आयोजन सीबीएसई स्कूल स्मार्ट इंडियन स्कूल जो कर रहा है और

0: नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनवड़िया में प्रतियोगिता का जो मैच है वो खेले जाएंगे। ये जो आयोजन होगा जिसमें पूरे आपके जनपद के लगभग 10 से 12 टीमें हैं और उसके अलावा जो जोन है पूरा वो टीमें यहीं पर आएंगी और प्रतिभाग करेंगी। इस वर्ष भी माध्यमिक का जो राज्य स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता होनी है हॉकी की, जिसमें लगभग 107 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। चूंकि हॉकी खेल है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, जिसमें 18 खिलाड़ी, टीम मैनेजर, उनके कोच सम्मिलित रहते हैं। लगभग 20 की एक टीम तैयार होती है और ये जनपद के लिए वास्तव में खेलों का मेला है। बहुत बड़ा एक मेला खेलों का हो रहा है जहां पर 107 टीमें, आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से, वो चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा है, इकट्ठा होकर हमारे जनपद रामपुर में आएगा और उसको देखेगा, हमारे यहाँ की अवस्थापनाओं को देखेगा, खेल मैदानों को देखेगा, हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको देखेगा। मैं समझता हूं कि इस मेले में जो शामिल होंगे उन सबकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमारा, हमारे जो माननीय हैं सभी लोगों का हम लोग को आशीर्वाद है, हम लोग को सहयोग है और उसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक हम लोग उदाहरण बनकर तैयार होंगे कि जनपद रामपुर में इतना अच्छा इतना शानदार हम लोगों ने आयोजन कराया है। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा से ये जो आयोजन कराया, 6 अगस्त 26 को सिविल सर्विसेज खेलों का, जिसमें 19 खेल हैं, जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स का आयोजन बमनपुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम रामपुर में किया जा रहा है। जनपद के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये चयन ट्रायल रखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए खेल विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो मंडल और मंडल से राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रतिभा कर सकते हैं।
1: दोस्तों, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। मैं हूं अवधेश, आपसे चाहूंगा अनुमति।
2: खेल दर्पण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विचित्र वीणा वादन। आज आप सुनेंगे इस पर बजाया राग गावती। पखावज पर इनके साथ संगत कर रहे हैं मोहन श्याम शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी गोकुलोत्सव का ख्याल गायन राग दरबारी में। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

0: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money